मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड अगेन मैंने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम मजाक नहीं है, ये प्रोग्राम फन नहीं है, ये प्रोग्राम हम अपने को समझने के लिए करते हैं। दिस इज सीरियस। वी शुड डाइव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस एंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर गॉड हूसोएवर इजी। आप किसी भी डेटी को चाहते हैं, पूछते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट दैट, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज अपने को तो पहचानिए, हु आर यू। सो हम लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, चाहे तो कह लें प्रोटोकॉल हो या सिस्टम हो या ऊपर कोई शक्ति है या एक संभावना कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई, उन्हीं को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ललिता लक्ष्मी नारायण मैम से। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं ललिता मैम का, वेलकम करता हूं, जो उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं ललिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, आप कहाँ हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू बी इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनिशियली मेरा जन्म पुणे में हुआ, एजुकेशन लिविंग एवरीथिंग वाज इन पुणे, गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई फॉर 20 इयर्स। उसके बाद पति के जॉब के वजह से वी ऑल ऑफ अस शिफ्टेड टू बेंगलुरु। एट प्रेजेंट हम सब बेंगलुरु में हैं, बच्चे लोग यही है। एंड पर्सनली आई ऑलवेज वाज अ होममेकर, दैट इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। एंड थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती भी थी, जो अगल बगल में थे वो आते थे। एंड मेरे साथ किया, थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो भी कर लेते हैं। So generally, I am leading a very peaceful life now, retired life. I pursue my passion and happy with my life. And now I have got this privilege of coming to a radio show. That's also a big blessing from that Almighty.
1: Wow. Thank you so very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली पिछले दो सालों से, ढाई सालों से मैं रेडियो स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे खुशी होने लगी है कि आप जैसे प्रबुद्ध और समझदार लोग, इंटेलिजेंसिया हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन माय रेडियो टॉकिंग टू मी, और आप लोगों की जो बातें हैं वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं। तो चलिए, खैर एनीवेज, इस विषय में बात करते हैं जिस विषय के लिए आज हम आपको इन्वाइट किया है हमने। सो ललिता मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म क्या मतलब है इसका? व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
2: आध्यात्म, इट स्टार्ट्स विथ समथिंग टू डू विथ आत्मा। आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इज द लाइफ फोर्स इन आवर बॉडी, एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक इनवर्ड्स, दैट इज आध्यात्म। गो इनसाइड यू एंड अपने थॉट्स को समझना। बाहर एक समझ में आता है, लेकिन अंदर जो होता है वो हमको खुद समझना चाहिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, दैट आंसर्स एंड ऑल यू विल गेट फ्रॉम विद इन यू इफ यू गो इन टू स्पिरिचुअलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज समबडी हर्ट्स यू विद योर वर्ड्स और विद योर एक्शंस, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्लेमिंग देम, ऐसा सोचो, उनके जगह में खड़े रहो और सोचो क्यों ऐसा कर रहा है, देन यू विल गेट एन आंसर फॉर देयर बिहेवियर, एंड दैट कीप्स यू इन पीस, शांति से जी सकते हैं। दैट इज एक्चुअली आध्यात्मिक इन माई पार्लेंस। इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल।

0: it is just search, peace, calm, rather than hunting for it outside you. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी.
1: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्कस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: अब मैम होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम, तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी. लेकिन मैम मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ, मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू.
0: ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
1: आएगा
0: पछतावा
1: आएगा.
0: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं, सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू आर टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है तो you think. That is why you need that internal thinking. हम शांत रहे, why should I spoil my mood because somebody is telling that, I feel that. हर एक आदमी होने हो, that comes with some spiritual knowledge because you learn to be compassionate, you learn to be good in your words, deeds, everything, and most of the things, all these things we respond not because they are hurting us. We may be having some tension or stress, and at that moment we can't decipher वो क्यों बोल रहे हैं. हम immediate react करना है, वो हमारा सोच है, not the opposite party. तो ये guilt से avoid करना है and to proper thinking. It will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. नॉर्मल मैन वो नहीं आगा, इट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी.
1: ओके, आई गेट इट, आई गेट इट मैम. प्लेन एंड सिंपल, I'm really sorry. I would like to apologize here with my most sincere efforts. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, आई शुड जस्ट वेट. वेट अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को, मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर यू नो कपल ऑफ आवर्स मे बी और कपल ऑफ मिनट्स मे बी कपल ऑफ डेज मे बी एंड देन समबडी वुड कम टू मी एंड सम सिचुएशन वुड हैपन वेयर द थिंग्स वुड एक्चुअली बी एक्सप्लेन्ड टू मी कि ऐसा एक्चुअली इस वजह से हो रहा था, अच्छा किया आपने रिएक्ट नहीं किया. दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी मैम, दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी. ये एक अच्छी टीचिंग मेरे को मिली. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
0: थैंक यू.
1: ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं. थियोरेटिकली आपने हमें बता दिया.
0: हाँ जी.
1: आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
0: अच्छा, अभी ये ना, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी पाथ, बट इट कम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन विच फैमिली यू आर बॉर्न इन टू. ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ, इट मे नॉट अप्लाई टू एवरी वन.
1: सॉरी,
0: बट इन माई केस इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम.
1: Okay.
0: मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी, तो इन दैट फैमिली रोज पूजा पाठ करते थे. एंड जनरली समझ जी ऐसे सिखा देते थे घर में कि यू मस्ट नॉट हर्ट एनीबडी, यू मस्ट नॉट डू बैड टू एनीबडी, कुछ गलत किया तो भी एक सॉरी बोल दो. इट इज थॉट एंड इट इज नॉट बाय एग्जाम्पल. Because what the elders do, a child learns from that, looking at it.
1: Okay.
0: तो वो सीख देख देख के हमने सीख लिया. It is just plain सीखना, no questions asked, सीख लिया. फिर बड़े होते गए, then we realize there are certain times when we hurt anybody, के बाद में sorry बोल देते हैं. But in spiritual knowledge, you come to really seriously think of why we should not do that, why we should not hurt, why we should not tell a lie. वो spiritual knowledge से मिलता है. कभी कभी झूठ ना अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है.
1: बोलना पड़ता है.
0: Like वो महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंजरः. So that was actually a lie which Lord Krishna told. But somehow he had to make the Pandavas win.
1: Correct.
0: तो वो हुआ. तो ऐसे जगह में हम बोल देते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ, इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एज सच. ठीक है, बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम, इस सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ, और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं, बेचारे कहाँ हो, ऐसे झूठ मूठ बोल देते, ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलते देते हैं, बट वो गिल्ट होता है, क्यों यार बोलना, बोलना था ना, देर से उठे, हुआ नहीं, सॉरी बोलना था. बट वो होता नहीं. इमीडिएटली वी टेल दैट व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी वी लर्न कब झूठ बोलना है, विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, और एंड व्हाई डू वी हैव टू से दैट. सच बोल दो ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट पर भी थोड़ा डांट लेंगे हमको. ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है, उतना ही बोलेगा ना. बट वी विल बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट, क्यों मैंने झूठ बोला. तो ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से आता है.
1: लेकिन मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी? मॉम ने, मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने, या कोई गुरु कहीं पर मिल गया?
0: नहीं जी, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है. सी, व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल एंड आवर लाइफस्टाइल चेंजेस.
1: ओके,
0: अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है. शादी होने के बाद यू आर पुट इनटू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर. तो तभी यू मस्ट चेंज योर वेज ऑफ बिहेवियर, चेंज योर वेज ऑफ थिंकिंग. वो सब होता है, गुस्सा आता है, बट वी शुडंट शो अवर एंगर टू एनीबडी. वो तो सी, हमारे टाइम के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं. यू हैव टू एडियर टू सर्टन प्रोटोकॉल्स आफ्टर मैरिज. तो प्रोटोकॉल बनते रहते, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेस. अंदर जो स्ट्रेस होता है ना, विच विल मेक यू अनहैप्पी, सैड, ऑल दीज थिंग्स, तो होता था. बट लेटर ऑन वी गॉट वन, हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ एक योगा मास्टर था.
1: ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स?
0: ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम.
1: अच्छा, ओके,
0: कांदिवली वेस्ट में.
1: ओके,
0: वो वहां तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन, हेल्थ रीजंस के लिए गए, बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल, तो उसमें आया. सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में. तो उससे स्टार्ट हुआ. फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साई बाबा, उनके उस सच्चरित्र में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटीरियल थिंग्स, थॉट वाइज. सो इफ योर थॉट्स आर क्लीन, then your life will be very peaceful. So that is how I came into this. And nowadays I read a lot of books. Not that some, see, oh, kya hota hai, kabhi kabhi books read karte hain. But to be frank, I don't follow anyone blindly. I apply it in my life. If it is really beneficial, then I adopt it. Nahi to main aise hi chhod deti hu, theek hai, ready, kya ho gaya. So that is continued.
1: All right. I get it. This is certainly a beautiful journey in anyone's life. Lalita ma'am jo hai yahan par hame apni life ki story bata rahi hain, lekin hum sab relate kar pa rahe hain ki kahin na kahin hum bhi wahi the, humne bhi wo saman dekha tha, samaj dekha tha, aasman dekha tha, pareshaniyan jheli thi, meditation kiya tha, somebody came into our life and then इस तरीके से हमको समझ में आया. आई गेट इट. चलिए ललिता मैम, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहां पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें.

0: मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भगवान पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है, व्हाट अबाउट इट? मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार कनेक्ट कीजिए मेरे लिए.
1: ओके. एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है. धर्म इज मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स. एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है, इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए. दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स विच रिलीजन टेल्स अस. स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिक्स्ड रूल्स. इट इज इंटरनल. यू गो इनसाइड एंड सर्च फॉर पीस. धर्म अपने आप में दे शो द रूट. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? दैट इज धर्म. धर्म इज डेफिनेटली, आई डोंट सी इट इज सेपरेट. बोथ लीड फॉर पीसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, दोनों एक ही है. बट both mean the same, but the road is different. Road of dharma is you follow good conduct, go to your mandir jana, havan jana, wo karna, ye karna, wo sab ek ek dharma wo bolta hai. Some dharma don't believe in idol worship at all. They only follow certain set rules. So dharma is more of a set of rules which you follow. Spirituality is the inner search for that truth. हम क्यों है, मैं कौन हूं, वॉट इज द एम ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई हियर, तो वो स्पिरिट आता है. धर्म विल नॉट टीच यू दैट. इट इज बाय बर्थ यू बिलोंग देयर एंड यू फॉलो सर्टेन रूल्स. वो है स्पिरिचुअलिटी. यू कैन अडॉप्ट एट एनी टाइम. धर्म इज यू आर बॉर्न विद दैट.
0: ऑलराइट जी, आई गेट इट. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज बताई है. दोस्तों देखिए, मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहां पर बताता चल रहा हूं. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूं. मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी जिंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना. मैम ने कहा ना, हम कौन है, यहां क्यों है, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, आध्यात्म में, और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ सुंदर पावरफुल प्योर पायस तरीका जो है वो है धर्म. धर्म हमें बताता है. मैम ने बताया धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं. आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं. अमेजिंग. तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहां पर आता है. मैम हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, है ना. प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं, ठीक है. धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया, ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज कि मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत इंप्रेस हो गया, और इस प्रोग्राम को सुनकर 10 लोग और बहुत इंप्रेस हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया ऑल राइट, ललिता मैम ने कहा है चलो लेट्स बी स्पिरिचुअल. ऐसा फैशन नहीं, एक ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच उनको लगा अपनी जिंदगी को शांत करना है यार, बहुत गुस्सा आता है, लेट मी जस्ट बी पीसफुल एंड काम. तो मैम मेरे को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, हाउ कैन आई बी स्पिरिचुअल, 1 2 3 बेबी स्टेप्स मुझे बताइए ना, क्या करूं मैं.
1: ओके, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल. वो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लो. व्हाई डू आई वांट, वो तो आंसर मिल जाएगा. आपको हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, देन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस वो ढूंढो. किसी को म्यूजिक में हैप्पीनेस मिलेगा, म्यूजिक सुनने में मिलेगा, किसी को खुद गाने में मिलेगा, किसी को कुकिंग में मिलेगा. तो यू ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस. उसके बाद दिस इज फॉर अ ले मैन. मैं नहीं बोलती हूँ कि ऑरेंज वस्त्र पहन के हिमालय में जाके बैठ के जप करो. दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी इन माई पार्लेंस. मेरे हिसाब में घर में बैठे बैठे हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री. तो चूज समथिंग विच गिव्स यू इमेंस प्लेजर. स्टार्ट डूइंग दैट वन बाय वन. ऐसा नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है. यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट वन गो. स्टार्ट एट बेबी स्टेप्स. अगर म्यूजिक पसंद है, लुक आउट फॉर अ टीचर, सीखो अच्छा म्यूजिक एंड गिव अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू मिनट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट म्यूजिक. वॉट इज मेडिटेशन? इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑन समथिंग.
0: Okay.
1: हमारे गुरु जी सब क्या बोलेंगे, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज अपना श्वास, ब्रीदिंग. यू नीड नॉट सर्च फॉर ब्रीदिंग, अपने आप में ब्रीदिंग होता है. बट हाउ मेनी ऑफ अस कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग? करते नहीं है. सांस तो हम सोने के टाइम भी सांस लेते हैं, जागते भी सांस लेते हैं, काम करके भी सांस लेते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू अवर ब्रीदिंग? तो वो पहले सिखाते हैं पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग. ब्रीथ करते टाइम 50 जगह में थॉट्स जाएंगे, वापस लाओ ब्रीदिंग में. तो सेम वे व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुकिंग हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. आधा घंटा अगर कुक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो. मैकेनिकल जाना नहीं, इसमें हल्दी डालना, नमक डालना, मैकेनिकल है. लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो उसमें एक जो जान डालते हैं ना कुकिंग, तो वॉट एवर यू डू कॉन्सेंट्रेट एंड डू, पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू वॉट यू डू, दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. तो पहला सवाल है हैप्पीनेस.
0: ओके,
1: वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस, स्ट्रेस भी निकल जाएगा. स्ट्रेस मेक्स यू अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस गिव्स यू स्ट्रेस. तो हैप्पी हो जाएंगे. अगर हम हैप्पी है सकते हैं और बना भी सकते हैं. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज डू व्हाट इज योर ड्यूटी. ऐसा नहीं बोझ करके वो ड्यूटी नहीं करना है. अगर हमारा ड्यूटी ये है तो करते रहो. एंड इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, थॉट्स इनटू इट, बिकॉज फॉर मी स्ट्रेस फ्री शांत लाइफ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Spirituality gives you that. It gives you concentration ability. So it is practical. You do, you will know it. We abhi sikha nahi sakte hain concentration. You have to do it. Baithe raho ek jagah mein. Kuch nahi, subah baitho, ek jagah mein baitho. How many breath you are taking in 1 minute? So concentration hai. So har job mein, har kaam mein, agar aap concentration ke saath karte raho, ऑटोमेटिकली विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस अगर आ गया तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा.
0: ऑफ कोर्स.
1: दैट इज द फर्स्ट स्टेप.
0: ठीक है मैम.
1: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी. अभी मुझे मनी चाहिए चाहिए. ट्राई मींस ऑफ मेकिंग दैट मनी. फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है. उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है. कुछ टैप दैट, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, वो करो, मनी भी मिल जाएगा. तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन एंड द एम, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा. मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा. आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल वर्क हार्ड टू मेक. दिस आर स्मॉल स्टेप्स विच for you really go into that spirituality, sit in one place and meditate for half an hour. In any family, one person cannot run away and do this, but aadha ghanta to mil jayega na din mein. Usme karte raho. So these are small steps. Concentration on one thing. Do everything with passion. अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना, देयर विल बी अ टाइम यू विल लाइक टू डू दैट, तब करना। हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए। अभी बैठे रहो आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गा। इवन पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है, रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल वो मूड आते हैं तभी वो लोग दे विल डू देयर बेस्ट। तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग। तो व्हाट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, अपने आप को मैं टाइम देंगी, आई वर्शिप माई सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट वॉट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। लोग तो सोचेंगे, वाई शुड यू वरी,
0: राइट
1: समीर जी, ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर ए यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। टू स्लोली स्लोली विथ स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, डू वॉट यू लव टू डू, इट इज हाफ एन आवर डे, पूरा दिन नहीं, आधा घंटा निकालो अपन जो बहुत अच्छा लगता है, विच गिव्स यू हैप्पीनेस, डू दैट। किसी किसी को ऐसे चुपचाप कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ ना करेंगे, उनको आराम मिलता है, दे फील फ्री, स्ट्रेस फ्री, वो भी करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो दैट इज हाउ इट बिल्ड्स।
0: ओके, ऑलराइट, आई गेट इट। सिंपल मेथड है, उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स अवर थॉट प्रोसेस ईजी, सिंपल एंड क्लियर। जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए। इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ, एंड देन डू व्हाट यू लाइक, मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज़, फॉर दिस यू नो थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट। मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू द पीपल लाइक यू,
1: एब्सोल्युटली
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम मेकिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू देम, लर्निंग समथिंग न्यू।
1: So, and also, yeah. समीर जी मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है, उसने बोला अम्मा आप करोगी ये, मैं बोली हाँ बिल्कुल करूंगी, एंड विदाउट एनी थॉट बिल्कुल करूंगी बोल दिया, फिर बाद में आई टू वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज क्या पूछने वाले हैं आप, तो मुझे समझना आना चाहिए। एंड अनदर थिंग लैंग्वेज, देन शी सेड नहीं अम्मा हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो चलेगा, सर ओके होता है, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड। सचमुच समीर जी आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ मैं।
0: वाओ, थैंक यू। अच्छा मैम सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है, रिलीव हो पा रहा है, थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है, देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट। हो गया,
1: एब्सोल्युटली,
0: बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया, ओके आई एम डन, थैंक यू। चलिए,
1: थैंक यू
0: मैम, थोड़ा सा रुकते हैं, विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल काम पीसफुल भजन, विल कम बैक।
1: श्योर।

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के लिए, है ना. बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन. गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है. आई रियली लाइक इट. एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीन चार प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट. मेडिटेशन, ध्यान. ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम ओम ओम करके बैठ जाएं, वो भी एक, आई मीन आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी. एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, है ना, आरती गाना या कीर्तन करना या जो भी है. सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम. एंड क्या ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई?
1: ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है. एक्चुअली इट इज प्रेयर. प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गॉड. अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है. यू ऑलवेज टॉक टू द लॉर्ड इन योर कंफर्ट लैंग्वेज. अभी माय मदर टंग इज तमिल, बट भगवान से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं. गॉड गिव मी दिस, गॉड होप एवरीथिंग गोज वेल, इंग्लिश में आता है, तमिल में नहीं आता है. बिकॉज एडुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना, तो वो भाषा आता है. एंड वी हार्डली वी रियलाइज भगवान का भाषा क्या है. डज भगवान हैव अ भाषा? नो. वी जस्ट पुट अवर थॉट्स, अवर फीलिंग्स, सब भगवान के पास. व्हेनेवर वी गो टू द लॉर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिफोर, सी स्टेज कम्स व्हेन फर्स्ट यू थैंक द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग.
0: करेक्ट.
1: नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, यू गो ओनली फॉर आस्किंग समथिंग. बच्चे लोग परीक्षा में इजी पेपर आना चाहिए, पास होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए. वी ओनली कीप आस्किंग. सो प्रेयर इज जस्ट टॉकिंग टू द लॉर्ड, गिव योर फीलिंग्स टू द लॉर्ड, वो है. एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस वो भगवान बेचारा वो सुन लेगा. एंड ही विल वर्क टूवर्ड्स इट, शांति देगा. एंड वी गेट दैट पीस, दैट कॉन्फिडेंस दैट भगवान हमको ठीक करेगा. That is prayer. You ask the Lord. He is just like a bichare. So, वैसा है भगवान के साथ बात करना. The conversation with the Lord is prayer for me.
0: Okay.
1: मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो just दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है prayer.
0: Okay.
1: Meditation जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है हम. हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं. वी सर्च व्हाई दीस थिंग्स हैपन, व्हाई वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. एंड देन वी ओनली ऑफ माइंड व्हेन वी मेडिटेट, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन वन थिंग. अभी हमारे मन बहुत चंचल होता है, वो एक बार अमेरिका में होता है, अभी इधर होता है. तो इट इज अ वेरी वेरी चंचल बोलते हैं ना, यू कैन फिकल. बट if you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point.
0: Okay.
1: So slowly, slowly, it will go on increasing.
0: Mm-hmm.
1: Meditation, aaj 5 minute karo, 10 minute karo. But it will lead you to the same happiness and peace and all these things as a prayer. But dono alag tarike hain jo shanti khoj karte hain na, jo shanti. Abhi prayer na, aaj subah mein pray karo, दोपहर में जाके झगड़ा भी कर सकते हैं.
0: okay.
1: होता है.
0: okay.
1: इन मेडिटेशन पीपल हु आर रियली मेडिटेटिव स्पिरिचुअल वो नहीं करेंगे. अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है उनमें. तो उन लोग कितना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे. प्रेयर में ऐसा नहीं होता है. सुबह वो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जगह है. प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाद में
0: झगड़ा करेंगे.
1: नॉर्मल लाइफ दे विल लीड. बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट. इट इज मच मच डीपर थिंग. बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है. एंड इन स्पिरिचुअलिटी इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ये है लाइफ चेंज.
0: ओके.
1: इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. प्रेयर इज मोमेंटरी. अभी प्रे करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो. इट इज मोमेंटरी. अभी खुश होते हैं, दो दिन खुश रहते हैं. देन यू विल नीड दैट सेम भजन एंड कीर्तन एंड प्रेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड शांति. मेडिटेशन इज नॉट दैट. अंदर से आता है ना, तो आप अंदर से ठीक हो जाएंगे. यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू और सम मटेरियल टू मेक यू हैप्पी. दैट इज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर.
0: ओके, अमेजिंग. फाइन, गुड. अगेन दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है. कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है. बहुत सिंपल सी बात है. बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो, एंड सो मैनी थिंग्स. और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं. मेडिटेशन बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि

0: भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी यू नो रेलेवेंट हियर, वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था, वो खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब थोड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको। सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा है जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड, वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूं, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, व्हाई डोंट यू यू नो, आई मीन ही वाज टॉकिंग। तो मुझे अभी
1: करेक्ट, और समीर जी ये बोलो जब ना वो शांत हो जाएगा,
0: राइट,
1: सो ही दैट इज द मीडियम ऑफ लेटिंग आउट,
0: करेक्ट
1: वो है।
0: That's the beauty. अभी मेरे को समझ में आ रहा है। Oh God, amazing. That's so beautiful. तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं, and then we will come back to Lalita ma'am here.

0: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहां तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम अध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ, स्टडीइंग अवर सेल्फ, हाउ वी आर वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है या इज देयर अ पावर व्हिच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई, क्या है आत्मा, इज व्हाट?
1: ओके, आत्मा, आत्मा जो है वो अनंत है। एक्चुअली इट इज अ लाइफ गिविंग फोर्स इनसाइड एनी बॉडी। अभी इंसानी ने सब जीव में आत्मा होती ही है, होता है। ओके, so that atma is a life force,
0: okay, okay,
1: within the body life is there, when the atma leaves there is no life, so it is just a life giving force which moves from one body to another body, so it, as learned people said, I have read somewhere, the atma knows how long it has to stay in one body.
0: Oh, okay,
1: so wo jab It will decide when I can leave this body. अगर वो decide कर लिया ये time में मैं body छोड़ दूँगा, so it will go and that person is no more.
0: Okay.
1: सिर्फ body रह जाता है, आत्मा

0: चले गए, बट इट विल नेवर डाई, इट विल सर्च फॉर अनदर बॉडी.
1: ऑलराइट,
0: सो आत्मा है, दैट इज आत्मा, इट इज अ लाइफ फोर्स विथ विच एवरी बॉडी मूव्स, इट रन्स, इट वर्क्स, इट ऑपरेट्स, दैट इज आत्मा.
1: आई गेट इट, आई गेट इट. सच में मैम, ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ, आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस, दैट आत्मा इज अजर अमर, इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी, राइट?
0: Correct.
1: So I'm really happy that Sameer Goyal will always live.
0: Yes, definitely. Sameer Goyal will live.
1: Wow.
0: But with another name. Sameer Goyal's Atma will live with another name, okay, and another body.
1: Good. तो दोस्तों, टेक दिस मैसेज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, आत्मा हैं. So you're not going to die. You'll always, always be here. अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है, या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा. ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली, हम उनके बारे में सोचें, गुने, मेडिटेट करें एंड देन डिसाइड. ललिता मैम, बहुत बहुत आभार है आपको, साधुवाद, थैंक यू सो मच. बहुत प्यारे ढंग से, बहुत प्यारी प्यारी सिंपल तरीके से आपने हमें चीजें बता दी. थैंक यू.
0: आपको सब सिंपल तरीके से मैं बता पाई, दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी. आई कुड स्पीक आउट माय हार्ट आउट, माय माइंड आउट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम टू दिस प्रोग्राम एंड सो हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू समीर जी. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर ऑलवेज.
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू.

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: दिया।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं, एक जिंदा रिवायत। दोस्तों, भारत में अगर आप कत्था, चूना, सुपारी इनका नाम लो, तो दिमाग में कौन सी तस्वीर उभर कर आती है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही, एक छोटी सी दुकान, ऊपर गोरी का मकान। नहीं, एक छोटी सी दुकान, कान के पीछे कलम लगाए हुए दुकानदार, चमकते स्टील के डब्बे, और बीच में हरा हरा पान। लेकिन सच बताऊं, पान सिर्फ खाया नहीं जाता, पान तो बनाया जाता है, और पान बनाना एक कला है। जी हाँ, भारत आके देखिए, आपने कभी गौर से देखा है नुक्कड़ पर बैठे वाले पान वाले को? वो सिर्फ बेच नहीं रहा होता, वो रचना कर रहा होता है। सबसे पहले हरा ताजा पत्ता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल चमकदार, जैसे किसी ने बारिश के बाद पेड़ से तोड़ कर निकाला हो। फिर आता है चूना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ना ज्यादा ना कम, उंगली की नरमी से लगाया जाता है बड़े प्यार से। फिर कत्थे की एक परत, लाल रंग धीरे धीरे पत्ते पर फैलता है। उसके बाद छोटी छोटे सुपारी के टुकड़े, इलायची, सौंफ, नारियल का कतरन, गुलकंद की मीठी सी लहर, कभी कभी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी चेरी, और थोड़ा सा कचूरा। हर चीज हिसाब से, न ज्यादा न कम, हर चीज एक अंदाज से। और फिर पत्ता मोड़ दिया जाता है, तीन कोण का बनाया जाता है, कभी चांदी के वर्क में लपेट दिया जाता है। बस तैयारी पूरी। आपको लगता है ये बस पान है? नहीं, ये भारत की गलियों की खुशबू है, उनका स्वाद है, हर महफिल का अंतिम सुर है। जरा सोचिए, शादी में खाना खत्म, सब लोग हाथ धोकर बाहर निकलते हैं, और एक छोटा सा स्टॉल होता है, पान काउंटर। लोग कहते हैं, भैया एक मीठा पान बना दो, जरा सा ज्यादा गुलकंद, सुपारी कम रखना। पान सिर्फ मुंह मीठा नहीं करता, बातों को लंबा करता है, कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करता है। अक्सर दोस्ती की बातें पान के साथ होती हैं, रात देर तक चलने वाली गुफ्तगू, और बीच बीच में एक और बना दो। अब जरा भारत के शहरों की तरफ चलते हैं। बनारस, वाराणसी का बनारसी पान, यहाँ पान एक शान है। शाम को घाट पर आरती के बाद अगर बनारसी पान ना खाया तो जैसे सफर अधूरा रह गया। पत्ता पतला, मीठा संतूत, और एक तहजीब जिसमें पान देना भी अदब से होता है। फिर चलिए कोलकाता, कोलकाता का पान थोड़ा अलग, यहाँ स्वाद गहरा होता है, कभी ज्यादा सुपारी, कभी ज्यादा मसाला, और लोग बड़े प्यार से कहते हैं, एक स्पेशल बना दो। और हैदराबाद, हैदराबाद का जाफरानी पान, थोड़ा नवाबी अंदाज, थोड़ा शाही एहसास। देखा आपने, एक ही पान लेकिन हर शहर अपना ही रंग घोलता है उसमें, जैसे भारत खुद। पर दोस्तों, पान की कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, पूरे जमाने में पान मेहमान नवाजी का हिस्सा था। घर में मेहमान आए तो चाय के बाद पान, ये सम्मान था। राज दरबारों में भी पान दान होता था, सुंदर चांदी के डिब्बे, उसमें सारा सामान अलग अलग खाने में। पान देना एक इशारा था, हम आपको अपना समझते हैं। और फिल्मों में हीरो ने हीरोइन को पान दिया या हीरोइन ने शर्माकर पान लिया तो वो एक रोमांटिक पल बन जाता था। लेकिन एक और बात, पान बनाना सबको नहीं आता, ये हाथ की सफाई मांगता है। चूना ज्यादा हो गया तो स्वाद खराब, कत्था कम हो गया तो रंग अधूरा, सुपारी ज्यादा हो गई तो कड़वाहट। बैलेंस, पान हमें बैलेंस सिखाता है। जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, थोड़ी कड़वी और थोड़ी सुगंधित। आप अपनी पसंद बताओ और जिंदगी आपको अपना पान बनाकर देती है। आजकल नए नए पान भी आ गए हैं भाई, चॉकलेट पान, फायर पान, आइस पान। लेकिन असली मजा तब है जब दुकानदार आंखों में देखकर पूछे, कौन सा बनाऊं, और आप मुस्कुराकर कहो, भैया जो बेस्ट हो। क्योंकि पान में भरोसा भी लगता है। कभी आप शाम को निकलकर बस 5 मिनट के लिए किसी पान वाले को देखिए, उसकी उंगलियों का चलना, उसकी नजर का अंदाजा, उसकी आवाज, लो जी तैयार है। वो एक कलाकार है, बिना स्टेज का, बिना तालियों का। उसका काम रोज होता है, रोज लोग आते हैं और रोज उसकी कला लोगों के मुंह में घुल जाती है। इसलिए जब अगली बार आप पान खाएं, बस चबाकर थूक मत देना, थोड़ा महसूस करना। ये पत्ता कहां से आया होगा, कितने हाथों से गुजरा होगा, कितनी रिवायत जोड़ी होगी इसमें। पान सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये गलियों का गीत है, शादियों की हंसी है, दोस्ती का ठहराव है और भारत की एक जीती जागती परंपरा है। तो बताइए आप कौन सा पसंद करेंगे, बनारसी, कोलकाता वाला, हैदराबादी जाफरानी या बस एक सादा मीठा। जो भी हो, जिंदगी का स्वाद तभी आता है जब उसमें थोड़ा सा कत्था हो, थोड़ा सा चूना और बहुत सारा प्यार। चलिए दोस्तों, आज के पान का स्वाद यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले मोड़ पर एक और कहानी के साथ।
0: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय। ऑनलाइन शॉपिंग रियलिटी। ऑनलाइन लिखा था इजी 7 डेज रिटर्न। इंडिया में उसका मतलब था 7 दिन तक तो आप रिटर्न करने की हिम्मत जोड़ो और 8वें दिन प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लो।

जब यश चोपड़ा ने दुनिया को कहा, सुर पर भरोसा रखो। कभी कभी इंडस्ट्री के बीच खड़े होकर भी इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। साल 1980 के आसपास का दौर था, हिंदी सिनेमा बदल रहा था, डिस्को आ रहा था, तेज बीट्स, लाउड अरेंजमेंट्स, फ्लैशी रिदम्स, गाने चल तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं धुन की रूह बहुत धीमी पड़ गई थी। और एक आदमी था जो चैन से नहीं बैठ पा रहा था, उनका नाम था यश चोपड़ा। उनके लिए फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती थी, फिल्म एक एहसास होती थी और उस एहसास को महसूस करने के लिए संगीत बहुत जरूरी था। उन्होंने देखा कि सुर हल्का हो रहा है, गीत याद रहने की बजाय बैकग्राउंड स्कोर बन चुके हैं, बैकग्राउंड शोर बन चुके हैं। तब उन्होंने एक फैसला किया, रिस्क भरा, लोगों को पागलपन लगा, इंडस्ट्री ने मना भी किया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर दो बड़े शास्त्रीय संगीत के उस्तादों को मैं कमर्शियल सिनेमा में संगीत गाने दूं। नाम सुनते ही लोगों ने हाथ जोड़ लिए। एक तरफ थे संतूर के जादूगर शिव कुमार शर्मा, दूसरी तरफ थे बांसुरी के देवता हरि प्रसाद चौरसिया। दोनों अपने आप में एक स्कूल थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। एक महफिल सजा देते थे बिना माइक के और एक सुर को प्रार्थना बना देते थे। लोग बोले, ये फिल्म का काम नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल सिनेमा क्लासिकल से नहीं चलता, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन यश जी ने कहा, मैं सुर पर भरोसा करता हूं। और इसी भरोसे से पैदा हुआ एक नाम, शिव हरि। दो अलग धाराएं, एक संतूर के मोती सी चंचल सी धुन, एक बांसुरी की गहरी बहते पानी सी सांस। और जब दोनों मिले तो जैसे हवा में रंग घुल गए। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी सिलसिला। सोचिए, अमिताभ बच्चन, रेखा, जया जी, एक कहानी जो खुद जिंदगी से निकली थी। और उस पर जब ये कहां आ गए हम जैसे गीत बजे, तो सिर्फ गाना नहीं था, एक खामोश बात थी जो दो दिलों के बीच होने लगी। संतूर की हल्की सी झंकार, बांसुरी का लंबा सा सांस और बीच में लव्स जैसे धीरे धीरे खुल रहे हों। फिर आई चांदनी। उस वक्त लोग डिस्को में डूबे हुए थे, लेकिन मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं और शादी की महफिल बन गया। लगी आज सावन की ने बरसात को महसूस करवाना सिखाया। ये गाने सिर्फ बजते नहीं, ये रहते हैं। और फिर आई मेरी फेवरेट लम्हे, रिस्क और भी बड़ा, कहानी भी अलग लेकिन संगीत दिल के अंदर तक उतर जाने वाला, मोरनी बागामा, लोक धुन और शास्त्रीय स्पर्श का एक संगम। मेघा रे मेघा, जैसे बादल सच में खिड़की पर आ गए हों। शिव हरि ने ये सब 8 फिल्मों में काम किया सिर्फ 12 साल का साथ, लेकिन उन 12 सालों में उन्होंने सिनेमा को याद दिला दिया कि गीत शोर नहीं, याद बन सकता है। उन्होंने क्लासिकल को हल्का नहीं किया, उन्होंने सिनेमा को गहरा किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब बिना दिखावा किए किया, ना कंट्रोवर्सी, ना पब्लिसिटी का शोर, सिर्फ काम। यश जी कहते थे, फिल्म में संगीत कपड़े जैसा नहीं होना चाहिए जो बदल दिया जाए, वो कहानी का एक हिस्सा होना चाहिए। शिव हरि ने वही किया। उनके संगीत में ना तेज ढोल की तनकार थी, ना सिंथेसाइजर का शोर, लेकिन एक चीज थी, सच्चाई। और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों। आज भी अगर आप उनके गाने शांत कमरे में सुनो तो महसूस होगा जैसे वक्त धीरे हो गया है, जैसे सुर हवा में लटक रही हो, जैसे आपके दिल को कोई हल्का सा छूकर चला गया हो।
ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये हिम्मत थी। यश चोपड़ा की हिम्मत, जो सबके मना करने पर भी खुद की आवाज सुनकर आगे बढ़ी। शिव कुमार शर्मा जी और हरिप्रसाद चौरसिया जी की तपस्या, जो महफिल से निकलकर सिनेमा के पर्दे पर आए बिना अपनी पहचान खोए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है जानते हैं? कभी कभी दुनिया आपसे कहती है सेफ खेलो, जो चल रहा है वही करो, लेकिन अगर आपका दिल कहता है ना कि ये सही है, तो सुर पर भरोसा रखो, क्योंकि जब नियत साफ हो तो संगीत अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। शिव हरि का दौर छोटा था, लेकिन उनकी धुन बहुत लंबी थी, और जब तक शादियों में चूड़ियां बजती रहेंगी, जब तक बरसात में कोई खिड़की खोलकर खड़ा रहेगा, जब तक प्यार में कोई धीरे से कहेगा ये कहां आ गए हम, तब तक वो जिंदा रहेंगे। और शायद कहीं दूर यश जी मुस्कुराते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन सुर अमर होते हैं।

इंडियन मॉम्स और थर्मामीटर। माँ का थर्मामीटर सिर्फ एक होता है, हाथ का पिछला हिस्सा। डॉक्टर बोले 99 फीवर है, माँ बोले नहीं सब ड्रामा है। डॉक्टर बोले 101 फीवर है, माँ बोले अब थोड़ा सा लग रहा है फीवर जैसा। अंधेरा, लाहौर और एक 13 साल का लड़का जिसका नाम था मोहम्मद रफी। जरा आंखें बंद कीजिए। साल 1937, लाहौर। गर्मी की एक शाम, हवा भरी है। एक पुराना सा टाउन हॉल, लकड़ी की कुर्सियां, पंखे धीरे धीरे घूम रहे हैं, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। आज शेल्टर में महफिल है। स्टेज पर आने वाले हैं उस दौर के सबसे बड़े सितारे केएल सहगल साहब, उनका नाम ही काफी था। लोग गांव गांव से आए, कोई पगड़ी बांधकर, कोई कुर्ता संभालते हुए, कोई बच्चों को कंधे पर बिठाए। हॉल खचा खच भरा हुआ था। लोग बेचैन हैं, तालियां, सीटियां, आवाज का शोर, और फिर बिजली चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। गर्मी और बढ़ जाती है। लोग गुस्से में बोलने लगते हैं। ऑर्गेनाइजर्स भाग रहे हैं, जनरेटर का कोई इंतजाम नहीं। और सुपरस्टार कहते हैं, रोशनी और आवाज के बिना मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। भीड़ का सब्र टूटने लगता है। इसी भीड़ के बीच बैठा है एक 13 साल का लड़का, पतला सा, सीधा सा, आंखों में शर्म भी है और सपने भी। उसका बड़ा भाई ऑर्गेनाइजर्स के पास जाता है और धीरे से कहता है, जब तक बिजली वापस आए मेरा छोटा भाई गा दे। ऑर्गेनाइजर सोचते हैं, चलो भीड़ को शांत रखने के लिए कुछ तो करना ही होगा। लड़का स्टेज पर जाता है, नीचे उसके 5 भाई बैठे हैं और सामने उसके पिताजी एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। उनका मानना है कि गाना बजाना बेकार चीज है। उन्हें लगता है बेटा नाई का काम सीखे, काम की चीज सीखे। हॉल में शोर है, लोग बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट वो 13 साल का लड़का स्टेज के बीचों बीच खड़ा है सपने लिए। ना माइक, ना साज, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ आवाज। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और गाना शुरू करता है। पहले कुछ लोग हंसकर कहते हैं, अरे बच्चा है। फिर धीरे धीरे शोर कम होने लगता है, जैसे किसी ने हवा को हल्का सा रोक दिया हो। उसकी आवाज में ना नखरा है ना दिखावा, बस सच्चाई है, कोमल, साफ और सीधी। वो सिर्फ सुर नहीं गा रहा, वो अपना दिल गा रहा है। उस पल में वो हॉल गायब हो जाता है। गर्मी गायब, भीड़ गायब, सिर्फ गीत रह जाता है। कुछ मिनट बाद बिजली वापस आ जाती है, स्पॉटलाइट जलती है, आंखें चौंधिया जाती हैं, और फिर तालियों का एक तूफान आ जाता है। लोग खड़े हो गए, सीटियां, शोर, उत्साह, सभी कुछ। उसके पिता हैरान, ये सब किसके लिए? तभी कंधे पर हाथ पड़ता है, खुद केएल सहगल साहब का। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे, नाम क्या है? लड़का कहता है, मोहम्मद रफी। हां जी, मोहम्मद रफी। उस अंधेरे की शाम में एक सितारा पैदा हुआ था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। पार्टीशन आया, लाहौर छूट गया, शहर बदला, जिंदगी बदली, लेकिन आवाज वही रही। मुंबई आए, संघर्ष शुरू हुआ। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार, छोटे मौके, 2 लाइन का गाना, कभी नाम नहीं आता, कभी कुछ। लेकिन रफी साहब ने कभी शिकायत नहीं करी, उन्होंने हर सुर को इज्जत दी। वक्त के साथ उनकी आवाज हर हीरो की पहचान बन गई।
रोमांटिक गीत हो या देशभक्ति का जोश, भजन हो या कव्वाली, शरारत हो या दर्द, उनकी आवाज बदल जाती थी लेकिन उनका विनम्र स्वभाव कभी नहीं बदला। सफलता के बाद भी स्टूडियो में सबसे पहले पहुंचना, नए कलाकारों को हिम्मत देना, कभी अपनी महानता का शोर ना मचाना, और यही उनकी असली महानता थी, उनकी असली स्टारडम। सोचिए, अगर उस रात बिजली ना जाती, अगर भीड़ शांत रहती, और अगर उनके भाई हिम्मत ना करते। कभी कभी जिंदगी आपको स्टेज तब देती है जब सब कुछ अंधेरा हो, जब माइक नहीं होता, जब सहारा नहीं होता, जब आपको लगता है कि कोई सुन नहीं रहा। वही पल आपको पहचान देता है। रफी साहब ने सिखाया, मौका छोटा हो सकता है लेकिन पल पल बड़ा होगा। और जब आवाज सच्ची हो तो दुनिया खुद चुप हो जाती है। आज भी जब उनका गीत रेडियो पर बजता है तो लगता है लाहौर का वो हॉल फिर से रोशन हो गया हो। एक 13 साल का लड़का आंखें बंद किए दुनिया को अपना दिल सुना रहा है, और शायद हमें याद दिला रहा है, कभी अपनी आवाज को छोटा या कम मत समझना। अंधेरा सिर्फ रोशनी के लिए जगह बनाता है।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: आरजे भावना आप पढ़ंगला भाइयों नु घरो घरो स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटियाबेल 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे भावना, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटियाबेल 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आशा। दोस्तों, आपने आशा कार्यकर्ता के बारे में तो सुना ही होगा, कई लोग जानते भी होंगे आशा कार्यकर्ताएं होती क्या हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर शैलेश कुमार शाकले जी, जो कि राज्य कार्यक्रम अधिकारी आशा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। हम जानते हैं सर के साथ में कि आशा कार्यकर्ताएं होती क्या हैं, उनकी भूमिका क्या है। सर, शुरुआत करें
3: जी।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन रेडियो टंटियाबेल में।
3: जी धन्यवाद, और आपको और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: जी सर नमस्कार। आपने इतना समय निकाला, भोपाल से झाबुआ तक का सफर तय किया और यहाँ तक आए हमारे स्टूडियो में, हमें बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारे श्रोताएं भी बहुत ही जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे, तो हम शुरुआत करें। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आशा कार्यकर्ताएं होती क्या हैं और ये क्या करती हैं।
3: भावना जी, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई, लगभग 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी, तब ग्रामीण, इसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजाय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, और मुख्यतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, वहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक कैसी सामाजिक कार्यकर्ता की कल्पना की गई जो कि उसी

0: लाइक हम मतलब जिस जिस गांव या जिस बस्ती में हमें उसी बस्ती से एक सामाजिक एक आशा कार्यकर्ता एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसको कि ये कहा गया सामाजिक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एक रिलेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और वही शॉर्ट फॉर्म आता है आशा
1: जी।
0: तो हमारी आशा कार्यकर्ता है मुख्यतः समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में कड़ी का काम करती हैं। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं या सेवाएं शासन की तरफ से समुदाय के लिए सृजित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको समुदाय तक पहुंचाने का मुख्य काम मुख्य संदेश वाहक का काम हमारी आशा कार्यकर्ताएं करती हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं 2012 के बाद हमने इसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से इसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया और शहरी क्षेत्रों में भी आशा कार्यकर्ता हुई। तो इस वक्त हमारे पास मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 65,000 आशाएं और शहरी क्षेत्रों में लगभग 5,000 आशाएं, इस तरह करीब 70,000 आशा कार्यकर्ता प्रदेश में कार्यरत है।
1: जी सर, आपने बताया कि ग्रामीण हटा दिया गया, ये ग्रामीण हटाने का क्या उपलक्ष्य था?
0: देखिए, पहले ये सोचा गया था कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है
1: जी।
0: बाद में ये पता लगा कि कई शहरी क्षेत्र खास करके जिनको हम शहरी मलिन बस्ती बोलते हैं है ना, या स्लम एरिया बोलते हैं, या मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उनको बोलते हैं गंदी बस्ती,
1: मतलब जहाँ पे
0: झुग्गी झोपड़ी। हाँ, ये यहाँ पर स्वास्थ्य के जो सूचकांक है, स्वास्थ्य की स्थिति है, वो कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है,
1: काफी
0: दयनीय है। तो इसको एक समग्र रूप देने के लिए मतलब ये शहर गाँव कस्बे सभी जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध है
1: जी। सर, आशाओं का काम क्या होता है?
0: बेसिकली देखिए, आशा जैसा मैंने बताया वो सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाती है। तो सबसे पहला उसका जो मुख्य काम होता है घर घर जाके सर्वे करना, हर घर के सर्वे में वो घर के परिवार के सदस्यों की सूची बनाती है, मुखिया कौन है, उनका नाम क्या है, घर में कितने बच्चे हैं, महिलाएं कौन है। तो या ये आशा के रूटीन काम में ये काम आता है जिससे उसको पता लगता है कि कितने घरों में गर्भवती महिलाएं हैं, कौन धात्री महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, किन घरों में छोटे बच्चे हैं ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। आशा का काम उसके बाद फिर जो जिस समुदाय में या जिस गांव में बस्ती में वो रहती है वहाँ जन्म मृत्यु विवाह और छोटे बच्चों का छोटे टीकाकरण के लिए सूची बनाना, तो ये उनका पंजीयन करना। इसके अलावा जो हम अलग अलग सेक्टर लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे मीटिंग बुलाते हैं उन मीटिंग्स को अटेंड करना
1: जी सर।
0: और एक VHND एक होता है हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या तो किसी मंगलवार या शुक्रवार ग्राम स्वास्थ्य पर पोषण दिवस, ये स्वास्थ्य पर पोषण दिवस होता है, उसमें गर्भवती माताओं की जांच की जाती है, छोटे बच्चों का गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाता है, पोषण संबंधी सलाह दी जाती है। तो VHND के लिए समुदाय को मोबिलाइज करके लाना ये आशा काम रहता है। इसी तरह ग्राम में एक समिति होती है, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में VHSNC, उसकी प्रति वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ताकि ग्राम के लोग अपने गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्वयं बात कर सके, ये मुख्यतः आशा के काम है। बाकी स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाता है
1: जी सर।
0: जैसे अभी निरोगी काया अभियान चला, कोरोना के बाद कोरोना के वैक्सीनेशन का अभियान चला
1: जी सर।
0: तो इस तरह के अभियान समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब में आशा की बहुत सक्रिय भूमिका होती है
1: जी सर। मतलब गांव या फिर शहरों के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना, उनको स्वास्थ्य सेवा दिलाना, ये उनका काम होता है।
0: आशा का काम जैसे भी एक महिला विवाह होके आई वहीं से चालू हो जाता है, पहले वो उसको परिवार नियोजन के साधनों की सलाह देती है, उसे ये कहती है कि अभी विवाह से कम 2 साल तक वो कोई बच्चा पैदा ना करे, वो अभी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले। उसके बाद यदि वो गर्भवती होती है तो गर्भवती माता की प्रसव पूर्व 4 जांचें होना चाहिए और संस्थागत प्रसव होना चाहिए ताकि प्रसव सुरक्षित हो, ये आशा इसमें मोटिवेट करती हैं। जब बच्चा होता है तो बच्चों को करीब 1.5 महीने तक आशा 6-7 बार उसके घर जाके बच्चे को देखती है ताकि ऐसा तो नहीं कि बच्चे में कोई जोखिम के लक्षण हो, खतरे के लक्षण हो। फिर उस बच्चे का पूरे 1.5 साल तक वो इंश्योर करती है, उस माँ को ये सलाह देती है कि अब 3 साल तक अगला बच्चा ना करे, और तो ये इसको बोलते हैं मतलब बच्चों के बीच में अंतर रखना। और जब दो बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो स्थायी परिवार साधन की सलाह देती है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य आता है वहाँ वो आशा का काम आ जाता है।
1: आशा मतलब एक तरह से घर की जो बड़ी दीदी होती है।
0: हाँ, हाँ,
1: वो काम होता है आशा।
0: बिल्कुल, बल्कि
1: इसलिए शायद आशा दीदी कहा जाता है।
0: जी जी जी, मतलब कई बार ये होता है कि जो प्रसूता महिलाएं होती है वो अपनी आशा से इतनी कम्फर्टेबल होती है कि वो चाहती है कि ये प्रसव के समय हमारे साथ रहे।
1: जी,
0: अपने परिवार के किसी सदस्य के बजाय वो उस पर ज्यादा विश्वास करती
1: है। जी, जिस तरह घर की बड़ी दीदी होती है शायद मैंने सही।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर, ये आशा इस तरह से जो काम करती हैं उनका कोई मानदेय राशि तो होता होगा?
0: हाँ, आशा के सभी कार्यों पे एक प्रोत्साहन राशि रहती है।
1: जी।
0: हर काम के एवज में उसको मिलती है, जो कि जैसे मान लो वो प्रसव पूर्व चार जांचें कराती है और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराती है तो हम उसको 1200 रुपए देते हैं।
1: चार जांचें
0: और संस्थागत प्रसव सब मिलाकर होता है वो।
1: जी।
0: इसी तरह छोटे बच्चों की देखभाल करती है तो उसको 500 रुपए देते हैं। अरे कुल मिला के हमारी लगभग 50 से ऊपर गतिविधियां हैं और हर एक पर वो उसको इंसेंटिव या कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि रहती है।
1: जी, अगर आशा जी की भूमिका देखा जाए हमारे देश को धीरे से स्वास्थ्य में बेहतर बनाने में, क्या होगी वो?
0: देखिए, स्वास्थ्य के 3 सूचकांक होते हैं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने के पहले स्थिति बहुत ही विपरीत थी और स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति भी बहुत थी। लेकिन अब आशाओं के और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सम्मिलित प्रयास से हम अपने 3 सूचकांकों में बहुत ज़्यादा बेहतर वृद्धि कर चुके हैं। स्वास्थ्य सूचकांक का ये कम होना चाहिए, जैसे 1,00,000 गर्भवती महिलाएं, मातृ मृत्यु दर मतलब 1,00,000 गर्भवती महिलाएं में से कितनी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान या प्रसव से 1.5 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये संख्या मातृ मृत्यु दर होती है। ये निगेटिव चीज है, लेकिन अभी भी प्रदेश में ये 173 है। और इसी तरह शिशु मृत्यु दर मतलब 1,000 जीवित बर्थ में कितने बच्चे जन्म से 1.5 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये शिशु मृत्यु दर है। अभी ये 43 है, 43 है और पूरे भारत में हम लोग नीचे हैं, सबसे ज़्यादा है। और कुल प्रजनन दर मतलब कि वो 1 वर्ष में हम कितने लोग, कितने सदस्य जुड़ जाते हैं, जैसे ये लगभग 2 है, जैसे 1,000 की आबादी में 20 लोग और जुड़ जाते हैं, इतना जिंदगी। तो इनको सबको हमको जनसंख्या का स्थिरीकरण करना है, मातृ मृत्यु दर कम करना है, शिशु मृत्यु दर कम करना है। तो आशाओं के प्रयास से सबसे ज़्यादा जो हुआ कि चूंकि गर्भवती माता की पहले जाँच हो गई तो ऐसा लगा कि वो अगर मान लो जोखिम में है, उसको एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, तो तुरंत हमने उसको इलाज दे दिया, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे दी, आयरन सुक्रोज चढ़ा दिया, तो इस माताओं की मृत्यु कम हुई। बच्चों को जहां तक देखा कि बच्चे अगर ऐसा तो नहीं कि वो खतरे के निशान में आ रहे हैं, उनकी सांस तेज चल रही है या निमोनिया डायरिया जैसी कुछ चीज हो रही है, तो तुरंत उसको रेफर किया जाता है, अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता है, बच्चों की जान बच जाती है। तो ये सूचकांकों को कम करने में आशा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये और आगे आगे और चैलेंजेस आते जाते हैं। अब जैसे कि अब मैं आपकी और दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है मतलब गैर संचारी रोग, 5 गैर संचारी रोग हमने मेन किए हैं। एक तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो कि अपने दिल के दौरे का कारण बनता है, डायबिटीज यानी मधुमेह बोलते हैं जिसको, और 3 तरह के कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये जो 5 चीजें हैं ये आज की तारीख में 62% मृत्यु इन कारणों से हो रही है। और ये वो चीजें हैं जो यदि हम अर्ली डिटेक्ट कर लें
1: जी सर,
0: तो इनका इलाज संभव है।
1: मृत्यु दर का बड़ा कारण,
0: हाँ ये मृत्यु का बड़ा काम है। और लेकिन तो ये इसके लिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इसके लिए भी हम आशाओं को प्रशिक्षित करते हैं। आशा समाज में जाकर प्रत्येक जो व्यक्ति 30 वर्ष से ऊपर का होता है उसका एक सीबैक फॉर्म भरते हैं, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट होता है। वो जैसे किसी व्यक्ति से जाके पूछती है क्या वो तम्बाकू का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, या महिला है तो फिर उसमें उनको अलग उनके तरह के प्रश्न रहते हैं, वो इन सब चीजों की जानकारी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के आरंभिक लक्षण उनको पता लग जाते हैं, यदि वो तुरंत अपना इलाज आरंभ कर दें तो उससे बचत हो सकती है। लेकिन ये तो ये सब चीजों पे आशा की भूमिका आ गई है। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत से चीज जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आ रहे हैं, पहले मातृ आशा का जो था वो मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित था और टीकाकरण से संबंधित था, अब नए नए जैसे जैसे कार्यक्रम आते जा रहे हैं हम आशाओं को उसके लिए प्रशिक्षित करते हैं और आशाओं की उसमें बहुत सकारात्मक और सक्रिय भूमिका रहती है।
1: जी सर, अभी आपने बताया कि आप आशाओं को प्रशिक्षित कराते हैं, तो वो प्रशिक्षण का कुछ आप यहाँ पे बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह से आप प्रशिक्षित करते हैं सारी आशाओं को?
0: देखिए, भारत सरकार का एक संस्थान है NHSRC, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो आशाओं के प्रशिक्षण के मॉड्यूल डिजाइन करता है और उनके प्रशिक्षक भी तैयार करता है। जिला स्तर पे हमारे जैसे हमारे सभी 52 जिलों में हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, झाबुआ में भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो इन ट्रेनिंग सेंटरों में हम प्रशिक्षकों के माध्यम से और NHSRC जो हमको मॉड्यूल देता है, पहले होता है प्रारंभिक प्रशिक्षण, फिर होता है दक्षता के प्रशिक्षण होते हैं जिसमें आशाओं को मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और कुछ संचारी रोगों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल किस तरह करें, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका भी 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। और अब एक्सपांडेड पैकेज आ रहे हैं जिसमें कि मेंटल हेल्थ और OEEE ना ओरल हेल्थ, IENT और इमरजेंसी, ये सब पैकेज अब धीरे धीरे आशाओं के नए आ रहे हैं जिन पे आगामी वर्षों में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा।
1: सर, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हमारे प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ कि उनके सतत प्रयास से हम लोग स्वास्थ्य सूचकांकों की बेहतरी में हमको सहायता मिली है, मदद मिली है। और आगे आने वाले जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसमें सभी में आप समर्पित भाव से, निष्ठा से कार्य कीजिए और अपने प्रदेश को स्वस्थ बनाने में, अपने समुदाय को स्वस्थ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी आशा बहनों के लिए काफ़ी अच्छा संदेश दिया। हो सकता है अभी कुछ आशा बहनें हमारी ये संदेश सुन भी रही होंगी, वो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाह भी रही होंगी लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं, तो उनकी ओर से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे रेडियो टेंटर हिल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन होगा। आप अगर फिर से यहाँ झाबुआ जिले में कभी भी आएँ तो हमारे रेडियो स्टेशन पर आएँ, यहाँ पर विजिट करें और फिर से कोई नया संदेश दें जो आगामी प्रशिक्षण होने वाला है आशाओं के लिए, उसके लिए भी आके कोई संदेश दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी धन्यवाद।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है टैरो की सतरंगी दुनिया और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं सुरभि चंद्रा, जो टैरो कम्युनिटी में चंद्रा के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रा को टेलेटेल टैरो के नाम से भी जाना जाता है। फैशन और अपैरल इंडस्ट्री में 18 साल बिताने के बाद इन्होंने अपनी कॉलिंग पाई टैरो, रेकी और क्रिस्टल की दुनिया में। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चंद्रा ने न सिर्फ नेबुला जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रीड किया, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए 1-to-1 सेशन भी करती हैं। उनकी रीडिंग्स सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों को हीलिंग की समग्र गाइडेंस देती हैं। सोशल मीडिया पर भी चंद्रा अपने कंटेंट के जरिए न सिर्फ टैरो को सिंप्लीफाई करती हैं, बल्कि उसके आसपास फैली मिथ और फियर्स को भी दूर करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि हम टैरो को थोड़ा समझें, थोड़ा महसूस करें और शायद थोड़ा खुद को भी पहचानें। चंद्रा जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आलोक जी, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस अवसर के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ और इस बातचीत के जरिए अपने छोटे से सफर और अनुभव को थोड़ा बहुत आपसे साझा करने की उम्मीद रखती हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया। चंद्रा जी, आपकी जर्नी वाकई दिलचस्प रही, फैशन इंडस्ट्री से लेके टैरो तक। हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप शुरुआत से बताएं ये रास्ता किस तरह से बना।
1: सच बताओ तो आलोक जी, ये रास्ता कोई प्लान के तहत नहीं था, कह सकते एक डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन रहा। हालांकि ये बीच शुरू से ही थे। मैं हमेशा से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और पढ़ाई की तरफ मेरा काफी रुझान था, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। क्या है कि बचपन से मेरी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअलिटी, इसोटेरिक स्टडीज या मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, जहां मेरे दोस्त कॉस्मिक और कार्टून्स की दुनिया को प्रेफर करते थे, मैं कीरो और लिंडा गुडमैन की दुनिया में खोई रहती थी। जी। तो क्या हुआ कि जब करियर चॉइस की बात आई तो एक टॉपर और साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर और इंजीनियर ना बनना चुनकर अपने क्रिएटिव इंक्लिनेशन को फॉलो किया। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैशन और अपैरल की इंडस्ट्री में कदम रखा और 18 साल तक फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के तौर पे काम किया। तेजुदामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उनके लिए मैंने काम किया। और इस दौरान मुझे दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए आप कह सकते हैं कि काम ही नहीं था, लेकिन अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को समझने का, सीखने का, अनुभव करने का एक मौका था। और शायद उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक्सपोजर और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या नेटवर्किंग जो है वो आज मेरे करंट पाथ में, जो कि लाइफ कोचिंग और हीलिंग वाला जो पर्पस है, कॉलिंग है, उस जर्नी का एक अहम हिस्सा बन गया, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। तो यही दिलचस्प रहा इस पूरे प्रकरण में।

0: रुझान बचपन से था, लेकिन आपने फैशन के कैरियर को
1: कैरियर
0: चुना,
1: पर। जी
0: ये
1: जी जी
0: शिफ्ट किस तरह से हुआ?
1: आलोक जी, जैसे कि मैंने कहा, शिफ्ट कभी ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। जो साइंस और सेटल क्यूज थे, उन्होंने अपनी मेरी कॉलिंग की तरफ मुझे गाइड किया। एज आई सेड कि डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन ने भी अहम भूमिका निभाई। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुला, और उसी दौरान मैंने, आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने 2 दशकों तक एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एज अ लाइफ कोच एंड अ काउंसलर काम किया।
0: अच्छा,
1: जी, और ये जो एक तरीके से जो लाइफ फिलोसफी है, वो आज मेरे काम में मेरी मदद करती है। तो एक वो बोलते ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरीके से ये सफर रहा, और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही, और आज मैं आपके सामने हूँ।
0: तो यही विस्पर आपको आखिरकार टैरो तक लेकर आई है?
1: या यही विस्पर जो है, एक तरीके से मैं अंदर की आवाज जो बन गई, जिसको मैं आई कुड नॉट इग्नोर एनी लॉन्गर, जो आपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली बोला उसको। और मेरा टैरो से जुड़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन का हिस्सा रहा। सही समय पर सही जगह पर टैरो ने मुझे ढूंढा, और मैंने टैरो को पाया, और तभी से एक नेवर एंडिंग लव अफेयर बन गया है। और इनफैक्ट जो एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ, और जो वो ये है कि जापानीज कल्चर में एक शब्द होता है, इकिगाई, जो सिर्फ
0: हाँ,
1: जी एक शब्द नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले। और इसी सेंस में टैरो से मेरा परिचय हुआ, जो कि मेरा इकिगाई बना। और जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि पैंडेमिक के बाद मुझे एक परफेक्ट समय मिला ना, जिसको मैं अपने कॉर्पोरेट करियर को ग्रेसफुली गुड बाय कह सकूं, और टैरो को अपना फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना सकूं। जी आलोक जी।

0: चंद्रा जी, अब हम टैरो की बेसिक्स पर आते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके मूल में क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज।
1: जी जी आलोक जी, आई थिंक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि टैरो के बारे में आजकल क्यूरियोसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो

0: तो ये जो आपने सवाल किया है बहुत अहम है। अगर अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो टैरो जो है वो 78 पत्तों का, 78 कार्ड्स का एक डेक है, एक गड्डी है, जो कि एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारे ताश के पत्ते होते हैं, जो हम सब जिससे हम सब वाकिफ है, वो 52 पत्तों की होती है। लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 22 मेजर अरकाना और 56 जो है माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय की उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 13वीं शताब्दी यूरोप में हुई थी। और शुरू में आपको अगेन जान के आश्चर्य होगा कि इसको प्लेइंग कार्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें ये थी एक यूनिवर्सल विजडम, कॉस्मिक विजडम पर आधारित थी, जो कि कह सकते हैं समय और सीमाओं की परे है ना। तो वो उसके बेसिस पे उसपे इंसाइट्स और गाइडेंस मिलती है। ओवर द इयर्स जो है एक आत्मचिंतन है और एक भविष्य दर्शन का जो एक साधन है, टूल्स ऑफ डिविनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बन गया है। और आज की तारीख में जो बोले, जो आपका सवाल है कि आज टैरो केवल भविष्य बताने के काम नहीं आता, लेकिन एक जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो अवचेतन मन जिसको हम बोलते हैं, उसको मिरर करता है। तो कहीं ना कहीं आलोक जी अगर ये बोले कि आपकी इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, एक आईना है टैरो, गाइड करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सही चॉइस करने में आपकी मदद करता है विदाउट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है ना कि हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो किसी और पर ब्लेम शिफ्ट कर दें, तो उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके आपकी आपको राह दिखाता है।
1: तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ये भविष्य बताती है या खुद को समझने का एक माध्यम है, एक तरह से एक मीडियम है कि हम टैरो के माध्यम से खुद को भी समझ सकते हैं।
0: अब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने और यही इसका निष्कर्ष है कि ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता, क्योंकि एक वो उसका बहुत ही एक छोटा परिचय हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो डज नॉट प्रिडिक्ट, इट रिफ्लेक्ट, हाँ इट गाइड, हाँ। तो एक तरीके से आपको एम्पावर करता है ताकि आप अपने डिसीजंस और अपने इमोशंस को क्लियरली देख पाए, एक बर्ड्स आई व्यू। और जो कि मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, जैसा मुझे आप अक्सर देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे भी कहते हुए, बोलते हुए और जिक्र करते हुए, कि टैरो एक जीपीएस की तरीके से है। ये एक आपको पाथ दिखाता है, लेकिन एक जैसे आप अपने गंतव्य तक कहीं पहुंचना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में बैठे हैं, जी आपको एक जीपीएस सेट करना करना होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ड्राइव तो करेंगे तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ना, उसी प्रकार से। हाँ, तो टैरो आपको रास्ता दिखाता है कि आपकी लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं उसके बेसिस पे वो आउटपुट आउटपुट आपके लिए आता है। टैरो इनसाइट से आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ के ना आप बेटर वर्जन बन सकते हो, अपने आप जो भी परिस्थिति में हो उससे निकलने की आप क्षमता रखते हो। तो चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स आए या स्मूथ राइड आए, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो।

0: चलिए, मैं इस सवाल से जुड़ा एक बात और पूछना चाहता।
1: बिल्कुल
0: अगर ये राह दिखाता है, तो
1: जी
0: क्या अगर राह में कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो
1: जी
0: क्या उसके प्रति कौशन देता है हमें, कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करता है कि भाई आगे ये दिक्कत आएगी?
1: देखिए, ये जो आपने दिस इज जो आप सवाल कर रहे हैं, ये फॉर्चून टेलिंग या आपको भविष्य दर्शन के तौर पे डेफिनेटली टैरो काम करता है। हमारी बातचीत के मकसद से मैं नहीं कन्वे करना चाहती कि टैरो को की दुनिया में या टैरो के रेल में आप बिल्कुल फ्यूचर नहीं देख सकते। आप बिल्कुल देखते हैं और देख सकते हैं, लेकिन
0: ओके
1: अगर राह में आगे पत्थर आने वाला है या गड्ढा आने वाला है तो ये आपको अवेयर जरूर करता है, लेकिन अलार्म नहीं करता। कहीं भी किसी भी
0: ओके
1: तौर तौर पे आपको घबराने की और निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो राह पत्थर आगे आ भी रहा है तो ये साथ के साथ आपको गाइड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़कर उस पत्थर को हटा पाए या उससे उबर कर आगे निकल पाए, ताकि वो पत्थर आपको विचलित ना करे। तो
0: बहुत बहुत
1: हाँ
0: सुंदर, बहुत
1: जी
0: सुंदर,
1: जी जी
0: बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया ये। तो
1: जी
0: अब ये बताइए कि आपकी रीडिंग्स में स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से इंटीग्रेट करती है, और इसके
1: जी
0: लिए आप पर्सनली, आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपके पास कोई गुरु या मेंटोर है जिन्होंने इस राह पे आपको गाइड किया है?
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक टैरो रीडर या टैरो एक्सपर्ट या लाइफ कोच काउंसलर होने के बतौर, बट किसी भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपकी हम सब की जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक तरीके से एंकर करती है, हमको बांधती है, जोड़ती है, एक स्टेबलाइज करती है। और जो आपने पूछा उस एस्पेक्ट में भी मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल सीकर और एक प्रैक्टिशनर मानती हूँ, और मैं कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को एज अ टैरो एक्सपर्ट या काउंसलर बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करती। मैं बेसिकली अपने आप को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के तौर पे आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं प्रीच नहीं करती विदाउट प्रैक्टिस ना। और जो मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल टूल्स के माध्यम से जो ग्राउंडिंग है, अलाइनमेंट है, वो ऑनगोइंग बेसिस पे मेरी साधना है जो मुझको मदद करती है। और जैसा कि आपने पूछा, आई हैव हैड अ गुड फॉर्चून कि मुझे सदगुरु में एक स्पिरिचुअल मेंटर और गाइड मिले हैं, जो उनके बताए हुए टूल्स हैं वो मेरी साधना में एक प्रेरक भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, और मेरे काम में मेरी डेफिनेटली मदद करते हैं। और उसी लिहाज से जो टैरो रेकी और जो होलिस्टिक हीलिंग या रिचुअल और गाइडेंस पे अपने दर्शकों को प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी आलोक जी
0: आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी,
1: जी
0: स्पिरिचुअलिटी लाइफ में एंकर का काम करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर ये
1: बिल्कुल
0: बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, एंकर का काम करे। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअलिज्म आपका एंकर बन जाए, तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती।
1: जी एग्जैक्टली
0: चलिए,
1: यही चीज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि भाई आपको टैरो रीडिंग के लिए तो आपको आ गए, आपको रास्ता भी मिल गया, लेकिन आपको एक विशफुल थिंकिंग के ओवर एंड बियॉन्ड आपको जो टूल्स चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी साधक होती है।
2: चलत

0: एसेंशियली टैरो और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
1: वो एक दूसरे के पूरक ही आप मान सकते हैं, क्योंकि
0: सप्लीमेंट्री।
1: हाँ सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जब अपने आप को ग्राउंडेड रखती हूँ तभी मैं दूसरों को मीनिंगफुल और एम्पावरिंग गाइडेंस दे पाती हूँ, राइट, बिकॉज
0: जी।
1: दिस इज ऑल डीलिंग विद एनर्जीज।
0: अब ये बताइए कि जो लोग टैरो आजमाना चाहते हैं लेकिन
1: जी
0: डरते हैं या
1: हाँ हाँ
0: संकोच करते हैं,
1: करेक्ट,
0: उन्हें
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए अब आज के तारीख में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ना, टैरो अब जो है वो अब एक तरीके से हमारे आम घर घर की कहानी तो कहानी का हिस्सा बन रही है, या एक तरीके से जनरल परसेप्शन का एक हिस्सा बन रही है, और इसमें ये बहुत जरूरी और सुंदर सवाल हो जाता है। लेकिन टैरो को लेकर कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि टैरो का जो परसेप्शन है, प्रोजेक्शन है, आम दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं इसको लेके। हाँ, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ईवल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई ये कोई इम्पोर्टेंट है समझना हमारा हम सब के लिए, ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन देने का टूल भी नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी धारणा हो गई है। हाँ, कि हमारा कोई फ्यूचर, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, और टैरो हमेशा फ्रीविल के साथ काम करता है, तो आपके आउटकम आपकी चॉइसेस पर आधारित होते हैं, और अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, समझ से काम लेते हैं, क्लैरिटी के साथ काम लेते हैं, तो यही फर्क बनता है आपके मेक और ब्रेक सिचुएशन में। तीसरे और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग ने पहले भी जिसका जिक्र किया कि आईने की तरीके से काम करता है, जो कि आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से जब आप टैरो के रीडिंग के लिए आते हैं तो एक आपको एक न्यूट्रल और थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें से आलोक जी बहुत आसान होता है हमें अपने लिए एक विक्टिम मान के चलना और एक ब्लेम गेम में इंडल्ज करना कि ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि वो दूसरे ने ऐसा किया। तो जब आप टैरो से आप सवाल पूछने आते हैं तो एक तरीके से थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें आपको समझ आता है कि आपके आपके जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो पाती है। इसलिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वाई एंड वेन, क्यों मेरे साथ हो रहा है और कब मेरा सिचुएशन ठीक होगी, अगर आप पूछें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परिस्थिति में अपने आप को उबारने के लिए, तो वो बेहतर एक आपको एक आयाम मिलता है, एक बेहतर आपको एक समझ और एक गाइडेंस मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सही गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रीडर का पढ़ने का स्टाइल समझें और एक
0: जी
1: सेफ रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में रीडिंग लें। आप समझ सकते हैं आलोक जी, आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतना सब कुछ, हर दूसरा आदमी सब कुछ है, एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज अ टैरो रीडर, एवरीवन इज एन एक्टर। हाँ, तो लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली टैरो के केस में, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, तो एक तरीके से रीडिंग ही नहीं, एक थेरेपी है, काउंसलिंग है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है,

0: तो बहुत जरूरी है कि जो लोग टैरो से डरते हैं, तो वो उसका उसका कारण ये हो सकता है कि उनके लिए कोई नेगेटिव स्टाइल ऑफ रीडिंग का सामना हुआ हो, जहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो क्लिकबेट या डराने वाली हो। तो मेरा सच्चा सुझाव यही रहेगा कि ऐसे रीडर से थोड़ा दूर रहें और थोड़ा अपना अपना आप जो बोलते हैं ना, एक अपनी समझ लगाएं, एक सही बेहतर रीडर और रीडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई और चुनने के लिए, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर खुद कोई एक कोई खास बिलीफ सिस्टम या फेथ होना चाहिए अगर आप टैरो की दुनिया को आजमाना चाहते हैं। अंदर से आपको स्ट्रोंग होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बिलीफ सिस्टम या फेथ की तो उतनी जरूरत नहीं है जितनी क्लैरिटी की जरूरत है ना। तो बिलीफ वो ओवर एंड बियॉन्ड एनी फेथ और बिलीफ सिस्टम है। बस जो आप जो ये जो पूछ रहे हैं, इसमें कोई रिलीजियस फेथ या बिलीफ सिस्टम नहीं है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए बस इतना काफी है कि आपका ओपन हार्ट और माइंड होना चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं मोटे शब्दों में। और जैसा कि मैंने कहा कि वाई और वेन से आप के बजाय आपके जो अगर सवाल सवाल अगर हाउ और व्हाट पे होंगे, तो वो आपको एम्पावरिंग इंसाइट दिलाते हैं। तो एक ओपन हार्ट एंड माइंड, और दूसरा सही सवाल, और तीसरा जो ये बात है कि जो जो रिसीवर है, जो क्वेरेंट है, जो उसका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, हाँ, अगर वो सही मायने में पॉजिटिव होता है ना, एफर्मिंग होता है, तो एक डीपली सेटिस्फाइड रीडिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। तो एक चीज का बस मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी के श्रोताओं को, कि जब आप रीडिंग सेशन के लिए, टैरो सेशन के लिए आइए, तो आप ये मत सुनने आइए कि एक इमोशनल वैलिडेशन नहीं, कि जो मैं सोच रहे हो वही होना चाहिए और कुछ और आप सुनने या समझने के लिए तैयारी ना हो ना। क्योंकि टैरो आपको हमेशा वही बताएगा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी हो आपके वो सुनने के लिए।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी।

0: तो चंद्रा जी, अब आने वाले समय में टेली टेल टैरो या आपके सफर में हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा?
1: आलोक जी, देखिए, मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं किसी रेस या नंबर चेस का कोई हिस्सा नहीं बनना है। जो मेरा कमिटमेंट है वो इससे कहीं गहरा है, और मैं टैरो को एक टूल और सेल्फ अवेयरनेस के टूल के रूप में आप सबके लिए, हम सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती हूँ। और मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं हर सीकर को हैंड होल्ड कर सकूँ। आज 10 से 12 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, और मेरा जो थोड़ा बहुत निचोड़ है मेरी जर्नी का, वो यही है कि आज भी 4, 5, 6 साल से लोग लगातार पलट पलट के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कि उनकी फाउंडेशन, टैरो को उनके लिए एक्सेसिबल किया है, जिसमें वो सेल्फ ग्रोथ का उसको एक जरिया बना सकते हैं। तो हर एक एक्सचेंज मेरे लिए भी उतना ही एक नया लेसन और एक सबक होता है, जिसमें एक मैं म्यूचुअल ग्रोथ का अनुभव करती हूँ। और जो भी मेरे पास टूल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इन पर्सन हो, वो मैं बिना किसी दौड़ भाग के, बस इस पर्पस के साथ मैं इसको, इस मुकाम को एक आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आपके अगर कोई भी लिसनर का मन हो, किसी भी श्रोता को मन हो, जिनके जिनके दिल में कोई भी सवाल बुलबुला रहा हो, तो दे आर मोर देन वेलकम टू फाइंड मी, और मैं अपनी जो भी लिमिटेड जर्नी के साथ उनसे शेयर करके आई वुड लाइक टू वॉक द पाथ विद देम। इट वुड बी माई ऑनर।

0: होता है।
1: तो फिर चलते चलते ये भी बता दीजिए कि श्रोता आप तक अगर उनको टैरो रीडिंग के लिए या किसी और चीज के लिए आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह पहुंच सकते हैं।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे हाथ जोड़ के कि सबसे टैरो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जाके आप अपने लिए टैरो डेक खरीदे, क्योंकि मेरा कभी भी रीडिंग स्टाइल ये नहीं रहता, ये नहीं है कि आप मेरे पास ही आए टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ रूमी के शब्दों में, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो यदि आप सुन रहे हैं तो यूनिवर्स का एक ऑस्पिशियस साइन है कि आप भी अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर चंद्रा आपके किसी भी तरीके से आपके उसमें शामिल हो सकती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेलर टेल टैरो और यूट्यूब पर टेलर टेल टैरो के नाम से पा सकते हैं। और मेरी सोल फैमिली जो हर सीमा और हर डेमोग्राफिक से परे है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और सच कहूँ तो आप सभी से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल बी ट्रूली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू।

0: अच्छा, इसका मतलब है कि हम भी एक टैरो का डेक खरीद सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: इज इट
1: खरीद
0: सो?
1: सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं आलोक जी। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बी, व्हाई डोंट वी बिगिन विद यू, प्लीज गो अहेड एंड बाय फ्रॉम आपके, आपका
0: बिल्कुल।
1: जो लार्ज साइज पिज्जा आता है वीकेंड पे, उससे सस्ता इन्वेस्टमेंट है और बहुत
0: तो
1: बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जी
0: पर
1: आलोक जी।
0: हमें इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे उसको, अगर मान लो मैं खरीद लिया किसी ने तो कैसे
1: आलोक जी
0: हुआ?
1: टैरो एक तरीके से आपका हम सफर है, हाँ, जिसको आप अपने आप वो एक वो आप खुद ब खुद, जैसे मैंने बोला ना, मैंने टैरो को पाया और टैरो ने मुझको पाया, तो एक बार ठीक है, हाँ, उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कुछ एडुकेशन और उसके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, और उसके लिए मैं हूं ना
0: ओके ओके
1: हाँ, तो वो
0: चलिए
1: गाइडेंस मैं
0: चलिए,
1: दिखाऊंगी जी।
0: ये हमारा टेक अवे हो गया आज
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी,
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया चंद्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे श्रोताओं से सारी बातें शेयर की, और मैं मानता हूं कि आपकी आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत ही उपयोगी रही। श्रोताओं को अपने टैरो को सिर्फ मिस्टिकल या एंटरटेनमेंट टूल नहीं, बल्कि एक मिरर, गाइड और एक सशक्त करने के माध्यम के रूप में दिखाया है आपने, तो बहुत ही आपका शुक्रिया, थैंक यू।
1: धन्यवाद। मुझे भी बातचीत बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से आभारी हूँ आपसे इस खूबसूरत अवसर के लिए और अपनी जर्नी आप सबसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड लाइफ टू ऑल योर लिसनर्स।

0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
1: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: लुई पास्चर। आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
4: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
3: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो,
6: अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: चलो चलो चलो मुझे
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
10: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
10: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
10: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया। जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
6: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ।
0: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
11: सर सर ये टेलीग्राम।
0: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
11: क्या हुआ सर?
0: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
11: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
11: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
12: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
12: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
12: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
12: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
13: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विज्ञान गीत

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: बाबा आमटे

कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

इसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन
पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

विकास और प्रकाश दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहाँ रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और

यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंदवन सचमुच आनंद का वन है।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। '78 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
4: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
3: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
4: हाँ, अब बन गई रेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
4: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
5: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
3: हाँ, हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
5: चलो। रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। हा, अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
3: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
5: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
3: अच्छा
5: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
4: दादाजी, मैंने देखी है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
5: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
3: अरे वाह,
5: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
3: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
5: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
6: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा।

0: जाएगी।
1: हाँ हाँ उतरो बेटी।
2: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
0: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
0: अच्छा तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
0: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
4: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
0: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
0: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
3: चुक चुक चुक चुक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपने खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत ऊबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो। और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आइए सुनते हैं एक और सुंदर गाना अपनी ही संस्कृति का, जो कि हम फेरे लेते समय उस गाने को अधिकतर गाया करते हैं। आइए सुनते हैं गाना।

0: रेडियो टांटा भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कवच नासी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी व कवक नासी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं कि सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नज़दीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है वहाँ पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रवि की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
1: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सके। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्टी।
2: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी। अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो शिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है। तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 कुंटल, 8 कुंटल, 5 कुंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 कुंटल, 18 कुंटल, 20 कुंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 कुंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है। और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है। तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का, वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
1: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
3: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
4: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशु पालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टंटिया फील 90.8 FM।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया फील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती के के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
4: रेडियो टांटिया फील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी फल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपला रेडियो आपनी बात है।
1: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती हैं कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
6: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे को मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज हैं, मिलेट कुकीज हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए। तो
1: वही PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
7: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम उसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: आपड़ी बातें
1: रेडियो टांटी अपील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: आइए सुनते हैं अपनी ही संस्कृति का एक और सुंदर गाना।

0: था।
1: दोस्तों हम सुन रहे हैं खेती किसानी कार्यक्रम और इस प्रोग्राम में हमने इस कार्यक्रम के द्वारा हमने काफी जानकारियां एकत्रित की है, वो चाहे हमारे बीजों को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो और अन्य कई प्रकार की चीजों में हमने किस तरीके से खेती को किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है, उसका समय समय पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखना है, इन सब चीजों को लेकर अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक और हमारी संस्कृति का एक और सुंदर सा गाना।

0: झाबुआ। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज हाजिर होती हूं आप सभी के बीच में चर्चा का एक नया विषय लेकर। आज भी हाजिर हूं आप सभी के बीच में लेकर चर्चा का एक नया विषय। तो श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे रेडियो स्टेशन पर मौजूद हैं डॉक्टर एस गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के। तो आइए आज जानते हैं हम अपने चर्चा का विषय। आज है हमारे चर्चा का विषय एक बहुत ही नया और यूनिक सा मुंह के छाले, जिसके संबंध में हम सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का हमारे रेडियो स्टेशन रेडियो टंटियाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो श्रोता, मुंह के छाले होते क्या है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर से सबसे पहले जानते हैं कि मुंह का छाला क्यों होता है, उसका कारण क्या है।
3: मुंह के छाले कई तरीके के होते हैं। ऐसे समझिए कि कई बार जो है ओठ के ऊपर एक छोटा सा छाला हो गया, ठीक है
2: जी,
3: या जबान के ऊपर एक छोटा सा छाला हो गया, ठीक है, तो वो भी एक छाला है ना
2: जी।
3: कभी कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, है ना, गुटखा या फिर इसको क्या बोलते हैं, सुपारी खाते हैं, उसकी वजह से भी एक छाला हो जाता है, वो भी एक छाला होता है। कभी कभी क्या है, खाना खाते समय या बात करते समय दांत के बीच में जवान आ जाती है या गाल आ जाता है या फिर ओठ आ जाता है तो कट जाता है, वो भी एक छाला हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है अक्कल दाड़ आती है, अक्कल दाड़ जो जिसको हम आखिरी दांत या विजडम टूथ बोलते हैं, वो उसके दोनों दांतों के बीच में भी उधर जो है चमड़ी काट जाती है, उसको भी हम छाला बोलते हैं। तो छाले कई तरीके के मुंह में होते हैं। कभी बीमारियों से भी छाले हो जाते हैं, मान लो कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो शरीर में भी छाले पड़ते हैं तो मुंह में भी छाले हो जाते हैं, जैसे अभी अपने जो माता निकलती है ना उसमें भी छाले हो जाते हैं, है ना, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, मुंह में भी छाले हो जाते हैं। कभी कभी जो है छाले अपने को जो है किसी भोजन की कमी, भोजन में जो तत्व होते हैं जिसको अपन मिनरल्स बोलते हैं, है ना, विटामिन्स बोलते हैं, उनकी कमी से भी मुंह में छाले हो जाते हैं।
2: हाँ,
3: तो ऐसे अलग अलग तरीके के छाले रहते हैं मुंह में। जो मुख्य रूप से दो ही तरीके के छाले होते हैं, एक तो जो भोजन है वो संपूर्ण आहार नहीं मिलता, उसमें पूरी चीजें नहीं मिलती हैं, जैसे विटामिन वगैरह की कमी रहती है, कुछ लोग हरी सब्जियां वगैरह कम खाते हैं, ठीक है, एक ही तरीके का भोजन खाते हैं, संपूर्ण आहार मिलेगा उसमें तो वो न्यूट्रिशन के मतलब जो तत्व होते हैं वो पूरा भोजन मिलेगा तो शरीर में फिर वो स्वस्थ रहेगा, उनके छाले वाले नहीं होंगे। दूसरा होता है कि तंबाकू खाने से, है ना, या सुपारी खाने से जो छाले होते हैं
2: नशे की वजह से।
3: हाँ, नशे की वजह से, है ना। तो अधिकतर आप देखेंगे कि जो मेरे पास मरीज आते हैं वो यही आते हैं कि जरा सा उनको छाला हुआ, बोले सर देखना कहीं कैंसर तो नहीं है मुझे
2: जी।
3: वो कैंसर बोलते हैं क्या, कैंसर। हाँ, तो फिर हम लोग उसके एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद देखते हैं कि वो सादा छाला, सिंपल है, कोई कोई ऐसा खतरनाक छाला नहीं है, लेकिन मरीज डरे हुए रहते हैं क्योंकि आजकल देखा है कि अपने देश में और इवन पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा ओरल कैंसर हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। लोगों को क्या है कि फूड हैबिट्स से जो है मुंह का कैंसर हो रहा है, फूड हैबिट्स जो है, जो एक तो वो प्लस ये अपने ये नशे वाली चीजें हैं, गुटखा है, सुपारी है, तंबाकू है, मतलब बहुत खा रहे लोग, महिलाएं भी पीछे नहीं है, तो इस वजह से जो होता है, तो इससे क्या होता है मुंह कम खुलना, जैसे कुछ लोग सुपारी खाते हैं तंबाकू गुटखा खाते हैं, इससे क्या होता है, शुरुआत में मुंह कम खुलता है
4: जी,
3: ऐसा कम खुलता है और फिर वो कड़क हो जाती, चमड़ी कड़क हो जाती
4: जी।
3: फिर उसके बाद जो छाला बनता है वो कैंसर का रूप ले लेता है ना
4: जी। सर, ये मुंह का कम खुलना कैसे पहचान सकते हैं?
3: ये क्या होता है कि जैसे मान लो शुरुआत में अपन देखेंगे जो नॉर्मल इंसान होता है उसके जिनको कोई आदत नहीं होती है उसकी जो गाल की जो चमड़ी है, ऊंट की चमड़ी है, वो मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है ना, जिसे अपन उसमें हवा मारेंगे मुंह के अंदर तो गाल फूल जाते हैं। लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं या इनका कम मुंह खुलता है उनके गाल नहीं फूलते हैं और उनकी चमड़ी जो गाल है वो कड़क हो जाता है, कड़क हो जाता है, अंदर से अपन अंगुली डाल के फील करेंगे तो कड़क हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम्यूकस फाइब्रोसिस, या फिर बोलना चाहिए कि चमड़ी का पट्टिकाएं बनना, चमड़ी कड़क होना, ठीक है ऐसा। दूसरी चीज है अक्कल लाड़ की वजह से भी कम खुलता है, कभी कभी अक्कल लाड़ जब आती है, नई नई लाड़ इरप्ट होती है, बाहर निकलती है, तो उस समय उसके दांतों के चारों तरफ सूजन आ जाती है जिससे भी मुंह कम खुलना, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रहता है, 4-5 दिन के लिए दवाई गोली ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो सब सुपारी खाने से या गुटखा खाने से या तंबाकू खाने से जो मुंह कम खुलता है वो फिर वापस ठीक नहीं होता है, और ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मरीज को और ध्यान रखना पड़ता है, तंबाकू छोड़नी पड़ती है, बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ती है और अच्छी हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं और डॉक्टर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं दवाई, तब जाके वो मुंह खुलता है
4: जी। सर, आपने अभी मुंह का कैंसर का नाम लिया था, जो कि मुंह के छाले बनते हैं उसके बाद में मुंह का कैंसर हो जाता है, तो कैसे छालों को कैंसर समझा जा सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है और खुद भी महसूस किया है कि कभी कुछ खट्टा खा लिए तो मुंह में छाले की तरह आ गया, या फिर कभी कुछ गर्म खा लिए जिससे जल गया जुबान तो उसपे कभी कभी छाले आ जाते हैं, तो क्या उसे भी हम मुंह का कैंसर समझ सकते हैं?
3: नहीं, जो किसी के जैसे मान लो कोई लिक्विड या कोई खाना, गर्म खाना खाने से या गर्म दूध पीने से या चाय पीने से जो जल जाते हैं वो कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, घाव भर जाता है, सिंपल छाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी जो मैंने बताया नींद पूरी नहीं होती है या ट्रैवलिंग करते हैं या कब्जियत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो वो भी सिंपल छाला है, वो 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, विटामिन्स वगैरह लेते हैं और अच्छा पानी पीते हैं तो ठीक हो जाता है, या छोटा मोटा कोई दवाई ट्यूब आता है ऑइंटमेंट वो लगाने का, छाले की दवाई, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो कैंसर का जो छाला होता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब वो घाव भर नहीं रहा है, ठीक है, और वो कम से कम शुरुआत में उसके मुख्य कारण तो यही होते हैं कि तंबाकू खाना, ठीक है, या फिर किसी का इतिहास ऐसा है कि वो 10 साल से तंबाकू खा रहा है या 10 साल से बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या सुपारी खा रहा है या उसके मुंह में कोई ऐसी कोई नुकीली चीज है, जैसे कुछ लोग नकली दांत लगाते हैं, नकली जो नुकीला होता है उससे भी रगड़ खा के छाला हो जाता है, या फिर वो मैल बहुत ज्यादा जमा हुआ है,
4: गंदगी
3: उससे वो नुकीलापन आ जाता है तो उससे भी एक छाला हो जाता है, तो वो भी कैंसर हो सकता है ऐसा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कोई भी जो मरीज है वो आके जो दंत चिकित्सक को नजदीक जहाँ पे भी वो है डॉक्टर उनको दिखाना चाहिए, और दंत चिकित्सक ही उसको समझ पाता है या उसको देख पाता है कि ये नॉर्मल छाला है, सामान्य छाला है या फिर वो कैंसर है, उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है
4: जी। सर, मुंह के कैंसर का कारण क्या क्या हो सकता है?
3: मुंह के कैंसर का मुख्य कारण तो मैं आपको बताऊं कि यही है कि या तो विटामिन्स की कमी होना
4: जी,
3: ठीक है, या कोई दारू पीता है या अल्कोहल लेता है, ठीक है कि नहीं, उसकी वजह से भी उसको मुंह का छाला और कैंसर हो सकता है। बीड़ी सिगरेट या किसी भी रूप में तंबाकू खाना, चाहे वो स्मोकिंग करता हो या नॉन स्मोकिंग, मतलब बीड़ी पीता हो या फिर खाने की जो तंबाकू आती है, खैनी, गुटखा, चूरा, क्या बोलते हैं उसको, गुड़ाखू है ना, नाश्ता, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, है ना, बहुत सारी फॉर्म में तंबाकू अवेलेबल है, तो उससे वो मुख्य कारण तो तंबाकू है उसका कैंसर का, ठीक है, और सुपारी खाने से भी होते हैं कैंसर, है ना
4: जी।
3: और आपका जो है ये विटामिन जो रहती है मेन उनसे भी है ना, या फिर कोई नुकीला जो ऑब्जेक्ट है, कोई नुकीला दांत या कोई नुकीला जड़ पड़ी हुई है दांत की, है ना, वो रगड़ खा रही जवान को बार बार, है ना, कोई नुकीला दांत है या फिर कोई नकली दांत में रखा जो रगड़ खा रहा है ना, तो उससे भी कैंसर होता है
4: जी। सर आपने बताया कुछ सामान्य छाले होते हैं और कुछ छाले मुंह के कैंसर बन जाते हैं, तो इसे पहचाना कैसे जा सकता है? अगर 2 दिन, 4 दिन या फिर 1 सप्ताह तक जो ठीक हो जाए तो कितने दिन तक हमें इंतजार करना चाहिए?
3: 5-6 दिन, 7 दिन तक देखना चाहिए। यदि कोई छाला है और वो ठीक नहीं हो रहा है, यदि हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, यदि नहीं ठीक होता है, छाला बना ही हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हो सकता है वो कैंसर का रूप ले रहा हो या कैंसर होने वाला है ना, तो वो डॉक्टरी पहचान के उसको बता सकता है। उसके हम लोग जाँच कराते हैं, ठीक है। कुछ जांच ऐसी होती हैं जो मांस काट के भेजना पड़ता है, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा वो लैब में भेजना पड़ता है, ठीक है, तो वो डॉक्टर ही बता सकता है, उसको एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को।
4: जी सर। सर, ये छाले होने से बच कैसे सकते हैं?
3: छाले होने से ये मैंने आपको बताया कि ये सब बुरी आदतें हैं जो इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए किसी भी इंसान को, जो है ये नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, कि नशा जो है वो परिवार का भी नाश करता है, समाज का भी नाश करता है, देश का भी नाश करता है, क्योंकि उससे कुछ फायदा कुछ नहीं होता है उससे, है ना, आपको बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं उससे, आपको नशा करने से, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका कैटरेक्ट है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है ना, दांत खराब होते हैं, दांत की मुंह की चमड़ी खराब होती है, ये बहुत सारी बीमारियां जो है तंबाकू खाने से या नशा करने से होता है।
4: जी। और सर, मुंह के कैंसर से बचाव क्या क्या हो सकता है, बचाव कैसे कर सकते हैं मुंह के कैंसर का?
3: मुंह के कैंसर के बचाव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे मान लो आपको बताया कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, है ना, सुपारी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और कोई दांत नुकीला है मुंह के अंदर तो उसको डॉक्टर के पास जाके निकलवा देना चाहिए या उसको घिसवा लेना चाहिए जिससे स्मूथ हो जाए।
4: हाँ।
3: ना, कोई नकली दांत व्यक्ति पहनता है तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनको डिग्री नहीं होती उनके पास, है ना, सीख जाते हैं कहीं से भी और वो गलत तरीके से दांत लगा देते हैं, और वो गलत तरीके के जो दांत होते हैं वो उनको चुभते रहते हैं मसूड़े में या चमड़ी में, तो वो यदि लगा रखा है तो डॉक्टर पास जाकर उसको निकलवाना चाहिए। जो जो सही जो ग्रेजुएट डॉक्टर है, जो BDS है, जो सही सरकारी डॉक्टर है, या फिर मतलब उसको ये बोलना चाहिए रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना, जो अनपढ़ जो होते हैं ना, जो इनको हम लोग बोलते हैं कि दुकान खोल लेते हैं कहीं भी,
4: झोला
3: छाप डॉक्टर, उनसे दूर रहना चाहिए।
4: जी। होता क्या है कई बार हमारे जो रोगी हैं वो लोग सोचते हैं कम पैसे में इलाज हो जा रहा है तो वहाँ पे चले जाते हैं और जाके ट्रीटमेंट करा लिया करते हैं, तो उनसे उनको बचना चाहिए। और सर, साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने मुंह के कैंसर का कारण भी बताया, बचाव भी बताया, लेकिन हम उसका आपसे कुछ आसान शब्दों में उपचार जानना चाहेंगे।
3: उपचार ये है कि शासन की कई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत सब फ्री होता है इलाज, है ना। यदि किसी को मान लो कोई कैंसर हो गया है ना, तो उसी के अपने गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, हर स्टेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ भेज देते हैं, उनका फ्री में निःशुल्क इलाज होता है, कोई पैसा नहीं लगता उनका ऐसा। हाँ, और छोटा मोटा कोई छाला है तो उसके लिए हम लोग दवाइयों से ठीक करते हैं।
4: जी। यदि किसी को कैंसर हो जाए या फिर छाले गंभीर रूप ले लें, किसी को कैंसर के लक्षण दिखाई दे, तो वो सबसे पहले अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं, वहाँ पे अपना उपचार कराएं और फिर जैसा होता है वो डॉक्टर की सलाह लें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
3: जी, थैंक यू
4: सर। लास्ट में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इससे संबंधित एक और प्यारा संदेश दें, ताकि वो इसे सुने, समझे और अपने निजी जीवन में उसका उपयोग करे, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी समझा सकें।
3: मेरा झाबुआवासी जिले के जो भी है नागरिकगण, उनसे मेरा यही संदेश है कि नशे से बहुत दूर रहें, क्योंकि अपना झाबुआ जिला जो है वो मैंने देखा है कि यहाँ पे दारू जो अल्कोहल है वो भी बहुत यूज होता है, तंबाकू भी बहुत यूज करते हैं, महिलाएं भी तंबाकू खाती हैं। तो मेरा तो यही संदेश है कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है और आपका जो है ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में शुगर और BP हो गया है, जो किसान लोग हैं।

0: नहीं रहेगा, परिवार को भी नहीं चला पाएंगे, परिवार में लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं यदि अपन नशे से दूर रहें। तो मेरा यही संदेश है कि नशा बिल्कुल नहीं करें, और हो सके तो वो दूसरे जो छोड़ दिए हैं, वो जो तंबाकू खा रहे हैं है ना, और वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमारे पास एक टोबैको सेसेशन सेंटर है, तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है जिला चिकित्सालय, वहाँ के तंबाकू छोड़ सकते हैं। और यदि वो छोड़ देते हैं और लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई तंबाकू छोड़ें, ऐसा ये मेरा संदेश है।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए इतना अधिक समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां दी मुंह के छालों को लेकर, जिससे वो गंभीर बीमारी कैंसर से बच सकते हैं, किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, इसके बारे में आपने संपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए हमारे रेडियो टंट्या भील 90.8 FM छावा की आवाज की ओर से, और साथ ही जो श्रोता सुन रहे होंगे उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर जिंदगी के रंग गीतों के संग। ये वो महफिल है जहां हम जिंदगी के रंगों को महसूस करते हैं, कभी सफर के जरिए, कभी कहानियों के जरिए, कभी उन लोगों के जरिए जो अपनी हिम्मत की एक पहचान लिखते हैं। आज हमारे साथ हैं मिसेस मीना जी। मीना जी माने मीना गुप्ता जी, ऐसी शख्सियत जिन्होंने 18 साल अपनी फैमिली को समर्पित करे और उसके बाद अपनी पहचान खुद लिखी। इवेंट्स की दुनिया से लेकर फूड और गिफ्टिंग तक एक खूबसूरत सफर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग मीना गुप्ता जी के साथ।
2: तो मीना जी, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके?
3: बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बड़ा मतलब पहला एक्सपीरियंस है, तो बड़ी एक्साइटेड भी हूँ। लेट्स सी कैसा जाता है।
2: जी बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। मैम, आपने बहुत लंबा सफर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ तय किया, काफी कुछ आपने अपने जीवन में जिया, बहुत एक्सपीरियंसेस लिए। उसके बाद जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो पहला कदम 18 साल की गृहस्थी संभालने के बाद कितना मुश्किल था, और उस वक्त आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? और डर था या एक्साइटमेंट थी या किस तरह के इमोशंस थे? क्योंकि सडनली ये शिफ्ट लेना और अपने लिए कुछ करना और इतनी बड़ी एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी को शुरू करना, वो किस तरह का एक एहसास था आपके लिए? क्या चल रहा था आपके मन में?
3: सच कहूँ तो डर भी था और एक्साइटमेंट भी, लेकिन डर थोड़ा ज्यादा था। 18 साल तक सिर्फ फैमिली के लिए जी रही थी और जब मैंने अपने लिए कुछ करने का सोचा तो सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन एक और आवाज थी अंदर से, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। बस वही आवाज ज्यादा स्ट्रांग हो पाई और मैंने पहला कदम ले लिया। आज लगता है डर कभी गया नहीं, बस मैंने उसके साथ चलना सीख लिया।
2: बहुत ही सुंदर मैम, बिल्कुल पहली उड़ान जैसी थी आपके लिए घर से बाहर कदम निकालना, और बहुत ही रंगीन उड़ान थी। जैसे हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और उस परमात्मा के जिन्होंने आपके अंदर ये बीज डाला कि आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली लाइफ से बाहर निकल के कुछ एक समाज के लिए एक कदम उठाना है, कुछ करके जाना है यहाँ से। इसी नोट पे मैं आपसे पूछना

0: चाहूंगी आपका जो पहला इवेंट था, आपने इवेंट मैनेजमेंट से शुरू किया जैसे कि आपकी प्रोफाइल में हमने पढ़ा, तो आपका पहला इवेंट था टिकट टू बॉलीवुड, बहुत ही प्यारा नाम है, इससे मुझे वो गाना याद आता है बड़ा प्यारा सा, झूम बराबर झूम का। और जब आपने यंग टैलेंट्स को स्टेज दिया इस इवेंट के जरिए, तो आज आप जब उस मोमेंट को याद करती हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि मैंने सही रास्ता चुना, और किस तरह से ये पूरा इवेंट शुरुआत हुआ, इसका बीज कैसे डाला, कैसे आपने सोचा कि ऐसा इवेंट करते हैं, क्यों आपको लगा कि यंग टैलेंट को स्टेज देना जरूरी है, क्या प्रोसेस और क्या जर्नी थी इस टिकट टू बॉलीवुड की?
1: यस, बिल्कुल याद है। बेसिकली क्या है, अपने समाज में इवेंट्स होते थे कभी, जैसे ईयरली इवेंट्स होते हैं हर समाज में, तो उसके लिए बच्चों को डांस की प्रैक्टिस करवाना, वो सब करते करते ऐसे ही लगा, जब एक कोरियोग्राफर था साथ में, उसके साथ ऐसे ही बातचीत हुई, तो उसने कहा मैम हाँ हम ऐसा कुछ इवेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है यार करते हैं, चलो स्टार्ट। तो जब हम पहली बार किसी पार्टिसिपेंट को परफॉर्म करते हुए ऑडियंस के सामने या ऑडियंस को क्लैप करते हुए जब देखा, उस मोमेंट पर मेरे गूज़बम्प्स आ गए। मुझे लगा ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, किसी का सपना है जो यहाँ सच हो रहा है। वही मोमेंट था जब मुझे फील हुआ हाँ मैंने सही रास्ता चुना है। और मतलब मैंने बहुत सारे लेडीज को प्लेटफॉर्म दिया, लेडीज बहुत सारे मिसेस, कोई मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी गई, तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मेरे चुने हुए बच्चे जिनको कुछ सिखाया वो आगे बढ़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सपनों की शुरुआत हुई आपकी। और कोई ऐसा पल याद आता है इस इवेंट का जो आज भी आपके जहन में एकदम ताजा है कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था, कोई भी एक वाक्या जो हमारे साथ आप साझा करना चाहें?
1: तो पहली बार था तो बच्चे भी बहुत तरह तरह के बच्चे थे, कोई क्योंकि सिंगिंग डांसिंग और कोरियोग्राफी, तो कोरियोग्राफी उसमें भी रैंप वॉक वो बिल्कुल नया था मेरे लिए, खुद को नहीं आता और बच्चों को सिखाना। ठीक है, बेस्ट कोरियोग्राफर सेलेक्ट किया था जिसका वर्ल्ड में नाम है शायद लोगों, तो उसके साथ बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर हुए क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की चीज कर रही थी। तो जब वो प्रैक्टिस करवाते थे तो मतलब सीखने का भी मिला मौका खुद को भी, और वो मोमेंट बहुत अच्छे थे।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई आपकी, और इसी शुरुआत से हम सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मीना जी। मीना जी, आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जैसे आपने हमें बताया वो क्यूरेट किए, जैसे फैशन शोज हैं, बॉलीवुड नाइट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहला सवाल मेरा इस सवाल में है कि जब आप ये इवेंट्स कर रहे थे तो आप जब सपनों को स्टेज पर सच होता देखते थे जैसे आपने हमें बताया, आपके अंदर क्या एहसास होता था, आपको कैसा लगता था कि आपने क्या अचीव किया, किस तरह के आपके एक जहन में ख्याल आते थे, एहसास आते थे, और आपको किस तरह से वो फील करवाता था वो मोमेंट। और इसी से मेरा दूसरा सवाल है, इन फैशन शोज और बॉलीवुड नाइट्स किससे रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फनी या ह्यूमरस या दुखी कर देने का वाला हिस्सा, या कुछ भी ऐसी याद जो आज भी आपको एकदम एकदम से हिला देती है या खुश कर देती है या आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला देती है?
1: मोमेंट्स तो बहुत सारे थे, मैं क्या बताऊं, अच्छे भी रहे है ना, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत देखा क्योंकि नया कदम रखा था और एक्सपीरियंस भी कम था
0: जी।
1: बट कहूंगी कि हाँ, इवेंट्स करते करते मतलब बहुत एंजॉय करती थी। कई बार तो मतलब ऐसा जाता था कि भाई मतलब हाँ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: एक दो बार कभी ऐसा भी हुआ है कि इवेंट है और बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ऐसी सिचुएशन की काम पूरा ढंग से नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा कभी ऐसा होता था, तो रोना भी ऐसा आता था। तो बस ठीक है, ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी, मैं कभी रुकी नहीं, मैंने हमेशा ये सोचा कि करते रहू, बस डेफिनेटली सक्सेस, ये मेरी हमेशा थ्योरी रही है, हार मानना मैंने कभी नहीं सीखा
0: जी।
1: तो बस कदम आगे बढ़ते गए और साथ में जैसे कहते हैं भगवान का साथ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है
0: जी।
1: तो ठीक है, ये लाइफ है और उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं।
0: और जब उन लोगों के सपने आप सच होते देखते थे जिनको आपने स्टेज दिया, तो आपको क्या एहसास होते थे, क्या आपको एक अचीवमेंट फील होता था, या किस तरह का आपको, या आपको लगता था मेरा सपना सच हो रहा है?
1: ये डेफिनेटली मुझे यही लगता था कि आज मैं किसी को प्लेटफॉर्म दे पाई, वो लोग आगे बढ़ पाई, वैसी जो लेडीज हैं जिन्होंने अच्छा अचीव किया, आज जयपुर में अच्छा नाम हुआ हो रहा है उनका, और लोग एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाना और ये सब, और एक ने अपना खुद की इवेंट कंपनी खोली, मतलब लोगों को प्लेटफॉर्म दिया तो आगे वो आज बढ़ पाए, जो शायद हाउसवाइफ से थी है ना
0: जी।
1: और कुछ बच्चे अपने अपने अपने फील्ड में उन्होंने अच्छा नाम कमा रहे हैं जयपुर में रह करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने कुछ ऐसा किया कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिला और लोग आगे बढ़ पाए।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है ये जब किसी और के सपने आपके सामने, आपके थ्रू आप उसका जरिया बनते हैं उन सपनों को साकार होने का, तो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, मैं समझ सकती हूँ। आपने आगे चल के इवेंट से फूड बिजनेस की तरफ शिफ्ट किया, और ये कहीं ना कहीं आई एम श्योर बहुत बड़ा शिफ्ट रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल अलग थोड़ी फील्स हैं, हालांकि फूड इज अ पार्ट ऑफ इवेंट बिजनेस, बट देन फिर भी इवेंट से पूरी तरह हटके फूड बिजनेस में आना, ये बदलाव किस तरह से आया, और क्या इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की थी, या अगेन आपके दिल से आवाज आई और आपने ये रास्ता चुना?
1: दिल से आवाज तो बात ही आई थी, बेसिकली एक छोटा सा गैप आया था इवेंट बिजनेस में, और अपना कहते हैं ना, प्लानिंग अपनी नहीं होती है, गॉड की होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये वो गॉड की प्लानिंग थी, और साथ में देखिए आवाज कि मैं इवेंट्स के थ्रू मतलब इधर शिफ्ट हुई फूड बिजनेस में, और इसमें एक लेडी है उनको थैंक बोलना चाहूंगी, शी इज अ फ्रेंड, उनका फूड बिजनेस था, वो रेडी टू कुक फूड और मसाला बनाती है
0: जी।
1: तो उन्होंने ही अप्रोच किया कि आप एज अ पार्टनर, फ्रेंचाइजी पार्टनर मेरे साथ आओगे क्या, तो मुझे लगा कि ठीक है करते हैं इसको भी, ऑब्वियसली एक वो भी चैलेंज ही था, तो ठीक है मैंने कहा चलिए करते हैं, और ऐसे करके फूड बिजनेस में स्टार्ट हो गए। और मतलब मैं उसके लिए क्या बोलूं कि कुकिंग और घर का स्वाद हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ थी
0: जी।
1: और मैंने सोचा क्यों ना इसे अपनी पहचान बना ली जाए।
0: जी जी जी, आपके क्लाउड किचन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, सो दैट हमारे श्रोता जान पाए कि मीना जी का किचन कौन सा है, क्या है, और मीना जी क्या क्या पकाती हैं।
1: तो देखिए कि शुरुआत तो हुई थी रेडी टू कुक फूड और मसाला, ठीक है, आज 5 to 6 इयर्स हो गए हैं इस लाइन में
0: जी,
1: है ना। तो करते करते ये हुआ कि प्रोडक्ट ऐसा है कि रेडी टू कुक फूड है, आपने काटो घोलो और बनाओ, मतलब जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड योर फूड इज रेडी इन 10 to 15 मिनट्स
0: जी।
1: तो बड़ा हैसल फ्री कुकिंग है जो आज की दुनिया में इतना वर्किंग है, आजकल लेडीज भी वर्किंग है, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, जिनको भी घर के खाने की क्रेविंग है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है हमारे पास, विदाउट प्रिजर्वेटिव है। तो वो करते करते मुझे लगा यार 13 ग्रेवीज है, पूरी मिक्सेस है, तो क्यों ना अपना एक छोटा सा क्लाउड किचन करें, ठीक है। तो ऑर्डर बेसिस रखा, कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब ऑर्डर बेसिस पे ही हम करते हैं, और इसमें अपना और भी मेन्यू डाल दिया क्योंकि हर लेडी के पास हुनर है कुकिंग में, हर लेडी माहिर है
0: जी जी,
1: है ना,
0: और हर स्वाद में, हर हाथ में अपना स्वाद है।
1: यस यस, तो और घर के खाने की बात ही अलग होती है। ऑर्डर बेसिस पे कर लिया ये काम, तो मैं तो आपके थ्रू लोगों को, लेडीज को स्पेशली कहना भी चाहूंगी कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं घर से बैठ के काम स्टार्ट, तो मुझे जरूर संपर्क करें, मैं उनकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल, बदलाव और सफर आपके जीवन का एक बहुत ही अचूक पार्ट रहा है, और इसी गहरे एहसास के साथ, इन्हीं गहरी बातों के साथ, इन्हीं प्यारी बातों के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, जीवन का फलसफा है। वेलकम बैक मैम, वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। मैम आपने गुरु कृपा फूड्स के नाम से आपका जो क्लाउड किचन है और उसमें आप घर का स्वाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका अंडरलाइन थीम ये है। आपके खाने में सिर्फ टेस्ट होता है या उसमें मिक्सचर होता है वॉर्म्थ का, इमोशंस का, यादों का? और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था, मैं चाहूंगी कि आप कोई अपनी फेवरेट रेसिपी जो आप सबसे आपको अच्छी लगती है, जो आपको पकाना अच्छा लगता है, जो आपकी सबसे अच्छी स्वादिष्ट बनती है, उसके बारे में भी हमें बताएं और उसकी शायद रेसिपी भी बता दें, सो दैट हमारे श्रोता नोट कर लें।
1: मेरे लिए ना कभी भी मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं रहा है ना, हर रेसिपी के साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है। माँ के हाथ का स्वाद, फेस्टिवल्स की खुशबू, फैमिली के हाथ साथ बैठकर खाना खाना, गुरु कृपा फूड के थ्रू मैं सिर्फ प्रोडक्ट में घर का प्यार, वार्म्थ और नॉस्टैल्जिया डिलीवर करना चाहती हूँ लोगों को। और रेसिपी की बात करूँ तो कौन सी रेसिपी बताऊँ मैं, तो मतलब मुझे

0: खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, बस ये कहूँगी कि मैं खाना बहुत तसल्ली से बनाती हूँ।
1: जी, करनी चाहिए बिल्कुल, अगर आपके हाथ में वो बात है तो बिल्कुल खुद की तारीफ करनी चाहिए।
0: बहुत पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं कहूंगी मुझे सब कुछ आता था, मैंने सीखा लोगों से, है ना, फ्रेंड्स से कि हाँ, बट जैसे अब मैं बात करती हूँ कि रेसिपीज की बात करते हैं तो मैं सरसों के साग की बात करती हूँ।
1: जी,
0: सरसों का साग मेरा मतलब जिसने भी खाया है सबको बहुत पसंद आता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में, और सब सब सबको लगता है कि सर्दियाँ आए तो यार एक बार साग मक्की की रोटी तो खिला दो,
1: जी
0: है ना। तो उसको
1: जी
0: बनाने की भी बड़ी टेक्निक है
1: जी
0: ऐसे में, कई बार लोगों को लगता है कि बस काटा पका लिया और ऐसे, वो नहीं, फिर उसमें जब चढ़ाते हैं तब से लेकर एक प्रोसेस है।
1: अगर आप बता सके हमारे श्रोताओं के लिए एक रेसिपी आपकी मनपसंद खाने की।
0: अच्छा चलिए, तो जैसे हम सरसों का साग के लिए हमने तैयारी कर ली, जब पानी बॉयल हो जाए तब हम उसमें साग डालें और एक सीटी के बाद उसको सिम गैस पे आप 1 से 1.5 घंटा पकने दीजिए सिम गैस, तो जितना पकेगा ना उतना ही बढ़िया बनेगा। उसके बाद जब आप खोले और जब हम उसको मिक्सी में थोड़ा सा एक बार ग्राइंड करते हैं, मतलब आपको सिर्फ नॉर्मल झटका सा ही देना है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मक्की का आटा डाल के उसको कर लीजिए रेडी। अभी भी जब आपको जब इसमें पानी डालना है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम पानी ठंडा भी डाल देंगे तो चलेगा क्योंकि बॉईल तो हो रहा है, मतलब नहीं, सरसों के साथ में आपको पानी बॉईल करके ही डालना है। तो आप पहले से ही पानी बॉईल करके रखे, हमें आदत होती है लेडीज को मिक्सी में रह गया तो उसमें पानी डाल के निकालना ही होता है, लेडीज क्या मतलब जनरली आते ही उसमें अपन मसाला छोड़ते तो है नहीं
1: जी,
0: तो उसमें भी आप गर्म पानी डाल के उसको करें और फिर से साग को अच्छे तरह से 1-1.5 घंटा ढक करके नॉर्मल पकने दें, उसमें थोड़ा सा घी डाल दें और उसको बीच बीच में अपना चलाते रहें। लास्ट में आप उसके अंदर देसी घी में पत्ता प्याज अदरक लहसुन टमाटर का बढ़िया तड़का दें
1: जी
0: और आप उसको एंजॉय करें।
1: मेरे मुंह में पानी आ गया सच में। आई विश अभी सर्दियां होती तो मैं झट से गुरु कृपा से ऑर्डर करती। और क्या हम जोमेटो पे हैं, क्या हम डिलीवर करते हैं जोमेटो पे?
0: नहीं, जोमेटो स्विगी पे नहीं है क्योंकि देखिए 24 घंटे फिर आपको लगे ही रहना पड़ता है
1: जी,
0: सिर्फ ऑर्डर बेसिस सारे काम है, जो भी ऑर्डर आता है उसी के अकॉर्डिंग बस
1: बस अगला ऑर्डर आपके पास आ रहा है आरजे तनुषा से और उनके श्रोताओं से। तो श्रोताओं सुनिए, आपने इतनी प्यारी रेसिपी, इतना प्यार भरा रेसिपी और इतनी जायकेदार रेसिपी, मैं तो वेट नहीं कर सकती खाने के लिए। मैम, स्टोरीज ऑफ हैम्पर भी एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं। आज की जो फास्ट पेस लाइफ है, जब गिफ्टिंग बहुत फॉर्मल हो गई है, सब कुछ बहुत फॉर्मल हो गया है, सब कुछ एक तरीके से किया जाता है और एक जैसा किया जाता है, ऐसे में आप कैसे इंश्योर करती हैं कि आपका जो हर हैम्पर है गिफ्टिंग का, वो एक स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल प्यार, एक स्पेशल एहसास के साथ बनाया जाए तो देने वाले के लिए वो एहसासों का उपहार हो, सिर्फ उपहार नहीं हो? और कैसे ये कॉन्सेप्ट आपने कंसीव किया?
0: देखिए, जब ये फूड बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैं हैम्पर्स भी बनाने लगी थी अपने प्रोडक्ट के साथ, बेकर से कुकीज पीकेज या कुछ भी, मतलब और अदर प्रोडक्ट, राखी के टाइम पे राखी डाली, है ना
1: जी,
0: और कहीं आजकल चीज कैंडल सोप, सो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन उसमें डाल करके थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन देकर, मतलब ब्रदर के पास जा रहा है या सिस्टर के पास जा रहा है तो वो स्पेशल उसके अंदर कुछ ब्रदर के लिए हमने मेंशन किया या सिस्टर के लिए मेंशन किया
1: जी।
0: अब गिफ्टिंग की बात करूँ तो फॉर्मल हो ही गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना जब कोई हैम्पर मिले तो वो फील हो ये स्पेशली मेरे लिए बनाया गया है
1: जी।
0: इसलिए हम हर हैम्पर में स्पेशलाइजेशन होता ही है हमारे
1: जी,
0: कलर्स है या प्रोडक्ट्स है, कोई मैसेज है, सब कुछ एक स्टोरी के हिसाब से डिजाइन होता है। तो मेरे लिए हैम्पर एक बॉक्स में एक इमोशन है जो किसी के प्यार के साथ पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सच में एक एहसासों का उपहार है और इसी एहसास के साथ जिंदगी के रिश्तों की मिठास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, खुशियां ही खुशियां हों दामन में जिसके।

वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। मैम आप कहते हैं कि सक्सेस जो है आपके लिए वो अवार्ड से नहीं बल्कि कस्टमर्स की स्माइल से होती है, तो बेसिकली आप रिवॉर्ड्स में बिलीव करते हैं अवार्ड से ज्यादा। क्या कोई ऐसा मोमेंट है, कोई कस्टमर रिएक्शन, कोई कस्टमर एक्सपीरियंस, क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको याद करके आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आपको लगता है कि हाँ जो जर्नी मैंने शुरू की थी वो मुकम्मल हो गई?

0: मतलब बहुत लव और केयर के साथ हमने उसमें डाले। थोड़ा सा इमोशनल भी था क्योंकि उनको अपनी बहू के लिए पहली बार कुछ भेज रही थी, है ना, एक प्यारा सा नोट उसमें हमने ऐड किया। जब खुशी वो हुई कि उनकी बहू ने उस हैम्पर के साथ फोटो शेयर की और जब उन्होंने मुझे शेयर किया, अब ऐसे कस्टमर के साथ हमारे रिलेशन कई बार ऐसे फैमिली जैसे भी हो गए हैं कि मतलब वो रिपीटेड ऑर्डर, चाहे वो एक हो चाहे पांच हो, वो हमें ही ऑर्डर देते हैं। जी, उनको लगता है कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि भी हाँ स्टोरीज ऑफ हैम्पर से अच्छी ही चीज जाएगी।
1: जी,
0: तो वो एक बहुत अच्छा एहसास होता है और जब कस्टमर्स खुश होते हैं तो वाकई लगता है कि हाँ क्योंकि हमने अच्छा किया है, मतलब किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। आप जब अपने सफर को देखते हैं आज, जहां से आपने शुरू किया, घर से आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक गए, ग्लोबल हो गए, ग्लोबल विजन रखा आपने, इतने इवेंट्स किए, इतने लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो आज उस फेज में हैं जहां वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं और उन्हें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत डर हैं, बहुत रुकावटें हैं उनके रास्ते में, तो कैसे आप उनको एक मैसेज देके, एक प्रैक्टिकल मैसेज देके इंस्पायर करना चाहेंगी कि अगर आप कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं और अपनी नई शुरुआत का एक पहला कदम ले सकते हैं?
0: यस, मैं इतना कहना चाहूंगी, अपनी लाइफ का रीस्टार्ट बटन किसी एज का मोहताज नहीं है, है ना, कभी भी आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। और ठीक है, डर जरूर होता है, बट अगर फेथ है, भगवान में भी फेथ रखिए, अपने अंदर फेथ रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ स्टार्ट कीजिए, है ना।
1: बिल्कुल,
0: अंदर की आवाज जो आपकी आती है ना, उसे कभी इग्नोर मत करिए। परफेक्ट प्लान का वेट मत कीजिए, बस छोटा सा पहला स्टेप लो और अपनी शुरुआत करो, क्योंकि नई शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन वही आगे चलकर आपकी पहचान बन जाती है। तो कभी भी मतलब कोई एज नहीं है और कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा माइंडसेट आपका होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ सीखने की भी कोई उम्र नहीं है, हम तो आज भी सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इतना कुछ जो बनाते हैं वो सीख सीख के ही बना रहे हैं, और मतलब आज का जो मैं बोलूंगी, जो आज की युग में, वैसे भी देखिए आप AI आ गया, इतने चैनल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपकी पसंद का कोई भी काम आप यहाँ से सीख सकते हैं, कोई आपको क्लास नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ आपके पास है, आप वहां से सीखिए और स्टार्ट कीजिए।
1: बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत एक बात की आपने कि रीस्टार्ट बटन आप खुद दबाते हैं और कभी भी उसका कोई एज नहीं होती, कोई फ्रेम नहीं होता। बहुत ही सुंदर बात मैम। और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो?
0: बस मैसेज तो स्पेशली लेडीज के लिए है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोई भी ऐसा, आपके सामने कोई इशू होता है, ऐसा आता है कि तुम मुझसे बात करना चाहे, कोई स्पेशली लेडीज, कोई जिनको कहीं कुछ करना हो तो मुझसे बात करवाई जा सकती है, मैं इस तरह तो मोटिवेट कर ही सकती हूँ
1: जी
0: लेडी को कि वो स्टार्ट करे अपना।
1: बिल्कुल मैम। तो दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी जिम्मेदारियों में छुपे होते हैं, कभी सपनों में, और कभी एक छोटी सी हिम्मत में। आज की महफिल में हमने ये महसूस किया कि नई शुरुआत के रंग कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच मीना गुप्ता जी, आज हमारे साथ इतनी प्यारी और सच्ची सहज बातें साझा करने के लिए।
0: थैंक्स, तो मैं आप लोगों का कहना चाहूंगी कि मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया और इसका भी समझा कि मैं कुछ दो शब्द आप लोगों से बात कर सकूं और लोगों को कुछ मोटिवेट कर सकूं।
1: नहीं, हम और बहुत बातें कर सकते थे, बट समय है और समय बलवान है, तो इसीलिए हमें हमारी कॉन्वर्सेशन रैप करनी पड़ेगी।

0: वरना बातें बहुत सारी होती, बहुत प्यारी बातें होती और बहुत जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती, जो हमारे शो का पर्पस है, जो हमारे शो का एक उद्देश्य है कि दिल से जुड़ी हुई बातें दिल तक पहुंचे, जिंदगी के रंग गीतों के संग। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग SN रेडियो पर। मैं हूं आपकी RJ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रंग के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के कैनवस को भरते रहिए। नमस्कार।
1: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
2: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है टैरो की सतरंगी दुनिया और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं सुरभि चंद्रा, जो टैरो कम्युनिटी में चंद्रा के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रा को टेलेटेल टैरो के नाम से भी जाना जाता है। फैशन और एपरल इंडस्ट्री में 18 साल बिताने के बाद इन्होंने अपनी कॉलिंग पाई टैरो, रेकी और क्रिस्टल की दुनिया में। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चंद्रा ने न सिर्फ नेबुला जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रीड किया, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए 1-to-1 सेशन भी करती हैं। उनकी रीडिंग्स सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों को हीलिंग की समग्र गाइडेंस देती हैं। सोशल मीडिया पर भी चंद्रा अपने कंटेंट के जरिए न सिर्फ टैरो को सिंप्लीफाई करती हैं, बल्कि उसके आसपास फैली मिथ और फियर्स को भी दूर करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि हम टैरो को थोड़ा

0: समझें, थोड़ा महसूस करें और शायद थोड़ा खुद को भी पहचाने। चंद्रा जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आलोक जी, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस अवसर के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ और इस बातचीत के जरिए अपने छोटे से सफर और अनुभव को थोड़ा बहुत आपसे साझा करने की उम्मीद रखती हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया। चंद्रा जी, आपकी जर्नी वाकई दिलचस्प रही, फैशन इंडस्ट्री से लेके टैरो तक। हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप शुरुआत से बताएं ये रास्ता किस तरह से बना।
1: सच बताओ तो आलोक जी, रास्ता कोई प्लान के तहत नहीं था, कह सकते एक डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन रहा। हालांकि बीच शुरू से ही थे, मैं हमेशा से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और पढ़ाई की तरफ मेरा काफी रुझान था, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। क्या है कि बचपन से मेरी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअलिटी, इसोटेरिक स्टडीज या मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, जहां मेरे दोस्त कॉस्मिक और कार्टून्स की दुनिया को प्रेफर करते थे, मैं कीरो और लिंडा गुडमैन की दुनिया में खोई रहती थी। जी जी, तो क्या हुआ कि जब करियर चॉइस की बात आई तो एक टॉपर और साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर और इंजीनियर ना बनना चुनकर अपने क्रिएटिव इंक्लिनेशन को फॉलो किया। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैशन और अपैरल की इंडस्ट्री में कदम रखा और 18 साल तक फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के तौर पर काम किया। तेजनामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उनके लिए मैंने काम किया। और इस दौरान मुझे दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए आप कह सकते हैं कि काम ही नहीं था, लेकिन अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को समझने का, सीखने का, अनुभव करने का एक मौका था। और शायद उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक्सपोजर और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या नेटवर्किंग जो है वो आज मेरे करंट पाथ में, जो कि लाइफ कोचिंग और हीलिंग वाला जो पर्पस है, कॉलिंग है, उस जर्नी का एक अहम हिस्सा बन गया, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। तो यही दिलचस्प रहा इस पूरे प्रकरण में।

0: देखिए, जो उस जमाने में बच्चे कुछ और तरह की किताबें पढ़ते हैं, और
1: जी
0: आप कीरो और लिंडा गुडमैन पढ़ती थी।
1: जी जी
0: लिंडा
1: जी
0: गुडमैन से हम लोगों का भी बड़ा जुड़ाव रहा है। हम जब
1: जरूर।
0: मैं जब
1: हाँ
0: पिलानी में पढ़ता था तो बड़ा
1: ओ
0: उसको पढ़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे हम
1: हाँ,
0: लोग।
1: मैंने भी शुरुआत यहीं से करी थी, लेकिन वैसे थोड़ा इम्प्रेस
0: चलिए
1: चढ़ने से आगे चली गई मैं। जी
0: चलिए,
1: जी
0: तो चलिए, तो स्पिरिचुअलिटी में रुझान बचपन से था, लेकिन
1: जी
0: आपने फैशन के कैरियर को
1: के
0: चुना,
1: तौर जी
0: ये
1: जी जी
0: शिफ्ट किस तरह से हुआ?
1: आलोक जी, जैसा कि मैंने कहा, शिफ्ट कभी ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। जो साइंस और सटल क्यूज थे, उन्होंने अपनी मेरी कॉलिंग की तरफ मुझे गाइड किया। एज आई सेड कि डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन ने भी अहम भूमिका निभाई। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुला, और उसी दौरान मैंने, आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने 2 दशकों तक एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एज अ लाइफ कोच एंड अ काउंसलर काम किया।
0: अच्छा,
1: जी, और ये जो एक तरीके से जो लाइफ फिलोसफी है, वो आज मेरे काम में मेरी मदद करती है। तो एक वो बोलते ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरीके से ये सफर रहा, और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही, और आज मैं आपके सामने हूँ।
0: तो यही विस्पर आपको आखिरकार टैरो तक लेकर आई है।
1: या यही विस्पर जो है, एक तरीके से मेरे अंदर की आवाज जो बन गई, जिसको मैं आई कुड नॉट इग्नोर एनी लॉन्गर, जो आपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली बोला उसको। और मेरा टैरो से जुड़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन का हिस्सा रहा। सही समय पर सही जगह पर टैरो ने मुझे ढूंढा, और मैंने टैरो को पाया, और तभी से एक नेवर एंडिंग लव अफेयर बन गया है। और इनफैक्ट जो एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ, और जो वो ये है कि जापानीज कल्चर में एक शब्द होता है, इकिगाई, जो सिर्फ
0: हाँ,
1: जी एक शब्द नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले। और इसी सेंस में टैरो से मेरा परिचय हुआ, जो कि मेरा इकिगाई बना। और जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि पैंडेमिक के बाद मुझे एक परफेक्ट समय मिला ना, जिसको मैं अपने कॉर्पोरेट करियर को ग्रेसफुली गुड बाय कह सकूं, और टैरो को अपना फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना सकूं।
0: जी
1: जी आलोक जी।

0: चंद्रा जी, अब हम टैरो के बेसिक्स पर आते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके मूल में क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज।
1: जी, आलोक जी, आई थिंक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि टैरो के बारे में आजकल क्यूरियोसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. और ये जो आपने सवाल किया है बहुत अहम है. अगर अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो टैरो जो है एक वो 78 पत्तों का, 78 कार्ड्स का एक डेक है, एक गड्डी है, जो
0: अच्छा
1: कि एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारे ताश के पत्ते होते हैं, जो हम सब जिससे हम सब वाकिफ है, वो 52 पत्तों की होती है. लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 22 मेजर

0: चलिए, मैं इस सवाल से जुड़ा एक बात और पूछना चाहता।
1: बिल्कुल
0: अगर ये राह दिखाता है, तो
1: जी
0: क्या अगर राह में कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो
1: जी
0: क्या उसके प्रति कौशन देता है हमें, कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करता है कि भाई आगे ये दिक्कत आएगी?
1: देखिए, ये जो आपने दिस इज जो आप सवाल कर रहे हैं, ये फॉर्चून टेलिंग या आपको भविष्य दर्शन के तौर पे डेफिनेटली टैरो काम करता है। हमारी बातचीत के मकसद से मैं नहीं कन्वे करना चाहती कि टैरो के को की दुनिया में या टैरो के रेल में आप बिल्कुल फ्यूचर नहीं देख सकते। आप बिल्कुल देखते हैं और देख सकते हैं, लेकिन अगर राह में आगे पत्थर आने वाला है या गड्ढा आने वाला है तो ये आपको अवेयर जरूर करता है, लेकिन अलार्म नहीं करता। कहीं भी किसी भी तौर पे आपको घबराने की और निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो राह पत्थर आगे आ भी रहा है तो ये साथ के साथ आपको गाइड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़कर उस पत्थर को हटा पाए या उससे उबर कर आगे निकल पाए, ताकि वो पत्थर आपको विचलित ना करे। तो
0: बहुत बहुत
1: हाँ
0: सुंदर, बहुत
1: जी
0: सुंदर,
1: जी जी
0: बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया ये। तो
1: जी
0: अब ये बताइए कि आपकी रीडिंग्स में स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से इंटीग्रेट करती है, और इसके
1: जी
0: लिए आप पर्सनली, आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपके पास कोई गुरु या मेंटोर है जिन्होंने इस राह पे आपको गाइड किया है?
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक टैरो रीडर या टैरो एक्सपर्ट या लाइफ कोच काउंसलर होने के बतौर, बट आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपकी हम सबकी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक तरीके से एंकर करती है, हमको बांधती है, जोड़ती है, एक स्टेबलाइज करती है। और जो आपने पूछा उस एस्पेक्ट में भी मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल स्पीकर और एक प्रैक्टिशनर मानती हूँ, और मैं कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को एज अ टैरो एक्सपर्ट या काउंसलर बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करती। मैं बेसिकली अपने आप को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के तौर पे आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं प्रीच नहीं करती विदाउट प्रैक्टिस ना। और जो मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल टूल्स के माध्यम से जो ग्राउंडिंग है, अलाइनमेंट है, वो ऑनगोइंग बेसिस पे मेरी साधना है जो मुझको मदद करती है। और जैसा कि आपने पूछा, आई हैव हैड अ गुड फॉर्चून कि मुझे सदगुरु में एक स्पिरिचुअल मेंटर और गाइड मिले हैं, जो उनके बताए हुए टूल्स हैं वो मेरी साधना में एक प्रेरक भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, और मेरे काम में मेरी डेफिनेटली मदद करते हैं। और उसी लिहाज से जो टैरो रेकी और जो होलिस्टिक हीलिंग या रिचुअल और गाइडेंस पे अपने दर्शकों को प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी आलोक जी
0: आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी,
1: जी
0: स्पिरिचुअलिटी लाइफ में एंकर का काम करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर ये
1: बिल्कुल
0: बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, एंकर का काम कर। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअलिज्म आपका एंकर बन जाए, तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती।
1: जी तो एग्जैक्टली
0: चलिए,
1: यही चीज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि भाई आपको टैरो रीडिंग के लिए तो आपको आ गए, आपको रास्ता भी मिल गया, लेकिन आपको एक विशफुल थिंकिंग के ओवर एंड बियॉन्ड आपको जो टूल्स चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी साधक होती है।
2: चलत

0: एसेंशियली टैरो और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
1: वो एक दूसरे के पूरक ही आप मान सकते हैं, क्योंकि
0: सप्लीमेंट्री।
1: हाँ सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जब तक जब अपने आप को ग्राउंडेड रखती हूँ तभी मैं दूसरों को मीनिंगफुल और एम्पावरिंग गाइडेंस दे पाती हूँ, राइट, बिकॉज
0: जी।
1: दिस इज ऑल डीलिंग विद एनर्जीज।
0: अब ये बताइए कि जो लोग टैरो आजमाना चाहते हैं लेकिन
1: जी
0: डरते हैं या
1: हाँ हाँ
0: संकोच करते हैं,
1: करेक्ट,
0: उन्हें
1: हाँ हाँ
0: आप
1: हाँ
0: क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए अब आज के तारीख में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ना, टैरो अब जो है वो अब एक तरीके से हमारे आम घर घर की कहानी तो कहानी का हिस्सा बन रही है, या एक तरीके से जनरल परसेप्शन का एक हिस्सा बन रही है, और इसमें ये बहुत जरूरी और सुंदर सवाल हो जाता है। लेकिन टैरो को लेकर कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि टैरो का जो परसेप्शन है, प्रोजेक्शन है, आम दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं इसको लेके। हाँ, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ईवल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई ये कोई इम्पोर्टेंट है समझना हमारा हम सब के लिए, ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन देने का टूल भी नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी धारणा हो गई है। हाँ, कि हमारा कोई फ्यूचर, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, और टैरो हमेशा फ्रीविल के साथ काम करता है, तो आपके आउटकम आपकी चॉइसेस पर आधारित होते हैं, और अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, समझ से काम लेते हैं, क्लैरिटी के साथ काम लेते हैं, तो यही फर्क बनता है आपके मेक और ब्रेक सिचुएशन में। तीसरे और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग ने पहले भी जिसका जिक्र किया कि एक आईने की तरीके से काम करता है, जो कि आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से जब आप टैरो के रीडिंग के लिए आते हैं तो एक आपको एक न्यूट्रल और थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें से आलोक जी बहुत आसान होता है हमें अपने लिए एक विक्टिम मान के चलना और एक ब्लेम गेम में इंडल्ज करना कि ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि वो दूसरे ने ऐसा किया। तो जब आप टैरो से आप सवाल पूछने आते हैं तो एक तरीके से थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें आपको समझ आता है कि आपके आपके जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो पाती है। इसलिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वाई एंड वेन, क्यों मेरे साथ हो रहा है और कब मेरा सिचुएशन ठीक होगी, अगर आप पूछें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परिस्थिति में अपने आप को उबारने के लिए, तो वो बेहतर एक आपको एक आयाम मिलता है, एक बेहतर आपको एक समझ और एक गाइडेंस मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सही गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रीडर का पढ़ने का स्टाइल समझें और एक
0: जी
1: सेफ रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में रीडिंग लें। आप समझ सकते हैं आलोक जी, आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतना सब कुछ, हर दूसरा आदमी सब कुछ है, एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज अ टैरो रीडर, एवरीवन इज एन एक्टर। हाँ, तो लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली टैरो के केस में, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, तो एक तरीके से रीडिंग ही नहीं, एक थेरेपी है, काउंसलिंग है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग टैरो से डरते हैं तो वो उसका उसका कारण ये हो सकता है कि उनके लिए कोई नेगेटिव स्टाइल ऑफ रीडिंग का सामना हुआ हो, जहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो क्लिकबेट या डराने वाली हो। तो मेरे सच्चा सुझाव यही रहेगा कि ऐसे रीडर से थोड़ा दूर रहें, और थोड़ा अपना अपना आप जो बोलते हैं ना, एक अपनी समझ लगाएं, एक सही बेहतर रीडर और रीडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई और चुनने के लिए, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी।
0: इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर खुद कोई एक कोई खास बिलीफ सिस्टम या फेथ होना चाहिए अगर आप टैरो की दुनिया को आजमाना चाहते हैं। अंदर से आपको स्ट्रोंग होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिलीफ सिस्टम या फेथ की तो उतनी जरूरत नहीं है जितनी क्लैरिटी की जरूरत है ना, तो बिलीफ वो ओवर एंड बियॉन्ड एनी फेथ और बिलीफ सिस्टम है। बस जो आप जो ये जो पूछ रहे हैं, इसमें कोई रिलीजियस फेथ या बिलीफ सिस्टम नहीं है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए बस इतना काफी है कि आपका ओपन हार्ट और माइंड होना चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं मोटे शब्दों में। और जैसा कि मैंने कहा कि वाई और वेन से आप के बजाय आपके जो अगर सवाल सवाल अगर हाउ और व्हाट पे होंगे तो वो आपको एम्पावरिंग इंसाइट दिलाते हैं। तो एक ओपन हार्ट एंड माइंड, और दूसरा सही सवाल, और तीसरा जो ये बात है कि जो जो रिसीवर है, जो क्वेरेंट है, जो उसका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, हाँ, अगर वो सही मायने में पॉजिटिव होता है ना, अफर्मिंग होता है, तो एक डीपली सेटिस्फाइड रीडिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। तो तो एक चीज का बस मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी के श्रोताओं को, कि जब आप रीडिंग सेशन के लिए, टैरो सेशन के लिए आइए, तो आप ये मत सुनने आइए कि एक इमोशनल वैलिडेशन नहीं, कि जो मैं सोच रहे हो वही होना चाहिए और कुछ और आप सुनने या समझने के लिए तैयारी ना होना, क्योंकि टैरो आपको हमेशा वही बताएगा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी हो आपके वो सुनने के लिए।

0: झुमके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झुमके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी।

0: तो चंद्रा जी, अब आने वाले समय में टेल टेल टैरो या आपके सफर में हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा?
1: आलोक जी, देखिए, मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं किसी रेस या नंबर चेस का कोई हिस्सा नहीं बनना है। जो मेरा कमिटमेंट है वो इससे कहीं गहरा है, और मैं टैरो को एक टूल और सेल्फ अवेयरनेस के टूल के रूप में आप सबके लिए, हम सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती हूँ। और मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं हर सीकर को हैंड होल्ड कर सकूँ। आज 10 से 12 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, और मेरा जो थोड़ा बहुत निचोड़ है मेरी जर्नी का, वो यही है कि आज भी 4, 5, 6 साल से लोग लगातार पलट पलट के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कि उनकी फाउंडेशन, टैरो को उनके लिए एक्सेसिबल किया है, जिसमें वो सेल्फ ग्रोथ का उसको एक जरिया बना सकते हैं। तो हर एक एक्सचेंज मेरे लिए भी उतना ही एक नया लेसन और एक सबक होता है, जिसमें एक मैं म्यूचुअल ग्रोथ का अनुभव करती हूँ। और जो भी मेरे पास टूल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इन पर्सन हो, वो मैं बिना किसी दौड़ भाग के, बस इस पर्पस के साथ मैं इसको, इस मुकाम को एक आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आपके अगर कोई भी लिसनर का मन हो, किसी भी श्रोता को मन हो, जिनके जिनके दिल में कोई भी सवाल गुलबुला रहा हो, तो दे आर मोर देन वेलकम टू फाइंड मी, और मैं अपनी जो भी लिमिटेड जर्नी के साथ उनसे शेयर करके, आई वुड लाइक टू वॉक द पाथ विद देम, इट वुड बी माई ऑनर।

0: चाहता है।
1: तो फिर चलते चलते ये भी बता दीजिए कि श्रोता आप तक अगर उनको टैरो रीडिंग के लिए या किसी और चीज के लिए आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह पहुंच सकते हैं।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे हाथ जोड़ के कि सबसे टैरो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जाके आप अपने लिए टैरो डेक खरीदे, क्योंकि मेरा कभी भी रीडिंग स्टाइल ये नहीं रहता, ये नहीं है कि आप मेरे पास ही आए टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ रूमी के शब्दों में, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो यदि आप सुन रहे हैं तो यूनिवर्स का एक ऑस्पिशियस साइन है कि आप भी अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर चंद्र आपके किसी भी तरीके से आपके उसमें शामिल हो सकती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेलर टेल टैरो और यूट्यूब पर टेलर टेल टैरो के नाम से पा सकते हैं। और मेरी सोल फैमिली जो हर सीमा और हर डेमोग्राफिक से परे है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और सच कहूँ तो आप सभी से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल बी ट्रूली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू।

0: अच्छा, इसका मतलब है कि हम भी एक टैरो का डेक खरीद सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: इज इट
1: खरीद
0: सो?
1: सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं आलोक जी, एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बी, वाई डोंट वी बिगिन विद यू, प्लीज गो अहेड एंड बाय आपके आपका
0: बिल्कुल।
1: जो लार्ज साइज पिज्जा आता है वीकेंड पे, उससे सस्ता इन्वेस्टमेंट है और बहुत
0: तो
1: बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जी
0: पर
1: आलोक जी।
0: हमें इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे उसको, अगर मान लो मैं खरीद लिया किसी ने तो कैसे
1: आलोक जी
0: हुआ?
1: टैरो एक तरीके से आपका हम सफर है, हाँ, जिसको आप अपने आप वो एक वो आप खुद ब खुद, जैसे मैंने बोला ना, मैंने टैरो को पाया और टैरो ने मुझको पाया, तो एक बार ठीक है, हाँ, उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कुछ एडुकेशन और उसके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं, और उसके लिए मैं हूं ना
0: ओके ओके,
1: तो वो
0: चलिए
1: गाइडेंस
0: चलिए,
1: मैं दिखाऊंगी।
0: ये हमारा टेक अवे हो गया आज
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी,
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया चंद्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे श्रोताओं से सारी बातें शेयर की, और मैं मानता हूँ कि आपकी आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत ही उपयोगी रही। श्रोताओं को अपने टैरो को सिर्फ मिस्टिकल या एंटरटेनमेंट टूल नहीं, बल्कि एक मिरर, गाइड और एक सशक्त करने के माध्यम के रूप में दिखाया है आपने, तो बहुत ही आपका शुक्रिया, थैंक यू।
1: धन्यवाद, मुझे भी बातचीत बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से आभारी हूँ आपसे इस खूबसूरत अवसर के लिए और अपनी जर्नी आप सबसे साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड लाइक यू ऑल योर लिसनर्स।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है,
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई घर आ होगा सो जाएगी ना।
2: हाँ।
3: चल।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है, जब हम कहते हैं चिड़िया

कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़के भी बदलता?
1: ऐसा न कहो

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर हैं उनका नाम है संदीप बहल। बाकी की बातचीत हम संदीप जी से ही करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनकी गजलें सुनेंगे। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। संदीप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें जिससे श्रोता आपको जान सकें।
1: मेरा नाम संदीप बहल है, मैं कानपुर से हूं और संदीप के उपनाम से गजलें लिखता हूं। अभी हाल ही में मेरी किताब सिर्फ मोहब्बत प्रकाशित हुई है और इसी बस इतना ही मेरा परिचय है। और क्योंकि टाइम की कमी के लिए हिसाब से बोला तो बहुत कुछ जा सकता, लेकिन संक्षेप में यही है। बाकी एलआईसी में मैं जॉब करता हूं और कानपुर को बिलोंग करता हूं।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल पढ़ें।
1: पहले तो गजल के मैं कुछ चार पांच मिसरे ही पढ़ूंगा बस, अरे जो भी होगी पहले ही है मेरी जो पसंदीदा।
0: इरशाद।
1: लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है मेरी जिंदगी, उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है मेरी जिंदगी, लाख करूं कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती।
0: क्या बात।
1: लाख करूं कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। इतनी मासूमियत भरा वो इनकार करना उनका, इतनी मासूमियत भरा वो इनकार करना उनका,

0: नसीब ऐसी नजाकत नहीं होती, हर एक को नसीब ऐसी नजाकत नहीं होती, और मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। उसकी हकीकत से यहां सारा जहां वाकिफ है, उसकी हकीकत से यहां सारा जहां वाकिफ है, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, और मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती।
1: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब,
0: धन्यवाद।
1: अपने दिल के जज्बात आपने लफ्जों में पिरोकर जो पेश किया है वो काबिले तारीफ है भाई, बहुत बहुत खूब,
0: धन्यवाद।
1: तो संदीप भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: मेरे एक, वैसे तो बहुत सारे गजल गायक मेरे हैं जिनको मैं पसंद करता हूं, बट एक जो दो भाई हैं जो मिलके गाते हैं, अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन
1: जी,
0: उनकी एक गजल है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है हिचकियां समझती हैं। बेहद उम्दा गजल है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है हिचकियां समझती हैं।
1: तो यही गजल हम अपने दोस्तों को सुनवाएं?
0: जी बिल्कुल, अगर मेरी पसंद से आप सुनवाएं तो ये मुझे बहुत पसंद है।
1: आइए दोस्तों सुनते हैं यही प्यारी सी गजल संदीप जी की फरमाइश पर।

0: संदीप भाई, आपसे छोटा सा ही सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी सबसे फेवरेट गजल कौन सी है और क्यों, या कोई पसंदीदा गजल हो जो आपको पसंद आती हो?
1: मुझे जगजीत सिंह की एक गाई हुई गजल अक्सर गुनगुनाने का मन करता है और मुझे बेहद पसंद है। हालांकि गुलाम अली ने भी गाई है और लोगों ने भी गाई है, बट जगजीत की आवाज में ज्यादा सुना मैंने।
0: जी
1: कल 14वीं की रात थी, बर रहा तर चर्चा तेरा। हाँ,
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी सी गजल।
1: मुझे बेहद पसंद है ये, और मुझे जब मौका लगता है मुझे सुन के बड़ी ताजगी महसूस होती है।
0: क्या बात है। तो संदीप भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल या नज्म या अपना कलाम हमें और हमारे सुनने वालों को सुनाएं।
1: मेरी अगली जो गजल मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, उसमें मैंने इन बातों को लिखने की कोशिश की है कि जो अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाते हैं, कहीं पिता का, कहीं पुत्र का, कहीं एम्प्लॉय का, कहीं एम्प्लॉयर का, कहीं रिलेशन में, तमाम तरीके के रोल्स दिन भर प्ले करते हैं। तो उसी में इतना आदमी खो जाता है कि अपने खुद के लिए समय नहीं।
0: जी
1: जब कभी मौका लगता है लिखने का, तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी जिंदगी भर रही, तो उसी पे मैंने लिखा था। मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो,
0: क्या बात है।
1: किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो, वक्त को वक्त देने का सलीका भी सीखो,
0: वाह,
1: वक्त वक्त को वक्त देने का सलीका भी सीखो, कुछ तो मेरे यार खुदा के भरोसे भी रहने दो,
0: बहुत
1: कुछ
0: खूब।
1: तो मेरे यार खुदा के भरोसे भी रहने दो। बदलते हालात बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, बदलते हालात बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, रोको मत तुम इन्हें अपना काम करने दो, रोको मत तुम इन्हें अपना काम करने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो, किस्मत के किस्से सुनाकर कुछ ना सोचो।
0: जी
1: ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, अक्सर लोग करते हैं, मैंने भी किया अपनी जिंदगी में,
0: जी
1: बट अंत में जो पाया वो मैं लिख रहा हूं कि किस्मत के किस्से सुनाकर कुछ ना सोचो, तकदीर की स्याही को तुम बस गहरा रहने दो,
0: क्या बात है।
1: तकदीर की स्याही को तुम बस गहरा रहने दो, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने

0: बहुत खूब बहुत खूब
1: धन्यवाद।
0: बहुत खूब।
1: मैं जुड़ पा रहा हूँ, आपको पसंद आ रही है मेरी खुशकिस्मती।
0: अरे साहब नहीं बिल्कुल, अल्फाजों में सच्चाई झलक रही है, अल्फाजों में दिल का दर्द झलक रहा है, दिल की खुशी झलक रही है, दिल के जज्बात झलक रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि अगर आपके अल्फाज या आपके संदेश हमारे दिल तक पहुंचे तो आह या वाह तो निकलेगी
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात कही। क्या यह बात निकलेगी,
0: निकलेगी ही साहब, तो वो आपने आ सुनी की वाह ये आपके ऊपर है। तो संदीप भाई, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: लोगों की पसंदीदा गजल रही है। मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं मेरी जनरेशन को, जब मैं यंग था तब लोगों को पसंद थी, आज मेरा बेटा भी इस गजल को सुनता है
0: क्या
1: और
0: बात
1: लोग
0: है,
1: भी सुनते हैं। तो ये अल्फाजों में ही आदमी अमर हो सकता है,
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: किस तरीके से अमर हुआ है गाने वाले ने, फरीदा खानम जी की गजल है कि आज जाने की जिद
0: जिद
1: ना
0: ना
1: करो।
0: करो, क्या बात है, बेहतरीन
1: तो
0: बेहतरीन।
1: बेहद पसंद है और बहुत वर्जन इसके गाए गए, लेकिन फरीदा खानम जैसा मुझे कोई नहीं लगा, सॉरी टू से, बट उनका अंदाज बयान कुछ अलग था, जो दिल को उन्होंने छुआ है और जो इसके लिरिक्स में कमाल है वो अंदर तक छूता है।
0: बेहतरीन, बहुत खूब बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, फरीदा खानम की आवाज में संदीप बहल साहब की फरमाइश, ये गजल सुनते हैं।
2: आज जाने

0: संदीप भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि यूं तो पूरी जिंदगी आपके सामने है जो आपने जी है, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो आपकी पूरी जिंदगी में जिस जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा हो कि वैसा इंटरेस्टिंग पर्सन फिर कभी नहीं मिला?
1: बड़ा मुश्किल है इतनी लंबी लिस्ट में से किसी एक का नाम लेना।
0: जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी गाये बगाये अचानक से दिमाग में कौंध जाता है कि यार उस शख्स से मुलाकात हुई थी और वैसा तो फिर कभी महसूस नहीं हुआ।
1: मेरे जो मुझ में कमी है वो जब मुझे किसी दूसरे के अंदर खासियत दिखती है कि इसने इस सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल किया और ये कितना खुश है, तो मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मेरे एक कलीग थे, रिटायर हो चुके हैं, वो मेरे ऑफिसर थे, मेरे बॉस थे, बट उनसे मैंने लाइफ के बारे में बहुत सीखा। जिंदगी में मुस्कुराना कैसे है, जिंदगी को कैसे लाइटली लेना है, जिंदगी को जीना कैसे है, हर परिस्थिति में कोई ये मान के कि ये उसकी रजा है उसी में राजी रहना, ये जो कला है ना ये मुझे सीखने में बहुत देर लगी, अभी भी शायद पूरी तरह नहीं सीख पाया हूं। बट वो व्यक्ति जो है थे मेरी जिंदगी में वो परिपक्व थे बिल्कुल
0: जी।
1: वो कहते थे, वो लेट गो वाली जो उनकी एक स्टाइल थी ना, कि वो कहते थे कि अगर परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं है तो शांत हो जाओ, और शांत होना ही बहुत मुश्किल होता उस वक्त उस कठिन दौर में खुद को कंट्रोल कर पाना। बट मैंने प्रयास किया जब भी जिंदगी में उनको याद करके और उस वक्त को निकालने की कोशिश की, तो जब वो वक्त बीत गया और मैं सफल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब भी वो खुशी महसूस हुई तो उनकी याद जरूर आती।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मैं हमेशा उनका ऋणी हूं कि उन्होंने गाए बगाए मुझे बहुत सी बातें बताई, उनका ये एक पहलू मैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुद इतने गम थे कि कोई व्यक्ति उनसे 1% भी उनके बारे में जान नहीं सकता,
0: ओहो,
1: कोई भाप ना सका घाव कैसा था, मेरा रख रखाव ही ऐसा था।
0: वाह क्या बात है।
1: क्या बात ये है? जो बात है ना उनपे बिल्कुल फिट बैठती है।
0: बहुत खूब।
1: और घावों का ऐसा रख रखाव रखने की कोशिश मेरी जारी है, मैं भी करता हूँ, बट अभी उतना सफल नहीं हो पाया
0: जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाए हमें।
1: मैं इसी से जो बात अभी आपने छेड़ी उससे जुड़ी हुई गजल ही मेरे जहन में आ गई है
0: जी,
1: और वो मैं आपको सुनाता हूं। अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है
0: जी,
1: अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों है?
0: ओहो,
1: क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों? अभी भी तेरी पहुंच से बाहर गया नहीं हूं मैं
0: जी,
1: अभी भी तेरी पहुंच से बाहर गया नहीं हूं मैं, पाने की कोशिश तो कर इतना डरता क्यों है?
0: क्या बात है,
1: पाने की कोशिश तो कर इतना डरता क्यों है? वही बात अलग अलग तरीकों से कही हमने, वही बात अलग अलग तरीकों से कही हमने, लेकिन अब तक मुझे वो कायर समझता क्यों है?
0: क्या बात है,
1: अब तक मुझे वो कायर समझता क्यों है? दूरी इतनी भी नहीं कि नजदीक ना आ सको, दूरी इतनी भी नहीं कि नजदीक ना आ सको, लोगों का तंज तुझे इस कदर अखरता क्यों है?
0: क्या बात है,
1: लोगों का तंज तुझे इस कदर अखरता क्यों है? अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों?
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: इसका आखिरी मिसरा मेरे दिल से निकला हुआ है कि खुद खड़े होना भी जिनके लिए मुश्किल हो
0: जी।
1: समीर जी मैं चाहूंगा इसको आप दिल से सुने और ये दिल तक पहुंचेगा, मेरा वादा है
0: जी। इरशाद,
1: खुद खड़े होना भी जिनके लिए मुश्किल हो, उनसे मत पूछना कि कोई और चलता क्यों।
0: अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है।
1: तुमसे मत पूछना कि कोई और चलता है,
0: ओहो।
1: अपने हाथों को फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जोरदार, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, वाह। सुन के लुत्फ आ गया साहब, सुन के लुत्फ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं हमें, जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: और फिर वही हम सबके फेवरेट मेहंदी हसन साहब
0: जी,
1: और वो फेमस गजल रंजिश ही सही दिली दुखाने के लिए।
0: वाह जी वाह,
1: क्या बात है। है तो जमाने के लिए, बेहतरीन गजल, बेहतरीन, बेहद उम्दा गजल, बेहद उम्दा अशार इसके, और उतनी ही बखूबी इसको निभाया उन्होंने अपनी आवाज,
0: बेहतरीन
1: दुखाने के लिए।
0: आए दोस्तों, सुनते हैं मेहंदी हसन साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल संदीप जी की फरमाइश पर।

0: तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी गजलों में, आपके लफ्जों में काफी दर्द सुनाई देता है, ऐसा कुछ अगर आप इजाजत दे तो पूछूं कि क्या कुछ ऐसा गुजर गया जिंदगी में जिसने आपको मजबूर किया और आपके लफ्जों में इतना दर्द उभर आया जो आपने लिखा?
1: निश्चित रूप से भाई, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ऐसा हुआ ही होता है, क्योंकि कलम कोई यूं ही नहीं उठाता
0: जी।
1: बस ये होता है कि लिखने वाला जरूरी नहीं कि उन हालातों से गुजरा हो। तो मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी भी है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी हर रचना आपकी आप बीती हो
0: जी,
1: बल्कि ये वो शक्ति हो सकती है जो एहसासों को सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि जीती है।
0: क्या बात है। ओके।
1: और ईश्वर की कृपा से शब्दों को मोती की तरह जज्बात के धागों में पिरोकर गजल या कविता रूपी माला का रूप देती है।
0: क्या बात है। ओहो।
1: वीर रस का हर कवि सेना में नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा।
1: इसी तरह हास्य रस का हर कवि आवश्यक रूप से निजी जिंदगी में सुखी या संतुष्ट नहीं होता।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: ठीक इसी तरह से श्रृंगार रस का हर कवि प्रेम में दुखी नहीं होता, बल्कि शायद उसकी महसूस करने की शक्ति दूसरों से ज्यादा होती।
0: कुछ ज्यादा ही होती। सही कहा आपने, कुछ ज्यादा ही होती है। वो उन लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाता है, उनके दुख को या उनके गम को या उनके जज्बातों को समझ पाता है, इस वजह से वो ये सब कुछ लिख पाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा।
1: बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया। एग्जैक्टली एम्पैथी ही होती है ये, जो आपको जोड़ती है लोगों से।
0: जी,
1: जिससे आप उसको महसूस कर पाते हो, उस जगह खुद को पा पाते हो, और फिर जो एहसास उभरते हैं उनको आप अशारों का रूप देते हो।
0: जी सही कहा आपने, सही कहा। बहुत खूब। तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक गजल और सुनाए हमें।
1: मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर अपने सुनाना चाहूंगा।
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर।
1: कुछ अच्छे शेर हैं, चंद शेर हैं, मतलब हैं तो बहुत, बस कुछ दिल के करीब होते हैं, जो चाहता है इंसान के वो लोगों के साथ। लिखने वाला चाहता है कि भाई, जो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, तो माँ बाप हमेशा कुछ दूसरों के सामने खड़ा करते हैं ताकि उसकी तारीफ हो।
0: जी जी जी।
1: पसंदीदा शेर है मेरे।
0: जी इरशाद।
1: तेरी यादों की दराजों में जाले नहीं लगते, तेरी यादों की दराजों में जाले नहीं लगते, तेरे खतों के हर्फ मुझे काले नहीं लगते।
0: ओहो।
1: तेरे खतों के हर्फ मुझे काले नहीं लगते। और आप देखिए, एक लिखने वाला इंसान बीसियों साल लिखता रहता है। लोग पूछते हैं कि कब खत्म होगा ये सिलसिला, कब तक चलेगा, कितनी बार और क्या क्या चीजें, कितनी कठिनाइयां आती हैं, ये आसान नहीं है उसको मीटर में रखना। तो मैंने उस दिक्कत पे भी एक चीज लिखी थी, उसका पहला मिसरा कुछ इस तरह है कि कभी काफिया पकड़ता हूं तो रदीफ रूट जाता है।
0: ओहो, क्या बात है।
1: कभी काफिया पकड़ता हूं तो रदीफ रूट जाता है, तुझ पर जितना लिखूं कुछ ना कुछ छूट जाता,
0: कुछ ना कुछ छूट जाता। क्या बात है।
1: जितना लिखो कुछ ना कुछ छूट जाता है।
0: तो
1: ये रहता, फिर वो जो छूट जाता है वो नए सिलसिले, नई गजल, नए शेरों के रूप में आप सबके सामने आता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खूब।
1: और कोई किस कदर किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है या उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है कि आप उसके मोजाल, माया जाल, आप कुछ भी कह सकते हो, कि उससे बाहर नहीं आता।
0: जी।
1: और उसका सही होना और गलत होना इन नतीजों से ऊपर होता है वो इंसान। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, मुझे बेहद पसंद है, कि मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है।
0: जी।
1: मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है, ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: ओहो, अच्छा जी।
1: ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: तू कई दफा।
1: मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है, ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: वाह। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत बहुत खूब, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। अगेन ये छोटे छोटे शेर बड़े बड़े धमाके करने वाली चीजें लग रहे हैं साहब लेकिन हाँ, इनकी अपनी जगह होती है।
1: कर रहा हूं, आपके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनने वालों को के दिलों के तार को छू सकूं, कुछ ऐसा कह पाऊं कि जो उन्हें याद रहे या उन्हें दोबारा सुनने के लिए प्रेरित करे, बस यही कोशिश है।
0: बेहतरीन बेहतरीन ये जरूर होगा, क्योंकि सुनने वालों को भी, सुनने वालों में बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते ही हैं जो दिलों को छू देने वाले अशआर और दिलों को छू देने वाले शेर भी बहुत शिद्दत से महसूस कर लेते हैं। तो ऐसा होगा और जरूर होगा। तो चलते चलते संदीप भाई, एक अपने गजल गायक की कोई पसंदीदा गजल सुनवाते चलिए।
1: एक नज्म है जगजीत सिंह ने गाई थी
0: जी,
1: तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे,
0: ओहो जी हाँ,
1: प्यार में डूबे तेरे खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा के आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा के आया हूँ।
0: बहुत
1: तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे, ये सबको पसंद आएगी, आप सुनाएं, ये मेरी पसंदीदा गजल है।
0: बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आइए दोस्तों, सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: संदीप भाई, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी गजलें हमने सुनी, आपके शेर हमने सुने जो हमारे दिलों तक पहुंचे, और मुझे पूरा यकीन है हमारे सुनने वालों के भी दिलों तक पहुंचे होंगे। आपका बहुत बहुत आभार।
1: मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने दिग्गज लोगों की गजलें सुनाने के साथ हिमाकत कर सकूं कि अपना लिखा हुआ भी कुछ बोल सकूं, ये मौका देने के लिए और मुझे इस मौके के लायक समझने के लिए आपका हमेशा ताउम्र में शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, ये लम्हे और ये इंटरव्यू मैं कभी भूलूंगा नहीं। जैसे इन लम्हों को सहेज के रखूंगा, जिंदगी में आगे ये बहुत काम आएंगे
0: जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई,
1: फिर मिलेंगे हम लोग।
0: जी जरूर जरूर जरूर, शुक्रिया। चाहतों का दौर कुछ ऐसा चला कि तेरी आवाज हर जगह सुनाई दी। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं अबीदा परवीन जी की आवाज में, हर तरन्नुम में तेरी।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपनी खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत ऊबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो। और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी। I'm gonna go get some more.

Okay.

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आइए सुनते हैं एक और सुंदर गाना अपनी ही संस्कृति का, जो कि हम फेरे लेते समय उस गाने को अधिकतर गाया करते हैं। आइए सुनते हैं गाना।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कवच नासी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी व कवक नासी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव

0: हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं, उनकी सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नज़दीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है, वहाँ पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम एक सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रवि की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को, बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
1: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सके। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्थी।
2: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी। अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो शिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है। तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 5 क्विंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 क्विंटल, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 क्विंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है। और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है। तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का, वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं, तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
1: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
3: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
0: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशु पालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण

0: अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी फल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपना रेडियो आपनी बात है।
2: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली जिससे उन्हें अपने

0: व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
1: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए, घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर, वही मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज हैं, मिलेट कुकीज हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए। तो
0: वही PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
2: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे पाबी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रखरखाव के लिए।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आइए सुनते हैं अपनी ही संस्कृति का एक और सुंदर गाना।

0: था।
1: दोस्तों हम सुन रहे हैं खेती किसानी कार्यक्रम और इस प्रोग्राम में हमने इस कार्यक्रम के द्वारा हमने काफी जानकारियां एकत्रित की है, वो चाहे हमारे बीजों को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो और अन्य कई प्रकार की चीजों में हमने किस तरीके से खेती को किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है, उसका समय समय पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखना है, इन सब चीजों को लेकर अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक और हमारी संस्कृति का एक और सुंदर सा गाना।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટાવિલ 90.8 FM।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: भावना। स्वागत

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટ્યાવેલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम. आपनो रेडियो आपड़ी बातें.
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं. और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी. और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है. आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे. साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे. और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे. और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है. उनसे भी हम बातचीत करेंगे. और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं. खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं. तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में.
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम. आपनो रेडियो आपड़ी बातें.
3: आज के युवा स्टार्टअप्स

0: जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
1: भारत बदल रहा है। देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार हैं, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
2: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं, लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए, जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
3: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली, बिना कट करे, बिना जूस करे, हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है, जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
1: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
4: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा, एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा, एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट। एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
1: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
5: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
1: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
6: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
7: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला

0: समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
1: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
0: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो है वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
2: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
3: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

0: जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
1: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
1: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
2: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे का एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
1: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
2: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20-22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12-15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
3: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरे हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है, फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा। और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा। और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
4: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
6: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
1: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
6: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
1: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
1: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है। हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
1: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

आज के कलाकार का, ये लीजिए एक और बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील पर। और आज जो प्रतिभा, जो गायिका, जो टैलेंट हमारे साथ हैं, वो हैं श्वेता जी। तो हम लोग श्वेता जी से ही बात करेंगे। उनका थंडर उनसे स्टील करना, उनसे चुराना बिल्कुल उचित नहीं होगा। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।

0: बहुत बहुत आभार कि आप आई। तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए और आज के कलाकार के जो मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आज आपको स्वीकारेंगे, आपकी बातचीत सुनेंगे, आपके गीत सुनेंगे और झूमेंगे, तो उनसे बातचीत कीजिए और उन्हें बताइए आप भला कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप।
1: जी, मैं अभी बैंगलोर में लोकेटेड हूँ और फिलहाल मैं जॉब करती हूँ। मैं कैम ग्लोबल AI मीडिया नाम की कंपनी में हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हूँ। यहाँ हम एडो AI ट्यूटर्स ब्रांड के तहत नीट और JEE कोचिंग्स पर काम कर रहे हैं और हमारा काम बेसिकली AI ड्राइवन लर्निंग कंटेंट और कोचिंग सॉल्यूशंस रेडी करने का है ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम प्रिपरेशन को बेटर वे में कर सकें।
0: बहुत बढ़िया। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग श्वेता जी, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग कंटेंट रेडी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, दोनों में से क्या चीज चल रही है या दोनों चल रही है?
1: दोनों कंटेंट भी रेडी कर रहे हैं हम लोग, CBSE का कंटेंट भी रेडी कर रहे हैं और उसके अलावा हम लोग नीट एंड JEE कोचिंग्स पर भी आज का काम कर रहे हैं। हमारा कोचिंग के एड्स वगैरह आ रहे हैं तो काफी एडमिशंस भी हो रहे हैं।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। खैर श्वेता जी, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है जिसके बारे में हम दूसरे प्रोग्राम में आपसे बात करना चाहेंगे। ये प्रोग्राम तो म्यूजिक का है, संगीत, गीत, तो हम लोग यहाँ पर संगीत और गीत की ही करेंगे, लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही दिलचस्प है, उसके बारे में मैं जरूर आपसे इधर ऑफलाइन या फिर हम लोग ऑनलाइन भी बात करेंगे तो मजा आएगा। चलिए दोस्तों, आपने सुना श्वेता जी कहाँ हैं, क्या करती हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जॉब, बच्चों के भविष्य को सुधारना, उनको बनाना, उनको गाइड करना, ये छोटा मोटा काम नहीं होता दोस्तों। तो चलिए उस काम के गंभीरता को थोड़ा सा एक बार विराम देते हुए थोड़ा म्यूजिक का, संगीत का आनंद उठाते हैं। श्वेता जी की ही आवाज में पेश करता हूं ये पहला गीत।

0: बहुत बढ़िया श्वेता जी, शानदार शुरुआत और प्यारी सी गायकी। श्वेता जी, अब मुझे ये बताओ कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, है ना, तब आप क्या बनना चाहते थे जिंदगी में बड़े होके? आपके क्या सपने थे? किसी को देखा होगा आपने, पापा को शायद, या किसी और को रोल मॉडल होगा कोई? क्या बनना चाहते थे आप?
1: जब छोटे थे तो बेसिकली म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। सिंगर्स में लता जी के जैसे गाना चाहती थी, उनके गीतों को नोट करती थी, कॉपी में नोटबुक बना के रखी थी और पूरा टाइम रेडियो पर उनके गाने को सुनती थी और प्रैक्टिस करती थी। सोचती थी कि काश कुछ ऐसा हो जाता जो मैं भी म्यूजिक के क्षेत्र में कर पाती। तो बेसिकली म्यूजिक में ही जाना चाहती थी, बट उस टाइम घर में मतलब बेसिकली एजुकेशन का एनवायरमेंट ज्यादा था, तो हम लोग एजुकेशन में ही आगे ज्यादा रहे
0: रादर देन म्यूजिक। बहुत बढ़िया। वैसे श्वेता जी, आप कहाँ को बिलोंग करते हो एग्जैक्टली? आपके मतलब पुरखे हुए, पिताजी हुए, या वो कहाँ के थे? बेंगलोर के ही?
1: नहीं नहीं, मेरे पिताजी कानपुर एंड मेरी मदर लखनऊ की थी, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। मैंने बचपन अपना दिल्ली में ही गुजारा है।
0: वाओ, ये तो देखे क्या होता है ना कि ये ऊपर से इशारा सा हुआ मुझे, पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि मैं आपसे पूछ लूं, तो मैंने पूछा। और अब आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि मैं खालिस कनपुरिया हूं। मैं कानपुर में ही पैदा हुआ, मेरे मम्मी पापा अभी भी वहीं रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने जाना कि जब श्वेता जी छोटे बच्चे थे तो वो क्या सोचते थे, संगीत की तरफ उनका प्यार हमेशा से था। आइए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुने, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं श्वेता जी से। लीजिए, पेश खिदमत है।

0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आपने कहा कि बचपन से ही आपको संगीत का शौक था, बचपन से ही आप संगीतज्ञ बनना चाहते थे या गायक गायक बनना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कैसा मतलब पढ़ाई का माहौल था, वो होना भी चाहिए। मेरा पर्सनली मानना यह है, किसी भी तरीके का माहौल आपकी प्रतिभा को दबा नहीं सकता। नथिंग कैन एक्चुअली हाइड योर टैलेंट, यू विल सर्टेनली सर्टेनली विल कम अप। तो छोटे से लेकर बड़े तक आते आते आते आते जब तक जब आपने अपनी गायकी शुरू कर दी, प्रॉपरली गाना गाना शुरू कर दिया, मे बी इन कॉलेज और मे बी जब आपको स्टार मेकर मिला होगा या जब भी, तो जब आपने गाना शुरू किया, मैं आपको थोड़ा सा इंस्टिगेट करूंगा, थोड़ा सा आपको पुश करूंगा ये सोचने के लिए कि कब आपने गाना शुरू किया था। तो बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है आपको किसने मोटिवेट किया कि बेटा तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम गाते हो, अच्छा गाते हो, या किसी फ्रेंड ने कहा हो कि श्वेता यू आर अ गुड सिंगर, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो कौन था वो जिसने आपको मोटिवेट किया?
1: फ्रेंड्स का तो नाम मैं बाद में लूंगी और पेरेंट्स का भी नाम मैं बाद में लूंगी, लेकिन सबसे पहले जिसने मुझे संगीत के लिए प्रेरित किया वो थे मेरे टीचर्स। स्कूल में मैं गाती थी एंड मेरे टीचर्स मुझे बहुत एडमायर करते थे और वो मुझे बहुत कहते भी थे कि श्वेता तुम अपना भेजो वॉइस सैंपल कहीं पर, यू विल डेफिनेटली बी कंसीडर्ड। लेकिन बस मैंने जैसा आपको बताया उस समय ऐसा नहीं हो सका। तो उसके अलावा मेरे फादर भी अच्छा गाते थे और मेरी मदर भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी, हारमोनियम बजा लेती थी। लेकिन तो फिर पिताजी और उसके अलावा फिर मेरे फ्रेंड्स थे। हाँ, बाद में लेटर ऑन लाइफ में जब मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई तो मेरे जितने भी कोलीग्स थे और जो मेरे मैनेजर्स या मेरे हेड्स थे वो सभी मुझे बहुत सिंगिंग को लेकर एडमायर किया करते थे। तो मोटिवेशन तो सभी से मिला। उसके बाद SM पे गए, स्टार मेकर पे भी गए तो बहुत लोगों ने मुझे एडमायर किया। तो हाँ, मुझे मोटिवेशन तो जरूर मिला।
0: ओके,
1: इन सभी से।
0: तो लेकिन प्लीज मेरे को बताइए ना, किसी एक व्यक्ति का नाम तो लीजिए। आपने कहा सबसे पहले आपके टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया, तो जस्ट गिव मी अ नेम।
1: मैं अपने टीचर्स में जिनका नाम लूंगी, एक नरूला सर थे, हमारे फुल नेम तो इतना ध्यान नहीं था, नरूला सर हुआ करते थे, वो मेरी बहुत तारीफ करते थे।
0: ऑलराइट, तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे ही लेते हैं। नरूला सर ने दरअसल श्वेता को मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया कि बेटा गाओ गाओ गाओ। तो चलो वहां से इनकी एक सेकंड के लिए कह लें गायकी की शुरुआत हुई। कंट्रीब्यूट तो हर व्यक्ति ने किया, लेकिन अगला गीत हम श्वेता जी का निरोला साहब को डेडिकेट करते हुए पेश करना चाहते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टार में करा गया, मजा आ गया। मैं डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के डेवलपमेंट को पर्सनली यूं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, दरअसल मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूं ना, लेकिन स्टार मेकर जिसने भी बनाया या एसम्यूल जिसने भी बनाया, मैं उनको जरूर जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से इतने सारे हिंदुस्तान के टैलेंट्स हमारे सामने आ गए, वरना तो कुछ थे दो तीन वही गा रहे थे, तो अभी आज हम आपकी गायकी सुन पा रहे हैं उनकी वजह से। बहुत खूब। तो स्टार मेकर पर आपने गाना शुरू किया
1: जी,
0: स्टार मेकर पर गाना खाने के बाद, मतलब जैसे आपने गाना शुरू किया तो आपको कई खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर हुए होंगे, कभी सुर नहीं बैठा होगा, कभी ताल नहीं बैठी होगी, कभी म्यूजिक आगे, कभी आप आगे, ये सब चलता रहा होगा। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी और स्टार मेकर की दोस्ती हो गई होगी और फिर दोनों साथ में चल पड़े हवा के साथ साथ, ऐसे ही कुछ। लेकिन आप जब स्टार मेकर पर गाते हो तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस हो गई है आपको, फिर भी आप क्या कोई रूटीन में एवरी सिंगल डे कोई प्रैक्टिस करते हो, जैसे सिंगर्स रियाज करते हैं ना, सो डू यू डू समथिंग एंड इफ इट ऑल क्या?
1: टाइम तो कम मिलता है लेकिन मैं थोड़ा रियाज जरूर करती हूँ, नॉर्मली खर्च का रियाज एंड कुछ अलंकार या सरगम का रियाज मैं जरूर करती हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे हिंदी सॉन्ग्स जो कॉम्प्लेक्स हिंदी सॉन्ग्स हैं उनका उन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ, तो यही मेरे बेसिकली डेली रूटीन।
0: वाह दोस्तों, आपने सुना कि श्वेता जी ना कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही हैं, इसका मतलब है कि उनको संगीत के क्लासिकल साइड की जानकारी भी है। अब या तो उन्होंने सीखा है या किसी ने उनको सिखाया है, क्या हुआ था श्वेता जी, आपने सीखा या किसी ने सिखाया?
1: हाँ सीखना तो शुरू किया, बहुत देर में शुरू किया, पहले तो वैसे ही गाती रही कई साल तक, उसके बाद जी हाँ मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि एक जगह जाके सीख लूं, तो मैं सीखना थोड़ा शुरू किया। लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि जब मेरा मैरिज हो गया उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू लर्न प्रॉपरली व्हेन यू आर सिंगिंग सो नाइसली, तो फिर मैंने सीखने जाना शुरू किया एंड फिर मैंने डिग्री भी की अपना म्यूजिक में से।
0: अब ये बात हुई ना, देखिए ये चीज तो आपने नहीं बताई थी, ये चीज निकल के आ रही है कि श्वेता जी को, श्वेता जी ने रादर ऑफिशियल प्रॉपर म्यूजिक की शिक्षा ली हुई है, तो जाहिर सी बात है उनकी गायकी और बेहतर हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल समझ में आए तो उसके हिसाब से हम क्या नहीं करना है उसको रोक लेते हैं और क्या करना है वो करते हैं, उसी वजह से गायकी इतनी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए ना इसी खूबसूरत सी गायकी का आनंद उठाते हुए दोस्तों पेश करता हूं दूसरा तीसरा एक और गीत श्वेता जी का ही गाया हुआ।

0: ठीक है श्वेता जी, जाहिर सी बात है, ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स यू हैड बीन सिंगिंग, देन यू लर्नड, आपके फादर ने भी, आपके फादर इन लॉ ने भी आपको सपोर्ट किया एंड यू लर्नड, फिर कभी स्टेज पर जाने का मौका मिला? और अगर आप गए तो आपकी क्या फीलिंग थी सबसे पहली बार जब आप स्टेज पर गए?
1: देखिए, स्टेज पर जाने का मौका तो बचपन से बहुत बार मिला, ना केवल सिंगिंग और अदर ड्रामा और अदर कॉम्पिटिशन या अदर इवेंट्स भी होते थे स्कूल लेवल पर एंड कॉलेज लेवल पर भी। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत परेशान करती थी वो था स्टेज फियर, और स्टेज फियर मुझे बहुत समय तक रहा। इवन स्टार मेकर पे तो हम किसी को देख भी नहीं सकते, तब भी मुझे फेयर होता था गाने के लिए। जी हाँ, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को उस तरीके से समझाया कि अगर मैं कुछ गाऊं तो जो भी मेरा गाना सुने उसको दिल में एक शांति का अनुभव होना चाहिए, उसका दिल प्रफुल्लित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो और वो तभी हो सकता है जब हम स्टेज फियर रिमूव कर दें, अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गाएं, स्ट्रेस फ्री होकर गाएं। तो ये सोच अपने दिमाग में रखते रखते धीरे धीरे अब मैं स्टेज फियर से बाहर आ रही हूँ। हाँ, पर स्टेज फियर होता तो है, बट एक बार गाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, स्टेज फ्रेट, उससे डिटैच होना, उससे आजाद हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले किसी टैलेंट से बात हो रही थी, तो और उनसे ही नहीं, उनसे पहले कई सारे टैलेंट्स ने ये बात खुल के कही कि अरे यार डरो मत, ये मत सोचो कि कोई जज करेगा आपको कि अरे क्या गा रहा है, मस्त होके गाओ, जो दे होगा देखा जाएगा। अरे भाई, आप अपने लिए गा रहे हो ना, किसी दूसरे को सुनाने के लिए थोड़ी गा रहे हो, यू आर एंजॉयिंग योर ओन म्यूजिक। बहुत बढ़िया। और वैसे भी स्टार मेकर पे जब तक आप वीडियो ऑन ना करें कौन देख रहा है आपको, है ना? अरे मस्त होके गाइए, सेकंड गाना अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं बड़ा प्रभावित हो गया आप सब लोगों से, है ना, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, मैं चल पड़ा, मैं कहा मैं भी गाऊंगा, स्टार मेकर डाउनलोड किया, गाया, इतना हॉरिबल था कि मैंने ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी आगे बढ़ने की।
1: अरे बाप रे।
0: बट नोबडी जज्ड मी, यू नो हाउ ब्यूटीफुल। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अभी तो श्वेता जी की मधुर आवाज में उनके प्यारे से गीतों का आनंद उठाते हैं। फॉरगेट अबाउट मी, लिसन टू श्वेता जी।

0: बहुत बहुत खूब। चलो थोड़ा सा आपकी पसंद को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आपके गीतों में जो ये मधुरता आ रही है भला कहां से आ रही है। देखो क्लासिकल सिंगिंग लर्निंग तो हो गई, पूरे म्यूजिक वर्ल्ड में, दुनिया में, संगीत की दुनिया में आपके सबसे देखो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है श्वेता जी, मुझे मालूम है इसका बड़ा जेनरिक आंसर आता है। सबसे पसंदीदा गायक और गायिका कौन है और क्यों, वाय?
1: गायिका और गायिकाओं के नाम में मैं एक तो नहीं दो नाम तो जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि वो दो नाम एक ही हैं और मेरे ख्याल से ये सभी लोग जानते हैं कि वो दो नाम कौन से हैं
0: जी।
1: मेरे ख्याल से सभी जानते हैं और आप भी शायद जानते ही होंगे कि मैं बात कर रही हूँ लता जी और आशा जी की, जिन्हें हम दो अलग नहीं मान सकते। वो दोनों उन दोनों की ही आवाजों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और तो गायिकाओं में तो लता जी और आशा जी, और गायकों में किशोर एंड मोहम्मद रफी साहब, ये मेरे फेवरेट्स हैं।
0: तो आगे बढ़कर श्वेता जी ये बताइए ना क्यों, वाय?
1: क्योंकि एक तो मुझे लगता है इनकी आवाजों में वो गहराई थी और सुर ताल तो ठीक है, लेकिन इनके जो अभिव्यक्ति थी संगीत में, जो जिस तरीके से गाते थे, जो इनकी भावनात्मक गहराई हुआ करती थी इनके गीतों में, उससे हम अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं। हमें लगता है कि जैसे ये हमारी रूह की आवाज है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन लोगों से ज्यादा प्रभावित हुई और
0: ये बिल्कुल
1: इसलिए लोग मेरे आइडल्स बने।
0: यस, ये बात देखिए मेरे को बिल्कुल समझ में आती है कि अगर मोहम्मद रफी साहब गाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिल से आवाज निकल रही है। ठीक है, मेरी आवाज मोहम्मद रफी जैसी नहीं है, ना मैं मोहम्मद रफी जैसा गा सकता हूँ, नेवर एवर, लेकिन ऐसा लगता था कि उनकी जो आवाज की मिठास है वो बहुत ज्यादा भावुक करके जाती थी मुझे, तो इस वजह से मुझे मोहम्मद रफी पसंद थे। उसी तरीके से आपने बताया, ठीक है। जहां तक लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की बात है, मेरे ख्याल से अगले शायद 100-200 साल तक हम लोग उनकी आवाज से ऊपर तो निकल ही नहीं पाएंगे। जब तक कोई और अवतार पैदा ना हो तब तक इन दोनों से तो हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं श्वेता जी की आवाज में, फिर और बात करते हैं।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता जी मुझे ये बताओ, आपने क्लासिकल सीखा भी है, आप लता जी को, आशा जी को, रफी जी को, किशोर जी को क्यों पसंद करती हो वो भी आपको पता है। तो जब आप गाना गाने चलते हैं, आप गाने भी तो लाखों हैं, आप किसी गाने को चूज कैसे करते हो कि ये वाला गाना गाऊंगी मैं? उसमें क्या ऐसा होता है, सिर्फ फैशन है, ट्रेंड है, हर दूसरी महिला वही गाना गा रही है तो वही मैं गा लूंगी, या कुछ और ढूंढते हो आप गाने में?
1: ये डिपेंड करता है मैं कहाँ गाने जा रही हूँ, ये मैं सिर्फ खुद के लिए गा रही हूँ या मैं बाहर लोगों के लिए गा रही हूँ। जब मैं खुद के लिए गाती हूँ तो वो गाती हूँ जो जैसा मेरा मूड होता है उस टाइम। अगर मैं सैड मूड में हूँ तो मैं सैड सॉन्ग गाऊंगी, अगर मैं हैप्पी मूड में हूँ तो अपने से ही मेरे होठों पर आ जाएगा कोई हैप्पी सॉन्ग। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं सोचूंगी कि भाई कौन सा वो गीत होगा जो लोगों को पसंद आएगा, तब मैं ये ध्यान रखूंगा।
0: भाई जाहिर सी बात है, किसी भी गाने में लिरिक्स होती हैं या फिर म्यूजिक होता है या फिर मतलब होता ही है, और या फिर वो कोई गीतकार होता है जो आपको बहुत पसंद आता है, कोई मेलोडी, कोई ट्यून, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, ये क्या ये सारी चीजें भी आपको प्रभावित करती हैं गाने को चुनने के लिए, या बस आपके दिल से आवाज आ गई तो आपने चुन लिया?
1: दोनों ही चीजें हैं, दिल से आवाज आना भी जरूरी है, उसके अलावा लिरिक्स, हाँ लिरिक्स और धुन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्टर्स जरूर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स भाई अंडरबंड मतलब मैं किसी भी गाने का बिल्कुल बिल्कुल भी, मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मजाक उड़ाने का हक भी नहीं है मुझे, मैं कोई हूं ही नहीं कि किसी भी चीज पर उंगली करूं, लेकिन कई कई सारे गाने होते हैं जिनकी लिरिक्स का कोई मतलब कोई सर पैर ही नहीं होता है ना, तो कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे, लेकिन कई कई बड़े गहरे, उनके मीनिंग इतने गहरे होते हैं कि वो हमें पसंद आते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को श्वेता जी के गानों से दूर नहीं रखेंगे, लीजिए सुनिए।

0: बहुत खूब, दिस इज अमेजिंगली ब्यूटिफुल। अब आपने बताया कि आप स्टेज पर भी गए, स्टेज फियर को भी आपने दूर किया, स्टार मेकर पर भी आप गा रहे हैं। जाहिर से बात है, बहुत बहुत सारे मौके ऐसे भी आए होंगे जहां पर बिना माइक के, बिना म्यूजिक के आपको गाना पड़ा होगा। इसका कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पर भी किसी ने कहा होगा, अरे यार श्वेता एक गाना सुनाओ ना, चार पांच लोग खड़े हैं, अब आपको एक गाना गाना पड़ गया, है ना
1: जी।
0: लेकिन वो सारे फैंस हैं आपके, है ना, वो सारे प्रशंसक हैं आपके। तो कोई आपको ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा घटना याद पड़ती है जब किसी फैन ने आपको कोई बहुत ही ज्यादा प्यारा कमेंट दिया हो, जो आपको आज तक याद हो कि यार उसने ऐसा कहा था या उसने ऐसा किया था, ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको फैंस के साथ, फैन मोमेंट बोलते हैं जिसको?
1: ये तो बहुत होता रहा, एक पर्टिकुलर तो नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जहां पर भी गई वहां पर लोगों ने सराहा। रिसेंटली अभी अपने ऑफिस पे में भी मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे याद पड़ता है कि जो मेरे फ्रेंड है वहां पर, कुलीग है, उन्होंने स्पेशली मेरा प्रोग्राम करवाया कंडक्ट ऑफिस में। तो जी हाँ, फैंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस थ्रू लाइफ अभी तक बहुत से लोगों ने, बट मैं किसी पर्टिकुलर का तो नहीं याद कर पा रही हूँ अभी बहुत, क्योंकि ऐसे काफी केसेस हैं।
0: आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। जाहिर से बात है, कई बार होता है कि इतने सारे लोग आपकी गाने की, आपकी गायकी की, आपकी टैलेंट की तारीफ करते हैं कि ओवरवेलमिंग हो जाता है। हम खुद ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो उठते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी खुशी होती है। एंड दिस हाई, मतलब ये जो खुशी होती है ना दोस्तों, ये प्राइसलेस होती है। तो इसको पाने की हमेशा कोशिश करना मजेदार है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए नीचे ना इस प्यार से गीत का आनंद उठाते हैं।

0: बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए श्वेता जी के बारे में और जानने की कोशिश करें, बड़ा मजा आएगा। मैंने पीछे आपसे पूछा था श्वेता जी कि किस तरीके के गीत आपको पसंद आते हैं, आप चूज करते हैं, तो आपने कहा सिचुएशन बेस्ड, आप कहीं जा रही हैं या कैसा मूड है वैसा। अब थोड़ा और स्पेसिफिक, अपने सबसे पसंदीदा गाने के बारे में हमें बताइए, कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। प्लीज इसका जेनेरिक आंसर मत करिएगा कि मुझे तो सारे गाने पसंद है। आई नो आपको सारे गाने पसंद है, फिर भी उनमें से कोई एक बताइए ना।
1: मैं इस फिर वही कहूंगी, लता जी का के गीत मुझे बहुत पसंद है और उनमें मुझे स्पेशली लग जा गले सॉन्ग बहुत पसंद है, जो कि वो कौन थी मूवी का था, आई थिंक वो बहुत सारे लोगों को पसंद है वो सॉन्ग तो।
0: जी 90% महिलाओं को वो पसंद है।
1: आई अंडरस्टैंड
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग हम जानते हैं क्यों, आगे बढ़ते हुए श्वेता जी की आवाज में सुने ना एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया श्वेता जी। और बस चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा
1: जी।
0: थोड़ा क्रिएटिव होइए, आप तो वैसे भी कंटेंट राइटिंग में हैं, नीट और जेई के कंटेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं, तो थोड़ा सा क्रिएटिव। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगी उनको मैं आपके बारे में क्या बताऊं?
1: आप मेरे बारे में ये कह सकते हैं, अगर संगीत के बारे, अगर संगीत से रिलेटेड ही आप बताना चाहते हैं मेरे बारे में, तो आप जरूर ये कहिएगा कि संगीत में मैं इतना इंटरेस्ट लेती हूँ कि आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक थ्रू आउट माई लाइफ। हमेशा संगीत पर काम करना चाहती हूँ, हमेशा संगीत सुनते रहना चाहती हूँ, और जब कभी भी जीवन से मैं जाऊं तो भी मैं चाहती हूँ कि मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ उस समय।
0: बहुत बहुत प्यारा। तो चलिए दोस्तों एक गीत और सुन लेते हैं श्वेता जी का इसी बात पर।

0: बहुत खूब। बस श्वेता जी, हम आ पहुंचे उस मोमेंट पर, उस पादान पर जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आज जो फैमिली मेंबर्स, आज के कलाकार की फैमिली आपसे जुड़ी है, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे, कुछ कह दीजिए उनको।
1: मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि छोटा या बड़ा जो हो सके, संगीत के लिए आप जरूर मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत सिंगिंग में या म्यूजिक में कुछ बहुत आगे निकल पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर बार ऐसा जरूरी होता भी नहीं है, वो हो भी नहीं पाता। लेकिन हाँ, आप कोशिश ना छोड़ें और हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर गाते रहने के लिए प्रेरित करें और प्रैक्टिस करते रहें। यही कहना चाहूंगा सभी।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दोस्तों, आपने श्वेता जी की बातें सुनी, श्वेता जी को जाना और श्वेता जी के गीतों का मजा लिया। श्वेता जी, बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू, आपका भी बहुत थैंक यू।

0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।
1: नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड अगेन मैंने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम मजाक नहीं है, ये प्रोग्राम फन नहीं है, ये प्रोग्राम हम अपने को समझने के लिए करते हैं। दिस इज सीरियस। वी शुड डाइव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस एंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर गॉड हूसोएवर इजी। आप किसी भी डेटी को चाहते हैं, पूछते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट दैट, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज अपने को तो पहचानिए, हु आर यू। सो हम लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, चाहे तो कह लें प्रोटोकॉल हो या सिस्टम हो या ऊपर कोई शक्ति है या एक संभावना कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई, उन्हीं को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ललिता लक्ष्मी नारायण मैम से। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं ललिता मैम का, वेलकम करता हूं, जो उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं ललिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, आप कहाँ हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू बी इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनिशियली मेरा जन्म पुणे में हुआ, एजुकेशन लिविंग एवरीथिंग वाज इन पुणे, गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई फॉर 20 इयर्स। उसके बाद पति के जॉब के वजह से वी ऑल ऑफ अस शिफ्टेड टू बेंगलुरु। एट प्रेजेंट हम सब बेंगलुरु में हैं, बच्चे लोग यही है। एंड पर्सनली आई ऑलवेज वाज अ होममेकर, दैट इज अ वेरी वेरी रिस्पांसिबल जॉब। एंड थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती भी थी, जो अगल बगल में थे वो आते थे। एंड मेरे साथ किया, थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो भी कर लेते हैं। So generally, I am leading a very peaceful life now, retired life. I pursue my passion and happy with my life. And now I have got this privilege of coming to a radio show. That's also a big blessing from that Almighty.
1: Wow. Thank you so very much. Thank you, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली पिछले दो सालों से, ढाई सालों से मैं रेडियो स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब

0: आत्मा, आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इज द लाइफ फोर्स इन आवर बॉडी, एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक इनवर्ड्स, दैट इज अध्यात्म. गो इनसाइड यू एंड अपने थॉट्स को समझना. बाहर एक समझ में आता है, लेकिन अंदर जो होता है वो हमको खुद समझना चाहिए. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है. दैट आंसर्स एंड ऑल यू विल गेट फ्रॉम विद इन यू इफ यू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी. फॉर एग्जांपल, सपोज समबडी हर्ट्स यू विद योर वर्ड्स और विद योर एक्शंस, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्लेमिंग देम, ऐसा सोचो, उनके जगह में खड़े रहो और सोचो क्यों ऐसा कर रहा है. Then you will get an answer for their behavior, and that keeps you in peace. शांति से जी सकते हैं. That is actually आध्यात्मिक in my parlance. It may be different for different people, and it is just search peace, calm, rather than hunting for it outside you. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी.
1: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्कस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: अब मैम होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम, तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी. लेकिन मैम मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ, मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू.
0: हाँ ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
1: आएगा,
0: पछतावा
1: आएगा.
0: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं, सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू आर टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है तो you think. That is why you need that internal thinking. हम शांत रहे, why should I spoil my mood because somebody is telling that, I feel that. हर एक आदमी होने हो, that comes with some spiritual knowledge because you learn to be compassionate, you learn to be good in your words, deeds, everything, and most of the things, all these things we respond not because they are hurting us. We may be having some tension or stress, and at that moment we can't decipher वो क्यों बोल रहे हैं. हम immediate react करना है, वो हमारा सोच है, not the opposite party. तो ये guilt से avoid करना है and to proper thinking. It will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. नॉर्मल मैन वो नहीं आगा, इट कम्स विथ स्पिरिचुअलिटी.

0: I get it. I get it, ma'am. Plain and simple, I'm really sorry. I would like to apologize here with my most sincere efforts. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली. आई शुड जस्ट वेट. वेट अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर यू नो कपल ऑफ आवर्स मे बी और कपल ऑफ मिनट्स मे बी कपल ऑफ डेज मे बी एंड देन somebody would come to me and some situation would happen where the things would actually be explained to me ki aisa actually is wajah se ho raha tha. Acha kiya aapne react nahi kiya. This thing sounds good to me ma'am, this thing sounds good to me. Ye ek achhi teaching mere ko mili. Thank you so much for that.
1: Thank you.
0: Okay, ab thoda sa aage badhte hain aur practical baat karte hain. Theoretically aapne hame bata diya.
1: Haan ji.
0: आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहां से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
1: अच्छा अभी ये ना, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी पाथ. Comes right from the beginning in which family you are born into. ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ. It may not apply to everyone.
0: Sorry.
1: But in my case, it starts from home.
0: Okay.
1: मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी. So in that family, रोज पूजा पाठ करते थे. And generally समीर जी ऐसे सिखा देते थे घर में कि you must not hurt anybody. You must not do bad to anybody. कुछ गलत किया तो भी एक सॉरी बोल दो. इट इज थॉट एंड इट इज नॉट बाय एग्जाम्पल बिकॉज व्हाट द एल्डर्स डू अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम दैट लुकिंग एट इट.
0: ओके
1: तो वो सीख देख देख के हमने सीख लिया. इट इज जस्ट प्लेन सीखना, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सीख लिया. फिर बड़े होते गए. Then we realize there are certain times when we hurt anybody, के बाद में sorry बोल देते हैं. But in spiritual knowledge, you come to really seriously think of why we should not do that, why we should not hurt, why we should not tell a lie. वो spiritual knowledge से मिलता है. कभी कभी झूठ ना अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है.
0: बोलना पड़ता है.
1: नहीं वो महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंज रहा. सो दैट वाज एक्चुअली अ लाइ व्हिच लॉर्ड कृष्णा टोल्ड बट समहाउ ही हैड टू मेक द पांडवास विन.
0: करेक्ट.
1: तो वो हुआ. तो ऐसे जगह में बोल देते हैं बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एज सच. ठीक है बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं बेचारे कहाँ हो, ऐसे ही झूठ मूठ बोल देते ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलते देते हैं बट वो गिल्ट होते हैं क्यों यार बोलना, बोलना था ना देर से उठे हुआ नहीं सॉरी बोलना था. बट वो होता नहीं. इमीडिएटली वी टेल दैट व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी वी लर्न कब झूठ बोलना है. विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी और एंड व्हाई डू वी हैव टू से दैट. सच बोल दो ना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट पर भी थोड़ा डांट लेंगे हमको. ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है. उतना ही बोलेगा ना. बट वी विल बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट क्यों मैंने झूठ बोला. तो ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से आता है.
0: लेकिन मैम मतलब मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी? मॉम ने, मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने, या कोई गुरु कहीं पर मिल गया?
1: नहीं जी, नहीं जी, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है. सी व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल एंड आवर लाइफस्टाइल चेंजेस.
0: ओके
1: अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल होता है, शादी होने के बाद यू आर पुट इन टू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टूगेदर, तो तभी यू मस्ट चेंज योर वेज ऑफ बिहेवियर, चेंज योर वेज ऑफ थिंकिंग. वो सब होता है, गुस्सा आता है, बट वी शुडंट शो अवर एंगर टू एनीबडी. वो तो सी हमारे टाइम के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं. यू हैव टू एडियर टू सर्टन प्रोटोकॉल्स आफ्टर मैरिज. तो प्रोटोकॉल बनते रहते, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. अंदर तो स्ट्रेस होता है ना, विच विल मेक यू अनहैप्पी, सैड, ऑल दीज थिंग्स. तो होता था, बट लेटर ऑन वी गॉट वन. हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ एक योगा मास्टर था.
0: ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स?
1: ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम.
0: अच्छा, ओके.
1: कांदिवली वेस्ट में.
0: ओके.
1: वो वहाँ तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन, एक्चुअली हेल्थ रीजंस के लिए गए, बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग, कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल. तो उसमें आया, सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में. तो उससे स्टार्ट हुआ. फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साई बाबा, उनके उस सच्चरित्र में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेयर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटीरियल थिंग्स, थॉट वाइज. सो इफ योर थॉट्स आर क्लीन, देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल. सो दैट इज हाउ आई केम इन टू दिस. एंड नाउअडेज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. Not that some, see, वो क्या होता है, कभी कभी books read करते हैं, but to be frank, I don't follow anyone blindly. I apply it in my life. If it is really beneficial, then I adopt it. नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है रेडी, क्या हो गया. So that is continued.
0: All right, all right. I get it, I get it. This is certainly a beautiful, beautiful journey in anyone's life. Lalita ma'am jo hai yahan par hame apni life ki story bata rahi hain, lekin hum sab relate kar pa rahe hain ki kahin na kahin hum bhi wahi the, humne bhi wo saman dekha tha, samaj dekha tha, aasman dekha tha, pareshaniyan jheli thi, meditation kiya tha, somebody came into our life and then is tarike se humko samajh mein aaya. I get it. चलिए ललिता मैम, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहां पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें.

0: सो मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भगवान पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है, व्हाट अबाउट इट? मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार कनेक्ट कीजिए मेरे लिए.
1: ओके. एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है. धर्म इज मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स. एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है, इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए. दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स विच रिलीजन टेल्स अस. स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिक्स्ड रूल्स. इट इज इंटरनल. यू गो इनसाइड एंड सर्च फॉर पीस. धर्म अपने आप में दे शो द रूट. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? दैट इज धर्म. धर्म इज डेफिनेटली, आई डोंट सी इट इज सेपरेट. बोथ लीड फॉर पीसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, दोनों एक ही है. बट both mean the same, but the road is different. Road of dharma is you follow good conduct, go to your mandir jana, havan jana, wo karna, ye karna, wo sab ek ek dharma wo bolta hai. Some dharma don't believe in idol worship at all. They only follow certain set rules. So dharma is more of a set of rules which you follow. Spirituality is the inner search for that truth. हम क्यों है, मैं कौन हूं, वॉट इज द एम ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई हियर, तो वो स्पिरिट आता है. धर्म विल नॉट टीच यू दैट. इट इज बाय बर्थ यू बिलोंग देयर एंड यू फॉलो सर्टेन रूल्स. वो है स्पिरिचुअलिटी. यू कैन अडॉप्ट एट एनी टाइम. धर्म इज यू आर बॉर्न विद दैट.
0: ऑलराइट जी, आई गेट इट. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज बताई है. दोस्तों देखिए, मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहां पर बताता चल रहा हूं. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूं. मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी जिंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना. मैम ने कहा ना, हम कौन है, यहां क्यों है, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, आध्यात्म में, और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ सुंदर पावरफुल प्योर पायस तरीका जो है वो है धर्म. धर्म हमें बताता है. मैम ने बताया धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं. आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं. अमेजिंग. तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहां पर आता है. मैम हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है.
1: okay, ना
0: प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं, ठीक है. धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया, ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज कि मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत इंप्रेस हो गया और इस प्रोग्राम को सुनकर 10 लोग और बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया ऑल राइट, ललिता मैम ने कहा है चलो लेट्स बी स्पिरिचुअल. ऐसा फैशन नहीं, एक ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच उनको लगा अपनी जिंदगी को शांत करना है, यार बहुत गुस्सा आता है, लेट मी जस्ट बी पीसफुल एंड काम. तो मैम मेरे को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, हाउ कैन आई बी स्पिरिचुअल, 1 2 3 बेबी स्टेप्स मुझे बताइए ना, क्या करूं मैं.
1: ओके, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल. वो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लो, व्हाई डू आई वांट, वो तो आंसर मिल जाएगा. आपको हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, देन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस वो ढूंढो. किसी को म्यूजिक में हैप्पीनेस मिलेगा, म्यूजिक सुनने में मिलेगा, किसी को खुद गाने में मिलेगा, किसी को कुकिंग में मिलेगा. तो यू ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस. उसके बाद दिस इज फॉर अ ले मैन. मैं नहीं बोलती हूँ कि ऑरेंज वस्त्र पहन के हिमालय में जाके बैठ के जप करो. दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी इन माई पार्लेंस. मेरे हिसाब में घर में बैठे बैठे हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री. तो चूज समथिंग विच गिव्स यू इमेंस प्लेजर. स्टार्ट डूइंग दैट वन बाय वन. ऐसा नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है. यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट वन गो. स्टार्ट एट बेबी स्टेप्स. अगर म्यूजिक पसंद है, लुक आउट फॉर अ टीचर, सीखो अच्छा म्यूजिक एंड गिव अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू मिनट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट म्यूजिक. वॉट इज मेडिटेशन? इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑन समथिंग.
0: Okay.
1: हमारे गुरुजी सब क्या बोलेंगे, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज अपना श्वास, ब्रीदिंग. यू नीड नॉट सर्च फॉर ब्रीदिंग, अपने आप में ब्रीदिंग होता है. बट हाउ मेनी ऑफ अस कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग? करते नहीं है. सांस तो हम सोने के टाइम भी सांस लेते हैं, जागते भी सांस लेते हैं, काम करके भी सांस लेते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू अवर ब्रीदिंग? तो वो पहले सिखाते हैं पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग. ब्रीथ करते टाइम 50 जगह में थॉट्स जाएंगे, वापस लाओ ब्रीदिंग में. तो सेम वे व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुकिंग हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. आधा घंटा अगर कुक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो. मैकेनिकल जाना नहीं, इसमें हल्दी डालना, नमक डालना, मैकेनिकल है. लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो उसमें एक जो जान डालते हैं ना कुकिंग, तो वॉट एवर यू डू कॉन्सेंट्रेट एंड डू, पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू वॉट यू डू, दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. तो पहला सवाल है हैप्पीनेस.
0: ओके,
1: वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस, स्ट्रेस भी निकल जाएगा. स्ट्रेस मेक्स यू अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस गिव्स यू स्ट्रेस.

0: हैप्पी हो जाएंगे। अगर हम हैप्पी है सकते हैं और बना भी सकते हैं, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डू व्हाट इज योर ड्यूटी। ऐसा नहीं बोझ करके वो ड्यूटी नहीं करना है। अगर हमारा ड्यूटी ये है तो करते रहो, एंड इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, थॉट्स इनटू इट, बिकॉज फॉर मी स्ट्रेस फ्री शांत लाइफ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू दैट, इट गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी। तो इट इज प्रैक्टिकल, यू डू यू विल नो इट। ये अभी सिखा नहीं सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू डू इट। बैठे रहो एक जगह में, कुछ नहीं, सुबह बैठो एक जगह में बैठो, हाउ मेनी ब्रेथ यू आर टेकिंग इन 1 मिनट, तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हर जॉब में, हर काम में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते रहो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी। हैप्पीनेस अगर आ गया तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा।
1: ऑफ कोर्स,
0: दैट इज द फर्स्ट स्टेप।
1: ठीक है मैम,
0: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी। अभी मुझे मनी चाहिए चाहिए, ट्राई मींस ऑफ मेकिंग दैट मनी, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है, उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है। कुछ टैप दैट, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, वो करो, मनी भी मिल जाएगा। तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन एंड द एम, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा। मेरे पास नहीं है ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा। आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल वर्क हार्ड टू मेक। दिस आर स्मॉल स्टेप्स बिफोर यू रियली गो इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी। सिट इन वन प्लेस एंड मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर। इन एनी फैमिली वन पर्सन कैन नॉट रन अवे एंड डू दिस, बट आधा घंटा तो मिल जाएगा ना दिन में, उसमें करते रहो। तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स, कॉन्सेंट्रेशन on one thing, do everything with passion. अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना, there will be a time you will like to do that, तब करना। हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए। अभी अभी बैठे रहो आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गा। इवन पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है। रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो वो मूड आते हैं तभी वो लोग, दे विल डू देयर बेस्ट। तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग। तो व्हाट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, अपने आप को मैं टाइम देंगी। आई वर्शिप माई सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। लोग तो सोचेंगे, वाई शुड यू वरी,
1: राइट?
0: समीर जी ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर अ यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। टू स्लोली स्लोली विद स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, डू व्हाट यू लव टू डू, एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे, पूरा दिन में आधा घंटा निकालो, आप जो बहुत अच्छा लगता है, विच गिव्स यू हैप्पीनेस, डू दैट। किसी किसी को ऐसे चुपचाप कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ ना करेंगे, उनको आराम मिलता है, दे फील फ्री, स्ट्रेस फ्री, वो भी करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो दैट इज हाउ इट बिल्ड्स।
1: ओके, ऑलराइट, आई गेट इट। सिंपल मेथड है, उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स आवर थॉट प्रोसेस इजी, सिंपल एंड क्लियर। जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए। इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूं, अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ, एंड देन डू व्हाट यू लाइक, मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज़न फॉर दिस यू नो थिंग बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट. मेरे को जो पसंद है ना मैम मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक टॉकिंग टू यू टॉकिंग टू द पीपल लाइक यू.
0: एब्सोल्युटली
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम मेकिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टॉकिंग टू पीपल लिसनिंग टू देम लर्निंग समथिंग न्यू.
0: समीर जी मैं बोलती हूँ मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है. उसने बोला अम्मा आप करोगी ये? मैं बोले हाँ बिल्कुल करूंगी. एंड विदाउट एनी थॉट बिल्कुल करूंगी बोल दिया. फिर बाद में आई टू वर्क टुवर्ड्स इट बिकॉज क्या पूछने वाले हैं आप वो तो मुझे समझना आना चाहिए. एंड अनदर थिंग लैंग्वेज. देन शी सेड नहीं अम्मा हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो चलेगा. सर ओके होता है बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड. सचमुच समीर जी आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ.
1: वाओ थैंक यू. अच्छा मैम सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है रिलीव हो पा रहा है थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट. हो गया.
0: एब्सोल्युटली
1: बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया. ओके आई एम डन थैंक यू. चलिए
0: थैंक यू
1: मैम थोड़ा सा रुकते हैं. विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल काम पीसफुल भजन. विल कम बैक.
0: श्योर.

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं.